मीडियम वेव 396.89 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि तदनुसार 15 जून सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों

0: को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशभक्ति गीत के साथ। तिरंगा आसमान में है तो हौसले बुलंद हैं, हर अंधेरी रात के बाद उजाले अनगिनत हैं। गिरकर उठना ही तो इस मिट्टी की शान है, भारत का बच्चा बच्चा खुद में तूफान है।

भगवान शिव की आराधना सिर्फ क्रिया नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका बदल देती है। वे योगी रूप में शांति के प्रतीक और महाकाल रूप में भय को दूर करने वाले हैं। उनकी भक्ति हमें दुनिया से अलग नहीं करती, दुनिया में रहकर अडिग बनाती है। भगवान शिव शंकर की भक्ति भाव से उत्प्रोत आइए सुने शर्मा बंधुओं का गाया यह भजन।

0: अनुराधा पौड़वाल के गाए इस गीत के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: अज्ञानी के लिए यह संसार दुखमय है, समस्याओं से भरा हुआ है। ज्ञानी के लिए संसार आनंदमय है, समस्याओं से शून्य है। सब समस्याओं का समाधान है ज्ञानी हो जाना, जानना और देखना। जो नहीं जानता, जो नहीं देखता, वह सदा समस्याओं से घिरा रहता है। यथार्थ में जितनी समस्याएं हैं उतने ही समाधान हैं। कुछ लोग नाम बदलने में विश्वास करते हैं, नाम बदल दिया समाधान हो जाएगा। एक राजनेता ने कहा, आज से सब लोग श्रीखंड खाया करेंगे, सबको श्रीखंड मिलेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। उसके साथी ने कहा, बात तो ठीक है, परंतु इतना पैसा कहाँ है कि सब लोग श्रीखंड खरीद सकें। सरकार भी सबके लिए श्रीखंड सुलभ कर सके, यह भी कैसे संभव होगा। आपका सुझाव ठीक है, पर इसका क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा। राजनेता ने कहा, चिंता मत करो, तुम कल से यह घोषणा करवा दो कि कल से छाछ को श्रीखंड कहा जाएगा और श्रीखंड को छाछ कहा जाएगा। यह बहुत बड़ा सत्य है कि आदमी जैसा है वैसा अपने को माने और दिखाए। वह अपने को अलग ही दिखाना चाहता है। ये सारे प्रसाधन इसलिए काम आते हैं कि जो सुंदर नहीं है वह भी सुंदर दिखे। कोई नहीं सोचता कि मैं जैसा हूँ वैसा दिखूँ। भद्दे से भद्दा व्यक्ति भी अपने को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए यह साज सज्जा और प्रसाधन की बात चली, यह सत्य पर आवरण डालने की बात है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरा उसे अच्छा माने, फिर वो अपने आप में कितना ही बुरा हो। यह सारी माया या छिपाव की बात इसलिए विकसित हुई। हमारे यहाँ सबसे पहला काम है समस्या को जानना। भगवान महावीर ने कहा, जहाँ सुई ससुनता पड़िया न विनस्सही, तहा जीवे ससुते संसारे न विनस्सही। अर्थात धागा पिरोई हुई सुई गुम हो जाने पर भी मिल जाती है, क्योंकि धागा उसके साथ है। वैसे ही ज्ञान के धागे से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसार में विनष्ट नहीं होता, कहीं कहीं स्खलित होता है, तत्काल संभल जाता है, गिरता नहीं। ज्ञान का यह सूत्र बना रहे, यह वांछनीय है। हम समस्या के स्वरूप को समझने में सक्षम रहें, जागरूक रहें और समस्या का सही मूल्यांकन करें। यदि हमारी समझने की शक्ति ठीक रहती है तो समस्या से घबराने की जरूरत नहीं होती। समस्या से वही लोग घबराते हैं जो कायर होते हैं। जो हैं उसे जानना, समझना, उसका सामना करना, यह समझदारी का काम है। जिनमें पराक्रम है, समझ है, पौरुष है, वे समस्याओं से नहीं घबराते, वे उसे अप्रिय नहीं समझते, उसको साथ लिए चलते हैं। हम रहेंगे, समस्याएं भी रहेगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। यदि हमारा देखने का दृष्टिकोण सम्यक होता है और हम ठीक कोण से देखते हैं तो समस्या उतनी भारी नहीं लगेगी। बहुत सारी कठिनाइयां इसलिए पैदा होती है, हमारा देखने का नज़रिया सही नहीं होता। अगर वह सत्य से जुड़ा होता है तो कोई उलझन पैदा नहीं होती। एक राजा था, उसने बहुत बड़ा महल बनाया, भव्य रमणीय सुविधाजनक। जिसने भी देखा उसकी दिल खोल कर प्रशंसा की। राजा को ऐसी प्रशंसा से तृप्ति नहीं हुई। प्रशंसा का मूल्य है, किंतु उससे भी अधिक मूल्य इस बात का है कि प्रशंसक कौन है। साधारण व्यक्ति की प्रशंसा का उतना मूल्य नहीं होता जितना कि उस व्यक्ति का होता है जो वस्तुतः प्रशंसा करने में कृपण होता है, या जिसकी प्रशंसा सहज नहीं निकलती। उस नगर में एक तत्वज्ञानी रहता था। राजा ने सोचा, जब तक वह प्रशंसा नहीं करेगा तब तक दूसरों की प्रशंसा का मूल्य नहीं होगा। राजा ने उसे निमंत्रित किया, वह आ गया। राजा ने कहा, देखो कितना सुंदर महल है, कितना भव्य है, सुविधाजनक है, क्या आप इसमें कोई कमी देखते हैं। वह मुस्कुराया। उसने धीमे स्वर में कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसमें कोई कमी न हो। इस अपूर्णता की दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं होता, फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं। राजा ने आग्रह किया। तब तत्वज्ञानी ने कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। मुझे इसमें दो कमियां दिखाई देती है। एक कमी तो यह है कि एक दिन यह महल नष्ट हो जाएगा, और दूसरी कमी इसको बनाने वाला भी नष्ट हो जाएगा। समस्या को हम समझ लें, समस्या की प्रतिक्रिया को भी हम जान लें, किंतु यदि अंतिम सत्य को न जाने कि इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है, तो संभव है प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। हम जाने देखें, केवल विचार तक सीमित न रहें।
0: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर किशोर पारख का था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर रविन्द्र साठे का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर रविंद्र साठे का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुकोट।
1: मीरी चिला का एते एर्रा मीरी चिला राबा बेले एते मेंदा एनोड इम पुत्तर की मीरी चिला राबा राबा लाकाट में नाया मीरी गो बारा मासी बाउर रान मसाला पसलाय इने आन इमिन मीरी पसल कामाय था नुवाटीन पोकेमेन जामनले मुन्नी जानूर नेंदिल लीन इदिन कामाय था नुब दुई मटिया चिलाड मन चेंगाट था नेंदिल रेश्चा मिंदा ई कामाइन रेश्चा एनोड उन्नत की समुलाय पूसा ज्वाला पूसा सदाबार अरका लोहित अरका सुपल मिर्च मिर्च 101 पंत सी 1 फुले ज्योति फुले मुक्ता ज्वार मिर्च 283 NP 40 ए शंकर किसमुलाय ARCH 236 उजाला वित्तील हिसाब इदिन कामयुग एड़े एकड़ हिसाब ती ओकुतले पत्ती 1.5 किलोग्राम वित्तील लागू राव आरु शंकर किसमूल एरोड 500 ग्राम वित्तील कुबे एर राव वी तुरान समय मीरी पासलिन कामे ती पंजिल वादेक तक कामेयुग गोंचा नेलिंग ले पत्ती बादम नेलिंग तक आरु जेठा वादेक तुग मांग नेलिंग ले पत्ती पागुन नेलिंग तक उद्यूरान काम चार्ज दनाय मानतेर उदुरान ले डेड नेलिंग मुंदेल वित्तिलिन पाला टिंडुक पाडमो आरु पिट्टेल आ पालेन उदुरानाय डोलिल बनायताना पाला नर्सरी डोली ओग मीटर होसार चेंदु मीटर उ लाटी आरु 15 सेंटीमीटर डेंग बनायतानाय डोली बनायतान मुंदेल नेंदिलिन परपरा चाजी चाड़पी कात 10 ले 15 किलोग्राम आरु नेंदिलिन उपचारुक 100 ग्राम फोरेट मिलायतानाय वित्तिलिन गार्बेंडाजिम 3 ग्रामीन 1 किलोग्राम वित्तिलिन इसाबती उपचार चाजी लाइन ती 5 सेंटीमीटर लापित इसाबती उद्यूरानाय पेर एके वित्तिलिन वितुरान पिटेल आडोलिलिन पचेनोट मुई काडरानाय ई तेती पिटकेल ती ओला मेंदा आरु जेट के पांडराव चो पांडोड पचेन गुचास काडरानाय पुड़तील आरु रोगुले पोर्रेलिन बाचाय तानुक इमिडा क्लोफ्रिड ओग मिलीलीटर और 3 लीटर नीर आरु 2 ग्राम मैंकोजेब चिलाड कार्बनडाइजिम ओग लीटर नीरति गोरिकुली अलकुरानाय कात मीरीला नेगेत उबेजुग 25 ले 30 टन आधा चामरान चाड़पी कात आरु 260 किलोग्राम यूरिया और 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस आरु 100 ग्राम पोटास लागुरा चाड़पी कात फास्फोरस आरु पोटास जाम्मेनी आरु नेत्रजनिन आदो भागिन उदुरानले मुंदेल वायती मिसायतानाय बाचायतान आदो भाग नेत्रजनिन इर्डु बाटेलती पाइसी 25 ले पत्ती 30 दिनम आरु 45 ले पत्ती 50 दिने पिट्टेल नीलतान फसलती चीरानाय वाया तियार चाजदाना उड़ान वादेक चाड़पी कात्तीन नेंदिलती मिसायतानाय आरु महावा अट्टी वायती सुविधा हिसाब ती डोलिल बनायतानाय नेली बनास उद्यूरानाय वित्तिल वीती चेंदुतले 6 हफ्तेत पत्तेल पोर्रा 10 ले 15 सेंटीमीटर ता हेरमो आतेक पोर्रा उद्यूरान लाइक ता हेरमो चोप उद्यूरान काम आंडेक चाजदानाय इदुग लाइन ले लाइन 15 ले 60 सेंटीमीटर लापी इड्रानाय आरु पोर्रेत ले पोर्रा 30 ले 45 सेंटीमीटर इड्रानाय नीर जापायताना युदुरान पोत्तेल पेर एके नीर जापायतानाय इनातले पिट्टेल पेर मुचिसले किंडिक लाकाट नीर जापायतानाय इनातले पोत्तेल नेंदिलिन इसाबती नीर जापायतानाय पंजिल वादेक दस ले बारह दिन एत विश्रांति नीर जा पाएता नाय आरु जेठा वादेक हफ्ता पीछी नीर जा पाएता नाय काट पे द्राना मीरी पासलिन नेगेत कामानिग इरोट मुपट काट पे दू पड़रा मेराम पोर्रेलिन रासायनिक उवाड़ती चाई तानुग उदुरान ले मुंदेल 1.2 लीटर पेंडा मिथालिन अड़े एकड़ता हिसाबती अलकुरानाय उपेज दादर भाइयोवे ईता हिसाबती कामाय पोड इम 90 ले पत्ती 100 कुंटल पाई मीरिल आरु 15 ले पत्ती 20 कुंटल वेतरान मीरिल कामे बेट ओढ़तोर आरु आगेर ले आगेर पाइसेल बेले कामा कोड़तोर।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चुगोट। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। बस्तर के देवी देवताओं के धुन पर आधारित कार्यक्रम हुलहुली में अब लीजिए सुनिए गोरस दुवानी पाड़। वादक कलाकार हैं धर्मू और साथी।

0: हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धर्मों और साथियों का बजाया गोरस दुआनी पाड़। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर में सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे स्वतंत्र वार्ता में स्वास्थ्यवर्धक सोयाबीन विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगी संगीता मौन और साथ ही होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 प्रसारण होगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का। इसमें आप सुनेंगे हरिहर वैष्णव, दादा जोकाल और घनश्याम से कवि गोष्ठी, संपादक होंगे भरत कुमार गंगादित्य। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। आज की फिल्म होगी भाग मिल्खा भाग। सुबह 10:00 कार्यक्रम गुलशन में हम आपको सुनवाएंगे पुराने नगमे। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा बीड़ी राम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुन सकते हैं सुबह 11:00। आज का हमारे कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार वर्मा मलिक पर। लोकगीतों का कार्यक्रम पाटा किंचा दिन के 11:30 पर। इसमें सुनिएगा दशरू राम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। दिन के 12:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण समय होगा 12:30 का। कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। इसका प्रसारण हम करेंगे हल्बी बोली में। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। आज का युववाणी कार्यक्रम होगा हल्बी बोली में। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं देवाराम सोढ़ी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। आज रात 8:00 लोकगीतों के कार्यक्रम नानुली में सुनिएगा दिनेश और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम पीलामन का जिगोट रात 8:30 पर। इसमें गोस्वामी तुलसीदास पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे संतोष बघेल। जीवना चोसूर इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर आप सुनेंगे महिला स्व सहायता समूह की सदस्य रंजना विश्वकर्मा से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंटवार्ता। रात 9:30 पर कार्यक्रम भेंटघाट में सुनेगा हल्बी भेंटवार्ता। इसमें मनबोध बघेल से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। और लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में आप सुन सकते हैं जगन्नाथ और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत रात 10:00। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरुनगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊनगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000 वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20x20 विश्वचषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
3: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
2: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

एक नई सुबह, एक नया पन्ना और जिंदगी लिखने का एक बेहतरीन मौका। आज की सुबह अपने साथ हवा का नया झोंका और एक नया हौसला लेकर आई है। बीते कल को पीछे छोड़िए, आज मुस्कुराइए और इस दिन को खूबसूरत बनाइए। आज के नमस्कार जगदलपुर के साथ मैं हूं सुशील सिंह ठाकुर। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार।

बड़ों की सलाह सुनो, इसलिए नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलतियां करने का अधिक अनुभव होता है। श्रोताओं, बढ़ना और उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें कई तरह के सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव होते हैं जो जीवन के प्रति हमारी सोच को बदल देते हैं। श्रोताओं, परंपरागत रूप से भारत में युवा पीढ़ी बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आदर करती है। बुजुर्ग हमेशा से हमारे परिवारों का खजाना रहे हैं। अधिकांश लोग समाज में बुजुर्गों के महत्व को नहीं समझते। वे ही किसी भी जाति समूह या समुदाय में मौजूद पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हैं। यदि वे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सिखाते तो भारत में परंपराओं और संस्कृतियों की विविध उपनिवेशवाद के समय में ही लुप्त हो गई होती। श्रोताओं, इसके अलावा बुजुर्ग लोग पेड़ की जड़ों के समान होते हैं। वे हर समय परिवार को मजबूती से थामे रखते हैं और उसे बलवान बनाते हैं। वे आदर्श मार्गदर्शक भी होते हैं। वर्षों के अनुभव से वे किसी भी परिस्थिति का आकलन कर अपने बच्चों को रचनात्मक सलाह दे सकते हैं। श्रोताओं, परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुजुर्ग लोग अपने पोते पोतियों की जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उनके साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं और कहानियों के माध्यम से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण नियम और मूल्य सिखाते हैं। उनकी सुनाई गई कहानियों का बच्चों के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे बच्चों को एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जो कोई भी बाल देखभाल केंद्र प्रदान नहीं कर सकता। श्रोताओं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस या वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस वैश्विक दिवस का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन की शुरुआत पहली बार साल 2006 में इंटरनेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इसे एक वैश्विक दिवस के रूप में मान्यता दी। श्रोताओं, इस वर्ष ये दिन जागरूकता से परे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम को कारगर बनाना विषय के साथ मनाया जाएगा। श्रोताओं, इस दिन का उद्देश्य उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें समाज में सम्मान दिलाना और उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रति समाज को सतर्क करना है। श्रोताओं, हमारे जीवन में बुजुर्गों का स्थान एक मजबूत नींव की तरह होता है। वे परिवार और समाज के मार्गदर्शक, संस्कार के स्रोत और संकट के रक्षक होते हैं। अनुभव और मार्गदर्शन से लेकर सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य वे समाज को देते हैं। साथ ही दादा दादी या नाना नानी के रूप में वे बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। श्रोताओं, बुजुर्गों के प्रति हमारे समाज की नकारात्मक धारणा को बदलने के लिए हमें एक समुदाय के रूप में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
6: आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वतंत्र वार्ता की ओर और सुनते हैं स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार हैं

आए हैं। कुछ ऐसे ही खाद्यान्नों में एक नाम है सोयाबीन। यह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन हिस्पिडा मैक्स है। इसकी खेती पूर्व एशिया के चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका, विशेष रूप से यूएसए और ब्राजील में और दक्षिण यूरोप के कुछ प्रांतों में की जाती है। यह उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र के भुरभुरी मिट्टी में होता है। पौधे की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। बीजों का रंग हल्का पीला भूरा होता है। पुष्पक्रम हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। भारत के यह प्रायः सभी प्रांतों में पाया जाता है। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो वाशिंगटन में सन 1999 में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित किया गया था का मुख्य विषय था सोया एंड हेल्थ। इस सम्मेलन में 600 प्रतिभागियों ने व्याख्यान तथा 100 पोस्टर्स की सहायता से यह साबित कर दिया कि सोयाबीन न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है, वरन यह विभिन्न बीमारियों जैसे हृदय रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। इन वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च पेपर फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली में भी प्रस्तुत किए। यह सम्मेलन यूनाइटेड सोयाबीन बोर्ड और अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। सोयाबीन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रोटीन स्रोतों में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला है। 100 ग्राम सोयाबीन में 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। हमारे देश के अधिकांश बच्चे प्रोटीन ऊर्जा की कमी से कुपोषण का शिकार होते हैं। कुपोषण शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सोयाबीन हमारे देश की इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 4 से 5 लीटर दूध में, 24 अंडों में और 1 केजी मीट में जितना प्रोटीन होता है, उतना ही प्रोटीन सिर्फ 250 ग्राम सोयाबीन में होता है, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए होती है। कुपोषण की समस्या ऐसे वर्ग से संबंधित है जो प्रोटीन के अन्य स्रोतों का प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अपने भोजन में सोयाबीन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन नामक केमिकल पाया जाता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ही कार्य करता है। महिलाओं में प्री मेनोपोज के समय जब एस्ट्रोजन हार्मोन कार्य करना बंद कर देता है तब ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात हड्डियों का कमजोर होना, ब्रेस्ट कैंसर और यूटेराइन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस समय सोयाबीन में पाया जाने वाला फाइटोएस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की तरह ही कार्य करता है और इन बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, अल्फा ओमेगा फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइसोफ्लेवोन जो सोयाबीन में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल का एक घटक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को गाढ़ा होने से बचाता है और हृदयाघात से हमारी रक्षा करता है। यह रक्त में पाए जाने वाले खराब प्रोटीन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करता है और अच्छे प्रोटीन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जिससे हमारा रक्तचाप सामान्य रहता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन की क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 8.5 ग्राम पानी होता है, 416 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 42 ग्राम प्रोटीन होता है, 19 ग्राम फैट होता है, 2 ग्राम सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 9 ग्राम फाइबर होता है और 128 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन होता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि सोयाबीन में पाया जाने वाला मुख्य घटक आइसोफ्लेविन है जो स्वास्थ्य वर्धक के साथ स्वास्थ्य रक्षक का कार्य भी करता है। उन्होंने सोयाबीन को पानी तथा अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट करके इसे अलग किया और विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया और इसके लाभकारी गुणों का निरीक्षण किया गया जिससे सकारात्मक नतीजे सामने आए। हमारे भारत में ऐसा एक्सट्रैक्ट

0: अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में इस पर कार्य चल रहा है और आम जनता तक इसके उपयोग को सुलभता से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही सोया उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सोया दूध, पनीर, सोया आटा, सोया बिस्किट, सोया सॉस इत्यादि है। कितने महत्वपूर्ण औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक गुणों वाले सोयाबीन का प्रयोग हम सभी को करना चाहिए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसका उपयोग कैसे, किस रूप में किया जाए। आइए जाने, हम सोयाबीन का प्रयोग सोया दूध, सोया आटा, दूध से बने विभिन्न पदार्थों के रूप में नियमित भोजन के साथ कर सकते हैं। प्रयोग के पूर्व की एक महत्वपूर्ण जानकारी, सोयाबीन के छिलके का प्रयोग हानिकारक होता है, अतः इसके प्रयोग के पूर्व छिलकों को हटाना अत्यंत आवश्यक है। सोयाबीन के छिलकों में ट्रिप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन के अवशोषण को रोकता है। सोया दूध बनाने के लिए सोयाबीन को 4 से 5 घंटे पानी में भिगा दें, फिर हाथ से रगड़कर उसके छिलके हटा दिए जाएं। 2-3 बार पानी से धोने के बाद उसे गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि बीज के ऊपरी सतह पर उपस्थित ट्रिप्सिन भी हट जाए। फिर पानी डाल उसे पीस ले और साफ कपड़े से छान ले। छनित्र के रूप में एकत्रित सफेद द्रव सोया दूध कहलाता है। अवशेष को ओकारा कहते हैं। इसमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। इसका प्रयोग सब्जी में, मिठाइयों में किया जाता है। दिखने में सोया दूध गाय के दूध जैसा ही होता है। इसे थोड़ा पानी डालकर उबाल ले। इसका प्रयोग दूध, चाय, पनीर, दही आदि के रूप में किया जा सकता है। सोया पनीर बाजार में टोफू के नाम से विक्रय होता है। यह सोयाबीन से प्राप्त एक उत्तम खाद्य पदार्थ है। यह जापान, चीन, कोरिया इत्यादि पूर्वी देशों में सदियों से लोकप्रिय रहा है। इसे बनाने के लिए सोया दूध को साइट्रिक एसिड से फाड़कर, फटांस को साफ कपड़े में दबाकर पनीर के चौकोर टुकड़े प्राप्त किए जाते हैं। प्रति 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम प्रोटीन, 9 ग्राम वसा, 72 ग्राम नमी और 102 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। सोया पनीर का उपयोग सब्जी, पकोड़े, पुलाव, पराठे आदि के रूप में या तलकर भी किया जा सकता है। भोपाल में स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण केंद्र में सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद तैयार कर बाजार में आ रहे हैं और विभिन्न प्रदर्शनियों में इसके उपयोगों की जानकारी देने का कार्य किया जा रहा है। छिलके निकले हुए सोयाबीन को धूप में सुखाकर उसका आटा तैयार किया जाता है, जिसे गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी, पराठा, ब्रेड आदि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे बिस्किट भी बनाए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सोया उत्पाद अन्य प्रोटीन खाद्य पदार्थों में काफी सस्ते होते हैं, जिससे हर वर्ग इसका उपयोग कर सकता है। हाल में जापान में किए गए शोध के आधार पर सोयाबीन का प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। 26 अक्टूबर 1999 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साबित किया कि सोया उत्पाद के प्रयोग करने वालों में कोरोनरी हार्ट डिजीज कम से कम देखा गया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 25 ग्राम सोयाबीन का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। सोयाबीन का नियमित प्रयोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी बचा सकता है। 2001 और 2 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मुख्य कथानक खाद्य प्रणाली सबके लिए पोषण के अंतर्गत बच्चों में सोयाबीन के प्रति भरपूर जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय स्तर की बाल विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने सोया उत्पाद को बनाकर लोगों को दिखाया और इसके उपयोग हेतु भरपूर प्रोत्साहित किया। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति में हर वह चीज दी है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। जरूरत है तो सिर्फ जानने की। मैं सभी से यह विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अपने भोजन में जरूर सोयाबीन का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें।
1: स्वतंत्र वार्ता में अभी आप सुन रही थी स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी संगीता मौन।

0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: श्रोताओं, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज का दिन कैलेंडर के उन पन्नों में से एक है जो 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। जी हां श्रोताओं, आज है पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, जिसे हम अधिक मास या माल मास की अमावस्या भी कहते हैं। श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास के स्वामी खुद भगवान विष्णु यानी पुरुषोत्तम है, इसलिए इस महीने में किए गए दान पुण्य और पूजा का फल कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। और आज इस पवित्र महीने का आखिरी दिन है यानी अमावस्या। श्रोताओं, आज का दिन 2 सबसे बड़े कामों के लिए अचूक माना गया है। पहला, अपने पितरों का आशीर्वाद पाना, और दूसरा, मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति। अगर आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाए या घर पर ही गंगा जल मिलाकर नहाया जाए और उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाए, तो कहते हैं कि जीवन के सारे संकट आंसू की तरह बह जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। श्रोताओं, हमारे व्यस्तता भरी दिनचर्या में भी हम घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जलाकर, किसी जरूरतमंद या किसी जानवर को भोजन का हिस्सा देकर और भगवान का नाम जाप कर इस दिन को हमारे लिए बेहतर बना सकते हैं। इस पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरे इस दिन में अपने दिल को थोड़ा साफ करते हैं, मन को थोड़ा शांत करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना में आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। अब इसमें पेश है मधुरिमा। नैन तेरे शरारती, बातें करती हैं हजार, लफ्जों की क्या जरूरत जब आंखें करे इजहार। तू पलके झुका के मुस्कुरा देती है और यहां हमारी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं।

चांद भी झुका झुका सा रहता है फलक से, हवाएं भी थम के पूछती हैं तेरा हाल। ये क्या अदा है तेरे हुस्न की कि सब तुम पर मेहरबान, सब तुम पर मेहरबान।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: साथ चलो मेरे की रास्ते हसीन हो जाएं, तुम जो मिल जाओ तो मंजिलें करीब हो जाएं। अकेले तो कट रहा है सफर किसी तरह, तुम थाम लो हाथ तो धड़कने यकीन हो जाएं।

तेरी एक मुस्कान पर तो मौसम बदल जाते हैं, पतझड़ में भी फूल नए नए निकल आते हैं। तू हंसते तो लगे जैसे रब ने दुआ कबूल कर ली है, वरना तो हम भी जी रहे बस रस्म निभाने को।

दीवारों पर लिख दिया, हवाओं में गा दिया, कागज काले कर दिए तेरे नाम से। अब तो धड़कन भी जब धड़कती है, आवाज आती है बस तेरे नाम से।

मधुरिमा के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी सुशील सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब से थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
10: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
11: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
12: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
11: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
13: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
11: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
14: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
5: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions.

0: आकाशवाणी से भी
1: और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। पहले सुनते हैं विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत।

लोक संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विदुषी ममता चंद्राकर और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना, लोक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर।
1: छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर अभी आप सुन रहे थे, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया गया था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी। संपादक हैं भरत कुमार गंगादित्य।

पाए गांवकारी भाई बहन मन के आज चो कवि गोष्ठी कार्यक्रम भितरे मजो बाटले जुहार। भाई बहन मन कला सपाए चो भितरे रहे से हुनके आपलो हिसाब ने सपाए चो पूरे आंतर हो से असन मन ने कितरे विचार मने हुआ। ये विचार मन के कविता ने अनुवाद कविता रचू लोक मन। कविता मन चो गोठाए मन चो गोट के शब्द बनाउन टोंड ले निकरा तोर और हुन शब्द ले समाज भितरे नगद ज्ञान चो उजर दे तो काम करे से कविता असनी आजी आमचो लगे कविता।

0: पाठ करतो काजे। ये कविमनाथ श्री हरिहर वैष्णव श्री दादा जोकाल और श्री घनश्याम नाग आजी ये सब पाए कवि मंचो कविता पाठ के सुनवा। सबले पहल सुनो श्री दादा जोकाल जो कविता पाठ।
1: रान रलो

पानी आम के मीरे से, रान रलो ने लेहरा पानी आम के मीरे से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, पीला बेरा

मिरे से नांगर जुवाड़ी डोरी दावा रान ले मिरे से गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मिरे से भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मिरे से डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मिरे से डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मिरे से रान ने आईग बारुआ नाई आईग बुतावा रान ने आईग बारुआ नाई

दामन बूटा लगावा दीदी मन बूटा लगावा महू टोरा पाक फर रान ले मेरे से महू टोरा पाक फर रान ले मेरे से दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से पिन तो कपड़ा लाता भले रुक ले मेरे से पिंत तो कपड़ा लाता बले रुक ले मेरे से जन्म मरण रुक संगे आए रुक के बचावा जन्म मरण रुक संगे आए।

0: दादा मन बूटा लगावा, दीदी मन बूटा लगावा।
1: दूसर कविता है, एक बले सुना।
0: मुझ भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मधा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके। पूरे नंगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, पूरे नंगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, दुई चिपड़ी भीतरे गेले बाग बनु आए लड़गा, दुई चिपड़ी भीतरे गेले बाग बनु आए लड़गा। लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मके, लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके। गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, घरे मुठेक चाउर निया सगा बले इला, घरे मुठेक चाउर निया सगा बले इला। बाबा दिलो गोटोक भंडुआ हुनके बले बिकलो, मोच भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके। बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो। इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके। घरे रांदा निया मंतर दुआरे भैंसा बांधा, घरे रांदा निया मंतर दुआरे भैंसा बांधा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा। मंद बले से ये मनुख मोके छांड मोके, मंद बले से ये मनुख मोके छांड मोके, नहले मरहा भाटा ने उन भाती माई छांडे दे तुके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके।
1: ये और एक कविता के सुना, मनमोहनी बनोले के लिख ले थे।
0: मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोंगरा फूल, तू चो माया ने बया होले से घर के गेले भूल, तू चो माया ने बया होले से घर के गेले भूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल, तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, नाखने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल, नाखने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्ने चाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्ने चाबी। तुचो रूप के दखुन मै तो दुनिया गेले भूल, तुचो रूप के दखुन मै तो दुनिया गेले भूल, कारी चुंदेरी कारी चुंदेरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदेरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई। मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, तुचो मयाने बया होले से घर के गेले भूल, तुचो मयाने बया होले से घर के गेले भूल। कारी चुंदरी कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई।
2: जसन की मैं बोलले समाज के सुधरा तो वाटने कवि मन चो भाव के सांगे से, असनी समाज ने मंद सुर के लाफी करतो वाट के आप लोग कविता ने सांगते रहला दादा जो काल। आले यदाएं सुनु घनश्याम नागचो कविता पाठ।
3: गोटोक परदेसिया बाबू इलो हमचो गाँव ने सिलेदार संगे खादलो सल्पी, फेर गेलो घोटूल नाचलो लेका लेकी संग अरु बल्लो मयाने। गोटोक परदेसिया बाबू इलो हमचो गाँव ने सिलेदार संगे खादलो सल्पी, फेर गेलो घोटूल ने नाचलो लेका लेकी संग अरु बल्लो मयाने। तुमी कितरो निको आहास, ये तुमचो माटी, ये तुमचो भूई, ये तुमचो जंगल, अरु बल्लो मयाने। तुमी कितरो निको आहास, ये तुमचो माटी, ये तुमचो भूई, ये तुमचो जंगल, तुमी यथाचो राजा, तुमी यथाचो प्रजा, तुमचो देहचो पसीना पसीना ले निकरे से माहू आरु सर्गीचो फूल असन ईमानदारी चो खुशबू महके से गुलाय खमना। ये तुमचो माटी, ये तुमचो भूई, ये तुमचो जंगल, तुमी यथाचो राजा, तुमी यथाचो प्रजा, तुमचो देहचो पसीना ले निकरे से महू आरु सर्गीचो फूल असन ईमानदारी चो खुशबू महके से गुलाय खमना। मुझ दूसर कविता है मुरीद घरतो के। बाढ़ती चो गोड़ सुनून हरिक ले निकरली बोली, बाढ़ती चो गोड़ सुनून हरिक ने निकरली बोली, सहरे जाऊन घर बनाएं दे महल असन ओली खोली। बाढ़ती चो गोड़ सुनून हरिक ने निकरली बोली, सहरे जाऊन घर बनाएं दे महल असन ओली खोली। समय चो लेहरा इली हवा महल उड़ीन गेली, काय मंजा चो नंगत वाट जतर खतर जहला होली। समय चो लेहरा इली हवा महल उड़ून गेली, काय मंजाचो नंगा तुआट जतर खतर जहला होली। गाँव ने घर बनाऊ पाछे फिर वाट कर ले, गाँव ने घर बनाऊ पाछे फिर वाट कर ले, मुरिया ले पाया खनु ईटा बनाऊ जोड़ा कर ले। गाँव ने घर बनाऊ पाछे फिर वाट कर ले, मुरिया ले पाया खनु ईटा बनाऊ जोड़ा कर ले। सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, छड़ गिट्टी अमरुक नहीं होए कर्जा चो फांदा ने पड़ ले। सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, छड़ गिट्टी अमरुक नहीं होए कर्जा चो फांदा ने पड़ ले। भूई के सौकार झिकलो ऊपरे मके दिलो गारी, तिरुन नीलो कछेरी विपत ने पड़ ले भारी। भूई के सौकार झिकलो ऊपरे मके दिलो गारी, तिरुन नीलो कछेरी दीपत ने पड़ ले भारी। बांस निहाय बांसा निहाय पेशी ने पैसा सरली, बाढ़ती चो गोट सुनून देह गुलाय थर थरली। बांस निहाय बांसा निहाय पेशी ने पैसा सरली, बाढ़ती चो गोट सुनून देह गुलाय थर थरली। बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले करधन खाड़ू, बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले करधन खाड़ू, छुटून गेली हाथ ले मन चो विकास लड़ू। बिकले बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले कर धन खाड़ू, छुटून गेली हाथ ले मन चो बढ़ती लड़ू। रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, काय करेंगे महाप्रभु मुरीद घरतो के बेंद्रा होली। रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, काय करेंगे महाप्रभु मुरीद घरतो के बेंद्रा होली।
2: आमचो बस्तर कितरो सुंदर जगर मगर परे से, काय सुंदर चितरकोट तीरथगढ़ झरे से कुटुम सरचो बड़े करपन महिमा एचो सांगे से मया चो संगे एथा चो माने बाढ़ती बाट के धरे से काय सुंदर कविता पाठे भी करते रला घनश्याम नाग। आले अदाएं सुनू कविता पाठ श्री हरिहर वैष्णवले।
4: मैं तुके नहीं जाने, मुझे कविता जो ये शीर्षक है मैं तुके नहीं जाने। तुई कौन आस, तुई कौन आस, मैं नहीं जाने तुके। तुई कौन आस, मैं नहीं जाने तुके। नीचीता है तुके मैं माए की, मैं नीची ने तुके। तुई कौन आस, मैं नहीं जाने तुके। नीचीता है तुके मैं माए की, मैं नीची ने तुके। काय बोललीस, काय बोललीस, तुई भाग आस, भाग काचो भाग। काय बोललीस, तुई भाग आस, भाग काचो भाग। तुझो संगे गोठिया तो पलटा मैं सो रहे दे ओगाय हो बसू रहे दे। मांतर में नी गोठिया है तुझो संगे, मांतर में नी गोठिया है तुझो संगे। होले होसे तुई भाग, होले होसे तुई भाग, तुझो ऊपर निहाय मके भरोस। होले होसे तुई भाग, तुझो ऊपर निहाय मके भरोस। तुई पानी का वास, तुई पानी का वास, नहाले काय तुई मुचो घर नी रहतीस। तू वही पानी का वास, नहाले काय तुई मुचो घर नी रहतीस। काय काय जे जातीस ईसवी हऊ, काय काय जे जातीस ईसवी हऊ। छन भाती मके मैं करे से मसागत, मैं करे से मसागत। मांतर मरे से भूख और प्यास काजे, मैं करे से मसागत।

मांतर तुई काय के सांगशे, मांतर तुई काय के सांगशे, तुझो पेट तो केवे नहीं रहे उना, तुझो पेट तो केवे नहीं रहे उना। पहाड़े बोले भूखे रहतीस, पहाड़े बोले भूखे रहतीस, तेवे जानतीस काय है भूख और काय के बोल सक प्यास। पहाड़े बोले भूखे रहतीस, तेवे जानतीस काय है भूख और काय के बोल सक प्यास। हुदल जाए चेत चेकती तुके, उदल जाए चेत चेकती तुके, भाग बोल सत काके, उदल जाए मैं पूछते तुके, उदल जाए चेत चेकती तुके, भाग बोल सत काके, उदल जाए मैं पूछते तुके, उदल जाए मैं पूछते तुके। आखिरी आए सरासरी बेरा, ते भाई तुम्हें भले से, ते भाई तुम्हें भले से मैं नहीं जाने तुके, ते भाई तुम्हें भले से मैं नहीं जाने तुके, नहीं चिताए तुके मैं तेवे तो मैं बोले से मैं नहीं जाने तुके, मैं नहीं चिताए तुके मैं, माई की मैं नहीं चिन्ह तुके, माई की मैं नहीं चिन्ह तुके, माई की मैं नहीं चिन्ह तुके। और ये जाए ये मुझे दूसरी कविता है, ये नाव है काचो होली बाढ़ती, काचो होली बाढ़ती। लोग मन बलसत हमन मन चो बाढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट हो ऐसे। लोग मन बलसत हमन मन चो बाढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट हो ऐसे, गुलाय मंजन गुलाय राती नाना किसम उवाट हो ऐसे। लोग मन बलसत हमन मन चो बढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट हो ऐसे, गुलाय मंजन गुलाय राती नाना किसम उवाट हो ऐसे। लोग मन बलसत, लोग मन बलसत, हालो हाल हो से भूखे रहूं से, हाँ हालो हाल हो से भूखे रहूं से, नींद भसूं नहीं पेट भर खाऊं नहीं। लोग मन बलसत हलो हाल हो से भूखे रहूं से, नींद भसूं नहीं पेट भर खाऊं नहीं। दखा कितरो धोखा धर ली हम चौका जे फिकर पड़ ली, दखा कितरो धोखा धर ली हम चौका जे फिकर पड़ ली। मैं आए आदिवासी, मैं आए आदिवासी, बले से सत्य नी करे हंसी, मैं आए आदिवासी बले से सत्य नी करे हंसी। ते भाई तो बले से, ते भाई तो बले से आए आए सत्य आए, ते भाई तो बले से आए आए सत्य आए, सोरा आना सत्य आए। ते भाई तो दखा, ते भाई तो दखा तुम्हें कितरो बड़े होलास, ते भाई तो दखा तुम्हें कितरो बड़े होलास, बादर के हाथे ओलमलास, बादर के हाथे ओलमलास, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, जोन के बोहालास पानी कावड़, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, जोन के बोहालास पानी कावड़। राती बोले उजर होली, राती बोले उजर होली छक छका मंजन महा, राती बोले उजर होली छक छका मंजन महा, भार जेट ने डहाल बेरा, भार जेठ ने डहाल बेरा, दड़ दड़ा चमास के धरो नीलास, भार जेठ ने डहाल बेरा, दड़ दड़ा चमास के धरो नीलास, बैंजर भूई ने दखा धान पान जानते गेली, बैंजर भूई ने दखा धान पान जानते गेली। सब है दखूं से तुम्हें कितरो बाढ़ती करलास, राता रात तरई खोड़लास, सब है दखूं से तुम्हें कितरो बाढ़ती करलास, राता रात तरई खोड़लास, मोटर गाड़ी सबय घेलास, जनत बानी जोंगुन दिलास, कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास, कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास, कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास। सरासरी यार गोटक और नानी महा नानी असन कविता और आसे जो नाव है काय होली। पुरखती बेराले पेटते रलू मांदर, फूकते रलू तोड़ी, नाचते रलू गिड़ी और कोकरेंगा नाच। पुरखती बेराले पेटते रलू मांदर, फूकते रलू तोड़ी, नाचते रलू गेड़ी और कोकरेंगा नाच। घोटुल ने जाते रलू, घोटुल ने जाते रलू, खोर खोर बोलते रलू, हाँसी बुकली करुण हामी माया करुण जीवते रलू। घोटुल ने जाते रलू, खोर खोर बोलते रलू, हाँसी बुकली करुण हामी माया करुण जीवते रलू। कितरो सुंदर गाँव रहे, कितरो सुंदर गाँव रहे, पिकर रुकचो छाँव रहे, कितरो सुंदर गाँव रहे, पिकर रुकचो छाँव रहे। आरू दखा आजी कसन कलौ मातली गाँव गाँव, आरू दखा आजी कसन कलौ मातली गाँव गाँव, भार मंजन झाँव झाँव। आरू दखा आजी कसन कलौ मातली गाँव गाँव, भार मंजन झाँव झाँव। कोनी काके दखुन भारी फूटलो वाकी भावत नहीं, कोनी काके

0: लोक साहित्य पत्रिका बोचोमाटी का प्रसारण अभी किया गया। इसमें आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। कवि थे दादा जोकाल, घनश्याम नाग और हरिहर वैष्णव। संपादन भरत कुमार गंगादित्य का था।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:25 हुए हैं।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित लोकप्रिय स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म भाग मिल्खा भाग।

साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म भाग मिल्खा भाग, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह के संघर्ष, भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द और उनकी खेल उपलब्धियों पर आधारित फिल्म है। फिल्म में फरहान अख्तर, युवराज सिंह, पवन मल्होत्रा, दिव्या दत्ता और सोनम कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। अभिनेता फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह जी की भूमिका निभाई थी।

ये फिल्म मिल्खा सिंह और उनकी बेटी सोनिया संधु द्वारा लिखी गई आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। फिल्म का शीर्षक मिल्खा सिंह के पिता के आखिरी शब्दों से लिया गया था। फिल्म का बेहतरीन संवाद और पटकथा प्रशून जोशी ने लिखा था।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फरहान अख्तर के बेहतरीन अभिनय और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के शानदार निर्देशन में बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग साल 2013 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म के लिए फरहान अख्तर और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कई पुरस्कार भी हासिल किए थे।

साल 2014 में हुए 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में दो पुरस्कार जीते थे। फिल्म भाग मिल्खा भाग फरहान अख्तर के अभिनय करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है और बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म के रूप में भी इसे याद किया जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी भाग मिल्खा भाग। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। अंतिम दिन जीते 4 पदक। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में कल एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर के लोग कई दशकों तक विकास से दूर रहे। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव गांव में राशन दुकानें खोली जा रही हैं और सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ वनोपज के मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में हर परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षा के कारण नक्सलियों ने बस्तर को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया है और अब बोली का जवाब बोली से, यानी गलत नैरेटिव का जवाब सही जानकारी से दिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की नक्सली

0: ने नसबंदी कर दी थी, उनकी नसबंदी खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जिन मामलों में यह संभव नहीं होगा उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। समारोह को पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू होगी। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंडलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते 4 पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन कार्यक्रम में पेश हैं पुराने नगमे। शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के लिखे इस नगमे के साथ। शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म है दिल अपना प्रीत पराई।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में फिल्म काला पानी का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

बहारों के सपने फिल्म से पेश है ये अगला नगमा। लता मंगेशकर की आवाज, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम गुलशन में आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। इसमें अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये नगमा। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, फिल्म है झुक गया आसमान।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म मुगले आजम से, नौशाद का संगीत शकील बदायूनी की शब्द रचना, आवाज लता मंगेशकर की।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बाहर से शमसाद बेगम का गाया यह गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने। संगीतकार हैं एसटी बर्मन।

गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुराने नगमे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए सुनिए बीड़ी राम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बस्तर के लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे हैं बीड़ी राम और साथियों के गाए गोंडी लोक गीत।

0: कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे बीडी राम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने?
8: आता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर गीतकार वर्मा मलिक पर। आज हम बात करेंगे बरकत राय मलिक यानी वर्मा मलिक की। श्रोताओं, उनका जन्म 13 अप्रैल सन 1925 को फिरोजपुर ब्रिटिश भारत में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने कविता लेखन की शुरुआत की। वो ब्रिटिश राज्य के दौरान एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। विभाजन के बाद भारत में ही रहे और उन्होंने कई देशभक्ति गीतों की रचना भी की। बाद के वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में भी प्रशंसित काम किया। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

संगीत निर्देशक हंसराज बहल के भाई वर्मा मलिक के मित्र थे। उनके कहने पर वर्मा मलिक ने मुंबई की राह पकड़ी। हंसराज बहल ने उन्हें पंजाबी फिल्म लच्छी में गीत लिखने का मौका दिया और देखते ही देखते वो पंजाबी फिल्मों के हिट गीतकार बन गए। मित्रों के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदला और इस तरह से बरकत राय मलिक वर्मा मलिक के नाम से फिल्मी दुनिया में पहचाने जाने लगे। श्रोताओं, हंसराज बहल की निकटता में वर्मा मलिक ने संगीत की समझ भी विकसित की और यमला जट सहित तीन पंजाबी फिल्मों में संगीत की रचना की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस शख्स ने लगभग 40 पंजाबी फिल्मों में सुमधुर गीतों की रचना की। दो तीन फिल्मों के संवादों को भी उन्होंने लिखा और लगभग तीन फिल्मों का निर्देशन भी किया। मूल रूप से पंजाबी और उर्दू जानने वाले वर्मा मलिक को मुंबई आते ही हिंदी की अहमियत का एहसास हुआ। पंजाबी गीत लिखने के दौर में उन्होंने बकायदा हिंदी लिखना और पढ़ना भी शुरू किया। उन्होंने इस भाषा को कितनी गहराई से पढ़ा, इसका सबूत फिल्म हम तुम और वो के इस गीत से मिलता है। प्रिय प्राणेश्वरी हृदेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो हम प्रेम का श्री गणेश करें। ये इकलौता ऐसा गाना था जिसमें गूढ़ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया और ये गीत भी काफी लोकप्रिय हुआ।

मनोज कुमार ने अपनी फिल्म यादगार के लिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्मा मलिक को गीत लिखने के लिए कहा। फिल्म का गीत एक तारा बोले तुन तुन यादगार हिट हुई और ये गाना भी और ये फिल्म भी। फिल्मों में एक हिट से किस्मत बदल जाती है, कुछ ऐसा ही हुआ वर्मा मलिक के साथ भी। मिली सफलता और लोकप्रियता के उजाले ने निराशा और हताशा के अंधेरे को खत्म कर दिया। काफी लंबे संघर्ष के बाद सन 1970 में फिल्म यादगार में उन्हें बतौर गीतकार का मौका मिला और प्रसिद्धि भी। इसके बाद फिल्म सावन भादो, जो अभिनेत्री रेखा की पहली फिल्म थी, के बहुत ही प्यारे गीत कान में झुमका चाल में ठुमका ने उन्हें इस गीत से काफी प्रसिद्धि दी। इस गीत ने सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाए रखी। लीजिए सुनिए फिल्म सावन भादो का ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

श्रोताओ, गीतकार वर्मा मलिक ने अपने फिल्मी करियर में गीत मैंने होठों से लगाई तो और हाय हाय ये मजबूरी जैसे कई सुमधुर सदाबहार गीतों की उन्होंने रचना की। फिल्म पहचान, बेईमान, अनहोनी, धर्मा, कसौटी, विक्टोरिया नंबर 203, नागिन, चोरी मेरा काम, रोटी कपड़ा और मकान, संतान जैसे एक से एक बढ़कर एक हिट फिल्मों में गीत लिखा वर्मा मलिक ने और उन्होंने फिल्म जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने का अंदाज सीखा। आज मेरे यार की शादी है, चलो रे डोली उठाओ कहा जैसे सुमधुर गीतों की रचना की वर्मा मलिक ने। लीजिए सुनते हैं फिल्म आदमी सड़क का ये गीत जिसमें बहुत ही सुमधुर गीत की रचना की थी वर्मा मलिक ने।

गीतकार वर्मा मलिक को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है और दूसरी बार अवार्ड फिल्म बेईमान के गीत जय बोलो बेईमान के लिए मिला था। उनके गीतों में अक्सर समाज में चल रही उथल पुथल के बोल मिलते थे। वो आम आदमी के प्यार और परेशानियों को उन्हीं की जुबानी में लिखते थे। हिंदी सिनेमा में अपने गीतों की अमिट छाप छोड़ने वाले महान गीतकार वर्मा मलिक 15 मार्च साल 2009 में 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा, लेकिन उनके लिखे गीत तब तक दुनिया में बजते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पाटा केंजा। इसमें आज आप सुनेंगे दशुराम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत।

कार्यक्रम पाटा केंजा में अभी आप सुन रहे थे दशरू राम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: वाणी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंटलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय

उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वन विभाग के अनुसार जंगलों के दरवाजे पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से दोबारा खोले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तर बटालियन के सेडवा स्थित वाहिनी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बटालियन के 24 अधिकारियों और जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की टीम ने शिविर में सहयोग किया। इस दौरान जवानों ने नियमित रक्तदान और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
1: दादा दा दादा दा दादा दा

0: कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांवकारी सियान सजन दादा दीदी और संग जोहरिया कलाकार भाई बहन मन के मैं रामबती करें से जुहार और नानी पीला मन के बोले मोचो बाटली खुबे खुबे माया और चुमा। तो भाई बहन मन देखा कार्यक्रम के हिसाब ने हमें कई ठन कला चो घुट के और कलाकार मन चो घुट मन के धरुन करी अमरुआ। तुम्हें मन तो जाने साहस देखा ये जो हम चो संसार है बोलो मैं कितलो नंगत कितलो सुंदर है और हूं था ने देखा कई प्रकार चो गज खुट रहे से नदी नाला रहे से पहाड़ मन रहे से और देखा हामन मनबल रहू से पशु जनावर मनबले आसत। तो ये सपा देखा जो महापुरु आए हूं मन चो बनाल कलाओं बोलो में हूं मन चो हाथ चो कला है और हम ही बोले देखू दे ये संसार ने बोलो मैं कहीं भी बोले देख लो कितरो सुंदर लागे से देखू दे लो देखा जोन फूल मन रहे से और जोन चड़ी मन रसोत पशु जनावर रसोत उन मन के सब पाए के अलग अलग प्रकार ले देखा महाप्रभु बनाला सोत असनी देखा जोन हमी असने लोग सादा लोग में उन मन के दख सोत मानतर जोन कलाकार रहे सोत हुन मन चो जो नजर रहे से हुन अलग रहे से बोलो मैं कलाकार चो दिमाग और हुन मन चो नजर अलग ही चलते रुआ हुन मन पकना ढेला ने बोले जोन कला क्या है उनके दक्षोत और हुन बीती के आप लो हाथ चो कला ने नोले आप लो दिमाग चो कला ने हुन कला के और ज्यादा बढ़ती करुआ। देखा हमन मन तो पीला दाय ले ची गोठिया उकला सीखुआ बोलो मैं जोन हम चो घर चो लोग मनात पीला हम के सिखा सोत नानी दाय ले तोतरुन तोतरुन करी बोल पीला मन गोठिया उकला सीखुआत जसन कि बड़े होलो में बोले कैक जन असन रहे सो जोन काय बोलते रहे हुन बीती गोट के जानुक नी सकुआ मानतर असन लोग मन बल रसोत जोन के तुम्हें कहीं बोले गोटो गोट के सांगुन दिया गोटो गोट के बोलुन दिया हुन मन हुनी गोट के दुई ठन तीन ठन आगर ले आगर हुन बीती गोट के पलटा दे और हुन गोट चो उत्तर बोलो में दे दे यही तो आए कला बोलम देखा सांग तो गोट असन होए से भाई बहन मन की जोन गोठिया तोर बोल होए से ए बोल गोटो कला है धुन मन तो जाने साहस की जोन गीत गोविंद होए से उनके गाँव तो लोग तो कलाकार आची मानतर जोन गीत गोविंद के बना सोत बोलो में हुन थाने जोन शब्द मनाए हुन शब्द मन के लिख सोत और हुन थाने जोन सुर ताल है हुन मन के बसा सोत हुन मन के डाल सोत बोलो में ये बोल कितलो नंगत कला है जोन कविता मन होए से जोन गीत गोविंद जो शब्द मन होए से हुन मन के जोन कलाकार है हुन चो दिमाग ने देखा अपनी अपनी ये शब्द मन एते जाए से तो हुन हिसाब ने एक कलाकार मन आप लोग गीत गोविंद के हो नाहले कविता के हो नाहले कहानी के हो हुन मन चो रचना करुआत। असने देखा भाई बहन मन तुमन मन तो जाने साहस छी कि हम चो जोन बस्तर चो गोटो गीत आए चैत परब बोलो में जोन सुन लो से हुनी लोग मन जानत कि हुन कसन गीत है। देखा ये जोन चैत परब गीत है ए थाने गीत चो माध्यम ले ही जोन दुई ठन पक्ष रसोत जसन की लेका होला और लेकी पा होला हुन मन देखा गीत गाउन गाउन करी आप गोट के सांग तोर हाँसी हेंडस कर तोर और देखा जोन ठसका मस्का रहे से हुन बीती मन के गीत गाउन गरी ची तुरते तुरते बोलो हूँ जो जवाब दे तो बीती हो गया। तो देखा ये जो हारा जीता चो खेल होए से ये सोजे खेल नुआ ये आए देखा कला चो गोट बोलो मैं तुरते काई बीती के आप लोग दिमाग ने आन तौर पर हुन शब्द क्या है कसन गीत चो नोहले कहानी चो शब्द ने बना तोर वाक्य के बना तोर और हुन के बोल तोर बोलो में सपाए चो बस चो गोट नुआ ये आए देखा कला चो गोट। तो भाई बहन मन देखा कला चो गोट तो खूब आए और कला चो गोट के गोठिया तोर ललम तो बियान ले धरुन करी संजो है दे तो हमी कला चो गोट मन के और बोले गोठियावा मानतर हम चो लगे देखा और बोले नगद गोट मन आसे आली ये गोट मन के हमी सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: हाँ तो भाई बहन मन, ये गोट मन के तो सुन लो, और देखा हमन मन गोठियात रोलू कला के बारे में, बोल लो मैं जो बोल तो कला है हूँ जो बारे में। देखा तुमन मन तो जाने साहस जी कि पहल समयन तो असने नाचा डोगा मन होते रहला, गीत गोविंद गाते रहला। मानता देखा समय चो बदल तो हिसाब ने सपा जागरूक होला सोत, पढ़ा लिखा होला सोत, तो अदाय कएक ठन असन कार्यक्रम मन रहे से जोन थाने कहानी चो पाठ हुआ, गीत गोविंद हुआ, और जैसे कविता पाठ मन बल वैसे, और नाच तो बोले असन कएक ठन कार्यक्रम मन हुआ है, जोन थाने खूब लोग मन रूंडा हो उन करी उन कार्यक्रम मन के देखुआत और उन कार्यक्रम मन के सुनवात। तो देखा तुमन मन के भी गेलासी साले लेकर लासीस होती कि उन थाने देखा जोन कलाकार मन रसोत मन तो रहुचियात, और जोन देखु जाऊरुआत सुनुक जाऊरुआत मन बल रहुआत। मानतर देखा हुन मन चो संगे संगे और लोग मन बल रहुआत, जोन हुन कार्यक्रम के बनातो काजे, हुन कार्यक्रम के नंगत चलातो काजे हुन थाने रसोत। बोलो में हुन मन देखा कार्यक्रम चो मूर होतो ले पहले धरुन करी कार्यक्रम चो सरोत तक ले हुन थाने हुन मन रहुआत। और जसन की जोन कलाकार चो बारे में बोलो में कौन कलाकार कहाँ चुआत, हुन मन चो परिचय, हुन मन चो नाव गाँव के, और हुन मन काय कला के दर्शक मन चो सामने में रख सोत, बोलो मन मन के काय कला के सुना सोत, ये सब चो बारे में देखा गोटोक लोग सांगत का जरूरत। जोन कलाकार चो ये तो पहले सुनतो लोग मन के सांगवात, और ये मन के देखा बल सोत मंच संचालक, बोलो में हुन मंच ने मन रहुन करी कौन कार्यक्रम किदलदाय होए दे, और ये चो बाद ने और दूसर कलाकार कौन है दे कार्यक्रम कार्यक्रम हुन चो बाद ने होए दे, ये सपाय गोट मन के हुन मन सांगत वात। असने देखा जोन हम चो ये रेडियो स्टेशन होए से ए थाने बोले असन कएक जन कलाकार मन रुआत, जोन मन की हफ्ता ने कौन बीती कार्यक्रम है दे, नोले दिन ने बोले देखा बिया ने काय कार्यक्रम आए, फिर उतलो ने मुंडे बेरा काय कार्यक्रम आए, संज बेरा राति बेरा, ये सपाय कार्यक्रम क्रम मंच बारे में देखा सांगते रुआत। असनी हुआत मन संचालक मन, हुन मन सपाय कार्यक्रम मन के बोलो में लोग मन के सांगते रुआत। तो बोलतो गोट असन होई से कि जोन मंच संचालन जो काम करते लोग मन रुआत, हुन मन कार्यक्रम सुनतो लोग और कार्यक्रम करतो लोग हुन मन चो बीच ने एमन संबंध बनावत, बोलो में हुन मन के सांगते जाऊत, हुन मन चो संगे जोड़ते जाऊत। तो देखा ये जोन होय से हम जो मंच संचालन जो काम ये वाले देखा खूब नंगत कला है, बोलो मैं तुरते समय के दखुन करी जोन गोट आए उनके बल तो, और जोन लोग मन के आए उन कार्यक्रम जो संगे संगे आप लोग गोट ले आप लोग ठसका मस्का ले लोग मन के प्रभावित करते और हुन मन के बोलो ने मनोरंजन करते, ये काम होय से हम जो मंच संचालक मंच। तो देखा भाई बहन मन, कला चो गोट मन के हमी गोठियाते च रहूं दे, और देखा असने हमी रोजे दिना कार्यक्रम चो हिसाब ने कोनी ना कोनी कलाकार चो गोट मन के धरून करी अमरुआ। तो असने देखा आजी हमी गोठियावा असनी कलाकार चो बारे ने जोन मन चो नाव आए नेकचंद सैनी। आ देखा ये मन जो बारे में मैं तुमन मन के सांगून दे दे कि उन चल पहले तुमके मैं सांगे दे कि देखा हम जो घर मन ने जोन रहे से कि जोन टूटलो फूटलो जीनीस जो नाय कसन खराब होलो जीनीस मना उन मन के हम ही काय करूँ, हम जो घर मन ने तो हुन भी ती बन तो चीज आए बोलम हुन के बनाऊ से, और नी बन तो चीज आए बोलम हुन के देखा हम ही पकाऊ दे उसे। मानतर ये जोन आजी जो कलाकार आत नेकचंद सैनी हुमन दखा ए जोन टूटलो फूटलो और खराब होलो जिनिस मन नस्ल जिनिस मन आए ए मन के रूड़ा करुन करी हुमथान ले और गोटक नया कला के बनाला बलो में दखा ए मन जोन पका तो बीतिया हुन बीती के मन उपयोग करुन करी और एक नया विधि के कला के जन्म दिला। तो पहल तो देखा भाई बहन मन आमी ए मंचो जीवनाचो बारे में जानू। ए मंचो जन्म होली 15 दिसंबर 1924 के पंजाब राज्य चो शंकरगढ़ तहसील ने। और देखा ए मन पीडब्ल्यूडी ने रोड इंस्पेक्टर चो काम के करते रहला। और देखा आप लो काम संगे संगे ये मन 18 साल तक आप लो जोन टूटलो फूटलो सामान है हुन मन के जुआ कर तो काम के करते रहला। और देखा ए मन नहीं जोन बोलुआ जे बगीचा बोलो में हुन जोन टूटलो फूटलो सामान है हुन चोले 18 एकड़ चो जगह ने एमन बगीचा के बना ला जोन थाने लोग चो मूर्ति होली और चढ़ई मन चो पशु जनावर चो झरना असन खूबे सुंदर सुंदर बीती मन के बना ला जोन के लोग ले लुकाउन करी बनात रहो बोलो में एमन चो मन ने डर रली कि लोग आय कसन दकुन करी ए बीती के मना कर दे सरकार ये बीती के बना तो काजे मना करे दे बोलुन करी ये लुकुन लुकुन करी करते रहला। आर दका हुन मन चो मन ने जोन डर रहे हुन बीती होली आर एके दकुन करी सरकार आय कसन ए मन चो जोन बगीचा आय हुन के टूटा तो काजे बोलते रहला। मानतर जब लोग मन ए मन चो कला के दखला तो लोग मन ए मन चो कला के खूब मन करला और लोग मन नहीं हुन बीती बगीचा के बचा तो काजे सरकार ले निवेदन करला। और देखा आज चो समय ने जोन चंडीगढ़ चो रॉक गार्डन है बोलो में देखा एक एक खूबे लोग मन दुख लाए जाऊआत और खूबे लोग मन मन करुआत तुमन मन तो जाने साहसी कि जोन हम चो भारत चो ताजमहल है हम चो बात देखा लोग मन ये जोन रॉक गार्डन है उनकी सबूले आगर दुख लाए जाऊआत। तो भाई बहन मन ये गोट के बल तो हमें जान लू मंत्र में बोलते रहे हम च लगे गीत गोविंद बला से ज्ञान ध्यान चो गोट संगे संगे दखा गीत गोविंद मन बल होले खूबे नंगत लागू है। तो आले ते भी दिलीप कुमार पांडे और हुन मंचो संगवारी मंचो गाओ लो ये गीत के सुनू।

हाँ तो भाई बहन मन देखा ये कितलो नगद गीत के सुन लू और तुमन मन लेख कर लास की नहीं आल देखा ये गीत ने कई ठन ज्ञान जोगोट छुपुरली बोलो में ये थान देखा जो जागरूकता आए उन गोट मन बोल रही कि कसन साफ सफाई रत रहा है कसन आप लोग घर पूरे साफ सफाई संगात रहा है काय खात रहा।

एकाएक पे उतरा है बलम दखा ये जो गीता है हुन चो माध्यम ले जागरूकता चो गोट के स्वच्छता चो गोट के ये गायक मन बोलो में गीत कुरिया मन हम के सांगला खेल गीत तो हमन मन खूबे सुनवाओ मानतर दखा असन जो ज्ञान चो गीत मन रहे से हुन चो माध्यम ले बोले हमन मन दखा ज्ञान के मीरा सकू और सीख उक लाई सकू तुमन मन तो जाने साहस थी कि कहीं बोले सीख तो भी गोटाए बोलम दखा हुन के खिंडिक समय लागे से मानतर हुन बीती के दखा नानी नानी पीला मन बोले गीत गोविंद ने सीखा हा नहाले कई कविता चो माध्यम ले सीखा बोलो हुनमन झटके हुन बीती के लेख कर सोत और झटके सीख सोत तो असनी हो छे दखा जोन कला बोलो मैं जोन गीत गोबी तो कला ची घोटा है बोलो मैं जोन कला है जो माध्यम लेवल दखा हम के कितलो ज्ञान चो घोट मन मिरे से आ तुमन मन घर नानी पिला मन आसो ताले तुमन मन लेख कर लासी होती कि हुन पिला मन जो स्कूल ने दखा चित्र मन बनात का जे उन पुस्तक मन देवर जोन थाने पिला मन के गज के बनातोर चढ़ी के बनातोर और असन कई ठन चित्र मन बनात का जे हुन मन जो स्कूल थानो गुरुजी मन सांगुआत कि एक बनान कर आना इतना रंग भरन कर आना बोलम दखा पीला मन के पीला दायले नानी दायले बोलम दखा ये जोन कला के सीखा तो काजे हुन मन के बुनियादी देवाद बोलम में हुन मन के सीखावाद और हामी बल दखा जोन कला के पीला मन के सीखान रहूं दे बोलो में होनी कला तो बड़े होलम हुन मन और बाढ़ती कर दे और सीख दे दखा असन कई ठन पारंपरिक कला मन रहे से जोन हम चो परिवार चो रहे से बोलम हम चो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखा दाले चलते कला मन रहे से हुन कला के दखा हम चो दादी दाच लोग मन सीखुन करी हम चो बाबा के सीखा हुआ और उन समय ने चलुआ फिर पुतलों ने हमन मन सीखुआ तो ये जोन पारंपरिक जोन हम चो पीढ़ी दर पीढ़ी चो कला मन है ये कला मन के हमें सीखवाओ और हम चो जो ए तो पीढ़िया है उनके बोले सिखा तो हम चे जिम्मेदारी है हम चो बस्तर ने देखा कई ठन असन कला मना से जसन की ये सील पकना बना तो कला होली टंगिया कुड़ार बना तो सुपा टुकनी बना तो कला ये सब कला मन देखा अदाए हाजते जाए से बोलो में समय आज बदलते के लिए देखा सब पढ़ा लिखा हो चो तार आप जीवना ने बोलो में खूब व्यस्त आसत बोलो में ये जो हम चो पारंपरिक बीती मना ये सब आए के लगते जासन मानतर हम के असन नहीं करता जोन हम चो पुरखा दाय चो संस्कृति आए जोन कला मनाए हुन मन के दखा हम के सीख तो रहा है और जोन हम चो ए तो पीढ़ी आए उनके बोले सिखा तो रहा है हम ही हुन बीती कला मन के हुन संस्कृति के जीव संगा लुआल तो हम चो जोन ए तो और पीढ़ी मनाए हुन सपाए हुन मन के सुरता कर दे और हुन मन के सीख दे नहाले दखा ए बे तो जोन समय चले से हुन चीज आपने 50-60 साल होलो में ये जोन हम चो संस्कृति मनाए ये सब आए के भूलगते जासन लोग मन अदाय चे जोन पीला मना उन मन दखा जोन आप पुरखा दाय चे बीती मना उन मन के मन नहीं करतो या बच्चे पढ़ा लिखा होलो से मोबाइल मन होली बोलून करी उन सब आए मोबाइल मन ने दखून दखून करी सीखते जा सक मानतर ये गलत गोटा है जोन हम चो संस्कृति है जोन हम चो परंपरा है उन मन के हम के भूलतर नु है उन बीती मन के हम के सुरता संगात्रा है और उन जोन कला मना जोन संस्कृति है उनके जीवता संगात्रा है तो भाई बहन मन ये ज्ञान ध्यान चो गोट मन तो होली और दगा गीत गोविंद बल होली और मैं लेख करें से कि मचो जातो समय बल होली से तो आले तेबे मांतर दखा मैं जातो पहिल तुमन मन सांगुन देन जोन कला है हुन दखा लोग जो जीवना के बना हुआ है बलो में कला चो बिना लोग चो जीवना जीवना नुआ है हुनी का जे लोग के नहीं आप तो जो जीवना है हुनने कहीं ना कहीं कला के सीख तो रहा है और हुन कला के आप लोग जीवना ने आनंद करी आप लोग जीवना के और सुंदर बना तो रहा तो ये जो हम ही कार्यक्रम चो माध्यम मन ले भाई बहन मन तुमन मन लगे कला चो गोट के धरुन करी अमरा तो बोलम दखा ये उद्देश्य हो से सांग तो बोलो मैं ये हसन हो से कि तुमन मन बोले ये कला चो गोट मन के सीखा समझा और आय कसन खुम तुम बल सीखा और सीखुन करी को ने दूसर के बल सीखा और कला चो बाढ़ती करा तो भाई बहन मन और कोने दिना भेट हो दे तो तुम्हें मके दिया विदा तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सप्पा गांव करी सियान सजन दादा दीदी और संग जोहरिया कलाकार भाई बहन मन के मैं रामबती करे से जुहार दादा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब एक सूचना सुनिए श्रोताओं, फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक की जाती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी माए मन के दीदी मन के अरमोचो संग जोहरिया बहिन मन के मैं रामवती करे से जुहार और नानी नानी पीला मन के बोले मोच बाटले खुबे खुबे मया और चुमा। तो पीला मन आजकाली तो देखा काय सुंदर आमा मन निकरे से तो मन मन बल काय सुंदर खाय सास बे पाकलो पाकलो काय सुंदर आमा मन के हम जो घर बल काय सुंदर देखा पीला मन आमा बूटा मन आसे जोन धाने बिया ने उठो दिलो में टुकना टुकना आमा मन के हमें बेचुआ। ये जोन आमा गच मना ए मन के देखा पीला मन हम जो डोकरा दादी दाए रोपलो गच मना जोन के देखा हामी खाऊं से। और देखा बहिन मन तुमन मन बल सांगुन दे देखी घर द्वार के देखा जोन सकल डकल कर तो आए बना तो जिम्मेदारी है बोलो हम जो बहिन मन ची हो से और जोन हम जो घर ने जगह बोलो ठान बाचू रहे से हुन था ने हामी कहीं जाई बूटा लाटा के रोपुरू से गज कूट के रोपुरू से बोलो में हुन हम के फायदा ची दिवाए कहीं नुकसान नी करे। जैसन की देखा हामी हम जो घर मन ने जो बाड़ी रहे से हुन था ने हामी पानी वानी बर्तन वर्तन धो से तो हुन जोन पानी जगवाए हुन जो कटा देखा हामी कई बूटा लाटा के रोपू से बोलो में हुन बाड़े से और हुन थान ले पाक हो फूल हो नहाले फूल काई हो फिर से एक बोल सत किचन गार्डन बोलो में जोन हम जो रसोई रहे से जोन हम जो रांदा खोलिया है हुन थानो बगीचा बोलम देखा कि एक कई बड़े बना तो जरूरत बोल नहीं आए बोलो में हमी छोटे रूप में बोले के करुक सकूं जैसन कि कई फूल बूटा के हम ही रोपुक सकूं जोन ने हम के फूल मेरे जे हुन काय सुंदर घर ने बांस दे दे फूल चो और जैसन कि कई साग भाजी चो बूटा होली नानी हो नाले बड़े हो हुनके बोले हम ही लगा सकूं जोन थाले हम के साग भाजी मेरे दे और जैसन कि कई बड़े पाक फूल चो गचा उनके रोपू दे तो हम चो दायले नहीं हो लोन बोले हम चो पीला दायले हम चो नाती नतरा दायल बोलते हुन पाक फूल दे तो बोलो देखा हार हुन जोन गच आए हुन थान ले हम के पाक फूल संगे संगे छाए बोल मिरुआ और काय सुंदर शुद्ध लहरा बोल मिरुआ जोन हम चो जीवना का जे नंगता है। और तो और देखा जोन सुकलो बीती खेंदा मनाए उनके हम ही रांदा बाड़ा कर तो काजे बोले उपयोग करुक लाए सकूं और कई ठन असन गच मन बल रहे से जोन देखा जोन इमारती लकड़ी बोल सत हुन जो काम हुआ बोलो में चौखट होली सोफा होली पलंग होली दीवान होली असन कई जिनिस मन बने से लकड़ी ले जोन के आए कसन हमी घरे लगा रहे में देखा हुन बीती मन काम ये उचिया बोलो में ये जोन गच खुटा है ये प्रकृति चो बोलो में देखा हम के दिलो उपहार है जोन के हामी संभालून करी संगालो में ये आमन मन के संभालून करी संगा दे और हम चो जोन स्कूल पर तो पीला मना थुन मन तो जाने सोत होती स्कूल जा सोत तो पुस्तक मन ने पढ़ सोत होती कि जोन गच खुट रहे से हम चो जड़ माटी के बांधून करी संगवाए बोलो हम माटी के बहुत रुकलाए नहीं दे जैसे कि बरसा दाए होली जोन पानी बहड़ते जाए तो आप संगे संगे माटी के बोले बहड़ाते नहीं हुआ है और हुन लग जो जोन माटी आए हुन लगे बहुड़ कर जा हुआ है तो हुन लग खाली हुन जा हुआ है तो जोन गच रहे से हुन चो जोन जड़ रहे से हुन माटी के धरुन करी आप ने बांधुन करी संग हुन चले देखा जोन माटी चो कमी आए हुन जगह ने नी होय बोलन बोलते गट असन होय से कि जोन गच खुट रहे से हुन जड़ ले धरुन करी हुन चो जोन दारू आए हुन चो जोन छालिया हुन चो पान हुन चो पाक सपा जिनिस देखा हम चो मनुक मन काज बोलो में हम चो लोग मन काजे ये फायदेमंद है और ये हम के कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा उची है। तो देखा बहिन मन ये गोट बात मन तो होते ची रहे दे ऐसे ही संगे संगे देखा हम चो लगे नंगत गोट मन बला से आले के सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनाथ उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ತಗಬೇಡ ಇಂಜೆ GST ಛೂಟ್ ದೊರಕಿತ ಅದೇನ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಯ್ತನದ್ ಇಂಜೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ ಸುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರ 350 cc ಕೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ತ ಪೊರ್ರು 28% GST ಮತ್ತ ಅದ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತಾ ದೊರಕಿತ
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: हाँ तो बहिन मन देखा हमें मुरने गोठियात रलु खेती बाड़ी गोट के और गज खुट रोप तो गोट के बोलम देखा जोन हम जो किसान भाई बहिन मन रसो तो हुन मन तो खेती बाड़ी कर सोत जी और असन कई जन मन रुआत जोन मन आय कसन आप लो काम बुता के कर तो संग संग बोलम कोनी को नौकरी लोग मन बल असन हो सोत जोन उन जो संगे संगे बोले आय कसन खेती बाड़ी चो काम के करुआत बोलो मैं हुन मन आप शौक हिसाब ने कर सोत अब मैं तो कहाँ गाय दख ले शहर मन ने कि जोन बिल्डिंग बीती घर मन हुआ है हुन थाने छत ने बोले नन नन डब्बा मन ने गमला मन ने हुन मन कहीं कहीं बूटा लाटा के फूल हो न बोले साग भाजी चो हो हुन मन के लगान रुआत बोलो मैं हुन मन आप शौक के तो पूरा कर सोत ही कर सोत हुन साग भाजी खाउन करे आप लोग सेहत के बोले अच्छा बना सोत हा देखा जोन प्रकृति है बोलो मैं हुनके बोले काय सुंदर नगद संगातों ने आप योगदान दे सोत और मैं तो कई जन के देख ले जोन मन अच्छा अच्छा नौकरी मन बोल करते रुआत मानदर हूँ नौकरी छाणून करी ये बूटा लाटा आई ये खेती बाड़ी ये सब काम ने जाऊत बोलो मैं ये खूबे नगद काम है और खूबे अच्छा काम है और तुमन मन तो सुनला सी सोती की कई जन असन जागरूकता कार्यक्रम चलात लोग मन मल रस होत जोन मन की लोग मन के सांग तेरुआत की पेड़ पौधा लगा गज खुट के रोपा नी गोंदा बुलून करी बोलो मैं देखा जोन हम जो ये जोन शरीर है हुन पानी ने बन ली से हम जो जोन ये संसार है बोलो मैं हुन बल पानी चले बन ली से अगर पानी नहीं रहो मैं हम जो जीव ना हम जीव के नहीं सकू लोग मन पानी बिना तो जीव रहू के नहीं सकत और देखा जोन गज खुटा है हुन मन के हमें गोंदून दे उन दे तो पानी नहीं मारे अब पानी नहीं मार ले फिर लोग कहाँ ने रोहूं दे हुनी काजे कई जन बुद्धि रलो लोग मन जोन जागरूक लोग मना हुन मन लोग मन के सीखा हुआ सांग हुआ की गज खुट के रोप तो रहा है हुन मन के नी का तो गोंद तराय बोलते एक गज खुट देखा हम के कई प्रकार जो सहायता करे से बोलो हम के फायदा करे से और कई जन असन बोल रुआत जोन मन के रोजगार बोले मीरुआ है जसन की ये जोन पाक फर होली उनके बिकुन करीब लोग आप लोग रोजगार के मीरा उग सकोत आ देखा असने कई जन बल रसोत जोन की गज खुट के रोपन करी हुन चर जोन लकड़ी आए हुन चर पान फूल आए उनके बोले बिकुन करी आप लोग रोजगार के मीरा हुआ तो देखा भाई बहिन मन हमें देखा कार्यक्रम चो हिसाब ने हमें भेट वार्ता धरून करी अमरुआ जोन थान कई जन असन बहिन मन चो गोट के तुम चल अमरुआ जोन मन आप जीवना चो गोट के आप लोग रोजगार चो गोट के सांगुआत तो असने देखा आज ही तुम चल गए अमरालू से हमें भेट वार्ता जोन थाने आसोत हम चो गोटक रोजगार बहिन रत्ना नाग और देखा एमन संगे बातचीत कर सोत गोट बात कर सोत श्री बलवीर सिंह कच्छ आले तेबे एमन काय गोट गोठे आसोत और हम के काय गोट सांसद ए गोट के सुनू
6: बहन मन जसन की आमी बल्लेने बेरा पस्ता कई महिला स्व सहायता समूह मंचो उन्ती बाढ़ती गोट बात करूं से तो आज ही बल्ले मैं असने गोट बात करें से कि महिला स्व सहायता समूह ले बल्ले ने महिला मन के कितलो बल्ले ने आर्थिक उन्नति हुए से और संगे संगे काहे कि खुद जो जो जीवना ने कहीं ना कहीं असन बदलाव दिखा दे से तो सब ले आगे तो चु नाव संग और तुम चु महिला स्व सहायता समूह चुनाव
7: जोहार मुझे नाम है रत्ना नाग मुझे समूह चुनाव है प्रेरणा महिला स्व सहायता समूह
6: अच्छा प्रेरणा महिला स्व सहायता समूह।
7: अच्छा
6: रत्ना ये सांग ये जो समूह के बना लो बोलो कितलो दिन होली और उता कितलो सदस्य आसा साले।
7: हम जो समूह ने होली 5 साल होली और उता 11 सदस्य आसत।
6: अच्छा 11 सदस्य
7: आसत।
6: तो जैसन की समूह बनान बाती मूर ने कहीं काम शुरू कर ला सोती।
7: हाँ पहले मैं अचार बनाते रहे एकला बनाते रहे।
6: अच्छा
7: और एकला बनाने एकला बिकते रहे फिर समूह में जोड़ ले सबके और हुन मन के सिखा ले।
6: अच्छा
7: सिखा ले और हुन मन के बोले अचार बनाऊ लेकिन पैकेट वैकेट नहीं बना लो से हम ही उसने बनाउन भाती किलो हिसाब ने जोन बोल मांगवा देवा।
6: अच्छा
7: सब बनावा जोन बोल ऑर्डर देवा तो बनावा और बिकवा।
6: अच्छा तो बल्ले ने अचार बल्ले ने काय काय जिनिस चो बनाए साथ जाले।
7: आमा चो बल बनावा और गाजर मूली गोभी ये चो बल मिक्स अचार बनवाए नींबू आए फिर जिमी कांदा चो अचार बल बनवाए।
6: अच्छा
7: करेला चो बोले ये सब चो बनवाए।
6: अच्छा बल्ले ये सब चीज तुम बनाए साथ
7: सब चो फनस चो बल बनावा।
6: अच्छा फनस चो बोले तो कोनी असन गोट की थाने मिलन बाती बनावा कि सब अलग अलग।
7: नहीं गोट की थाने बनावा।
6: अच्छा
7: कोनी वो ऑर्डर दिले ने सबके गोट के संग रूंडवा और बनावा।
6: अच्छा तो ये बोले ये काम चले से
7: चले से।
6: अच्छा तो ये चो संग संग दक कई महिला स्व सहायता चो जुन बहिन बना स्व सहायता समूह ने सब मिलन तो कहीं ना कहीं कर सो मंतर अलग अलग बोले और कहीं
7: अलग अलग सिलाई करूँ जोन सिलाई करते रहे उन सिलाई करू है जोन काई हो और दूसरा काम करते रहे ने फैंसी स्टोर खोल लो रहा से उन मन बल करुआ सब अपना अपना करुआ।
6: अच्छा तो ये जो का जे बल्ले कहीं बैंक बाटले कहीं मदद धर ला सास।
7: बैंक बाटले नहीं
6: नहीं
7: हम खुद चो कर लू से।
6: अच्छा खुद चो पैसा पाड़न बात। अच्छा बल्ले ने कसन इकट्ठा पैसा जमा कर ला कि महीना ने जमा करुआ जल।
7: हम महीना में जमा करुआ
6: महीना ने। अच्छा कितलो सन आसे जाले
7: पैसा महीना ने जमा कर
6: महीना
7: महीना ने 3,000 रुपया जमा करुआ।
6: ये 3,000 रुपया मतलब एक लान
7: नहीं
6: सब सब मिले
7: सब मिशन भाई 3,000 रुपया।
6: 3,000 रुपया अच्छा हर महीना
7: हर महीना।
6: तो फिर होनी पैसा फिर काम
7: में होनी पैसा के काम आनवा फिर ब्याज ने बोल दे हुआ कौन कौन मांग लेने।
6: अच्छा
7: ब्याज बोल दे हुआ बाहर चलो केवल 5% ने दे हुआ
6: 5% ने। अच्छा

0: 5% महीना ने कि साल ने?
1: नहीं महीना ने,
0: महीना ने,
1: महीना ने।
0: अच्छा तो उन चो फिर बोले ने वसूली करते भी थे कसन वैसे जाले
1: जैसन महीना ने देवाद ब्याज का जे तो उन और नी दिले ने फिर उन चो और ब्याज बढ़ा हुआ।
0: अच्छा हाँ उन चीज संग जोड़न फिर ऊपर फिर ब्याज है।
1: हाँ ब्याज देवा।
0: तो कितना दिन काज तुम उन मन के देशा पैसा वगैरह
1: कोनी दिन नहीं दिखावा उन मन जितरो दिन बोले करो
0: करो
1: मतलब ब्याज पठाओ।
0: अच्छा अच्छा हाँ बिल्ले हर समय
1: दो महीना तीन महीना या साल भर चो हम टाइम नहीं दे।
0: अच्छा टाइम नो
1: टाइम नहीं दो तुमको जब बल पटा है तुम्हें।
0: अच्छा
1: कई नो है लेकिन ब्याज देते रहा।
0: अच्छा बाकी जो मूल पूंजी है उन आखिरी नहीं
1: था। हाँ अध्यक्ष चाहले कोनी कोनी बोलवा कि नहीं हम संगे संग खिंड खिंड दे दे तो बोल ठीक है बोलवा धरवा।
0: अच्छा मूल पूंजी के बोले तो असन कहीं डर तो नहीं रहे कोनी पैसा के धरन बाती सबके खाऊन दिला असन
1: नहीं असन कहीं घटना होली से
0: नहीं होली से
1: नहीं।
0: अच्छा बल्ले ने बराबर
1: हाँ बराबर देश हो
0: देश हो। तो दक बल्ले ने अचार संग संगे तुम्हें पैसा जमा करून ब्याज बल ने बल देसास और अचार सब मिलून बन बना
1: हाँ, सब मिलून
0: तो बल्ले ने जैसन की अलग हिसाब ने तुम का काम करू जाली
1: मैं अलग हिसाब ने अपना सिलाई करूँ है।
0: अच्छा
1: दुकान बल देखू है।
0: अच्छा बोले ने दुकान और सिलाई खुद चुआस।
1: हाँ मुझे खुद चुआस।
0: अच्छा तो बोले ने सिलाई प्रशिक्षण आगे सीख लीस बेती।
1: हाँ सीखून रहे आगे
0: आगे सीख रही कहीं सरकारी प्रशिक्षण धर लीस की।
1: हाँ, सरकारी भी बल धर ले प्राइवेट भी बल धर।
0: अच्छा सरकारी ने कितलो महीना सिखाला जाले?
1: तीन महीना चो
0: तीन महीना
1: हाँ, तीन महीना ट्रेनिंग रहे।
0: अच्छा उतलन पास फिर तो
1: हाँ,
0: अलग ले
1: अलग ले फिर सीख ले।
0: तो ये जो दर्जी सिल तो बीते केवल सोजे महिला मंच कपड़ा सिलवास की कहीं दूसरा
1: महिला ही कपड़ा सिलवाए।
0: अच्छा महिला ही
1: कपड़ा महिला ही कपड़ा।
0: हाँ तो बल्ले खुद कपड़ा वगड़ा संगवास की कोनी धरुन बाती ऑनलाइन सिलवा?
1: नहीं मैं धरुन बल सिलवाए और मचो बोल दे कोनी बोलवा कि तुझे लगे आसियाल सिलून दे पैसा दे दे चो कपड़ा चो बोलवा तो हुन कपड़ा मैं लगाऊ है।
0: अच्छा
1: और पैसा धरू।
0: अच्छा तो देख आजकल तो जसन सिलाई छो मशीन छो बल्ले बल्ले उन्नत अलग अलग मशीन मन हिली से तो ये सब मशीन मन तुझे लगा से?
1: हाँ आसे।
0: अच्छा किठन लागे से?
1: मुख दो ठन मशीन आसे एक ठन सिलाई मशीन एक ठन पिको मशीन।
0: अच्छा दोनों ने अलग अलग
1: रहे? हाँ दोनों में अलग अलग रहे।
0: हाँ हाँ ये मशीन जो बोले जो गेंद तो भी पैसा खुद लगा ली?
1: हाँ खुद
0: की समूह तान ले?
1: नहीं मुझ खुद जो है पहले ले रहे मैं समूह ने जुड़ तो ले पहले ले मुझे लग मशीन रहे।
0: अच्छा तो बोले ने एवे आंसो सिल तो लोग मन आनुआ। अच्छा तो जसन की ज्यादा करोन सिलते रहने का चीज छो मतलब सिलाओ के आंसो?
1: ब्लाउज
0: ब्लाउज
1: ब्लाउज साड़ी।
0: अच्छा
1: ये सब ज्यादा हो गए।
0: तो ब्लाउज चो बोल तो कई डिजाइन रहे से?
1: हाँ डिजाइन बोल बना बोलुआ तो का है 20 रुपया ज्यादा धरुआ।
0: अच्छा
1: डिजाइन चो बना तो।
0: अच्छा 20 रुपया ज्यादा। हाँ तो तेबले बल्ले गोटो ब्लाउज कितलो पैसा वैसे जाले?
1: 300 रुपया।
0: 300 रुपया मतलब असनी सादा भी थी?
1: नहीं डिजाइन अस्तर भी थी डिजाइन भी थी।
0: डिजाइन भी थी 300 रुपया।
1: 300 रुपया
0: और जसन असनी भी थी
1: सादा भी थी 100 रुपया।
0: 100 रुपया
1: 100 रुपया।
0: अच्छा तो जसन की 300 बल्ले सुन के और 100 रुपया ने बल्ले मेहनत ज्यादा आसे
1: ज्यादा लागो है डिजाइन बना तो काजे।
0: अच्छा
1: डिजाइन जैसन डिजाइन बोले उसन डिजाइन बना देते रहे।
0: अच्छा
1: तो थोड़े से मेहनत लगवा है लेस लगवा है तो निकाज थोड़े से उनचो रेट ज्यादा लगा।
0: अच्छा तो ये सब काम हाथे च करते रहे से?
1: हाँ हाथ नहीं बोले मशीन जहाँ जहाँ मशीन लगवा है होता मशीन चलाते रहे ना ले हाथ नहीं बोले करो पड़ू है।
0: अच्छा तो ये जैसन की डिजाइन बीती है बोलू भी ये जो जो आजकल तो कई नहीं करे से मतलब यूट्यूब वगैरह बाती तो बोले ने तु कसन कर दखा तो लोग के डिजाइन डिजाइन बोलते
1: नहीं उन मन के मैं पूछू है कि कसन डिजाइन बना तो रहे तुम ये अपना डिजाइन सांगा मैं बनाऊ दे दे बोलू है।
0: अच्छा
1: तो उन मन सांग ले ना मैं बनाऊ दे अपना मन ले नहीं बनाऊ है।
0: अच्छा
1: अब का पसंद है दे नहीं है दे बोलून भाती उनका तुम ही सांगा मैं बनाऊ दे।
0: अच्छा बोले जोन बल बना तो ग्राहक आद बोलू भी उन जसन बोले उसन
1: हाँ बनाऊ दे
0: बना तो रहे। तो बोले ने इच्छन का है बोले दुकान बोले
1: दुकान बोले
0: किराना दुकान
1: कपड़ा दुकान
0: कपड़ा दुकान
1: कपड़ा दुकान।
0: अच्छा कपड़ा दुकान ने काय काय संग हो साले?
1: हर चीज संग है जेंट्स लेडीज सब।
0: अच्छा तो ये दर्जी संग और कपड़ा दुकान संग तो अच्छा आए बोलो ने दोनों हाँ, काम है से
1: दोनों काम
0: सिलाई बोलो ऐसे
1: हाँ,
0: और कपड़ा से बोलो ऐसे। तो कपड़ा बोले ने कहीं जगदलपुर शहर ले बाहर ले मंगवास कि यही तान ले धरुन संग
1: नहीं जगदलपुर में ही धरुआ
0: अच्छा तो ये सब काज बोलो भी तू खुद पूंजी लगा ली
1: हाँ हम खुद जो पूंजी है ये
0: अच्छा तो जसन की आजकल बोले ने महिला मन का जो छूट ने बोले बैंक बाटले सुविधा मना से तो कहीं असन बैंक जो ज्यादा पैसा धरुन कि नहीं तुझे दुकान की अच्छा बड़ा इन्हें असन बोलते कहीं विचार नहीं करीस
1: उनसे विचार करूँ लेकिन थोड़े से लागू है कि बैंक मन तो देवार पाचे थोड़े से परेशानी करूँ बोलून भाती थोड़ा डर लागू है
0: अच्छा परेशानी तो
1: परेशानी बोल दे नहीं पठा लेन थोड़े से बोलू हाथ नहीं
0: हाँ उन तो आए थी बराबर पैसा पटोक पड़े से आई कि नहीं जैसे कि तुम बोल दूसर की ब्याज दे साथ समय नहीं दिल फिर उतर चक्रवृद्धि ब्याज धर साथ तो बैंक ने बोले उसने
1: बैंक ने बोले उसने लेकिन नहीं धर लो से आज तक
0: अच्छा बल्ले ने उतले ने पूरा काम
1: हाँ, उतले ने हुआ है
0: अच्छा और जैसे 11 सदस्य आसू बोल से बाकी लोग काय काय कर सोत
1: आधे से ज्यादा तो सिलाई में आसोत बाकी काय तो क्या बोलवात मनु अगरबत्ती बना
0: अच्छा अगरबत्ती मम अगरबत्ती
1: बनाते
0: थे अगरबत्ती
1: बत्ती बल बना हुआ
0: अच्छा
1: आरा तो नहीं करत
0: अच्छा
1: अचार समय में
0: अच्छा ये मतलब अचार बना बीती बल्ले ने कोनी मांग होले बनाए साज की बनाउन बस
1: बनाउन माती बल संगाउन रुआ सैंपल दखा तो काजे
0: अच्छा
1: सैंपल दखा तो काजे संगवा आरो कोनी बोले ने पर बनाउन देवा
0: अच्छा हां बल्ले जुगे अचार बना तो काज कसन लोग बल बल सो जैसे की कहीं घरे खातो लोग की कहीं
1: घरे खातो लोग
0: घरे खातो लोग
1: घरे खातो लोग
0: अच्छा नहीं तो कहीं आजकल कई तिहार बार शादी ब्याह हो ऐसा संतान चुगल
1: होटल वगैरह ने बोल बोल
0: अच्छा हाँ। अच्छा
1: तो उन मन के देवा
0: अच्छा उन बोल जसन सांगले उसन
1: उसन जो नाचार बोले न उन नाचार बना देवा
0: तो बोले ने स्व सहायता समूह जसन की 5 साल होली बलशी जी तो इतलो इतना जितलो बोले 11 जन महिला मन जुड़ला से तो बदलाव हिसाब ने उन मंचो जीवना ने बोले ने काय चीज दिखा दे से
1: ये बीच मतलब पहले लिए अच्छा स्थिति आसे
0: अच्छा
1: अपना पाँव में खड़े आसो अपना कमाऊ से तो पहले थोड़े से पैसा कौड़ी चुबल दिक्कत होते रहे तो ये भी जब समूह में जुड़ लो से अपना अपना काम करो से तो ये बच स्थिति अच्छा
0: आसे। अच्छा आज बोले बल्ले ने उन मन के दो पैसा
1: हाथे मेरे
0: मेरे से तो किनिक दंड हिसाब ने नहीं हो
1: दंड नहीं हो अपना हाथ में पैसा रहे से तो कुछ भी करू खोए से
0: हाँ हाँ तो बोले ने स्व सहायता समूह बना लेने दक सफाई कहीं बोल काम के मिलून कर लेने हम काम अच्छा
1: अच्छा
0: हो ऐसे नगद हो
1: फायदा बोले रो हुए
0: हाँ हाँ आरु कहीं बिक्री भांजरी बोले कहीं झंझट नहीं हो
1: झंझट नहीं
0: है कि नहीं कोनी ना कोनी कहीं ना कहीं करते रहे सर सरासरी ने सांग कि तुम जो समूह ने और आगे उन्नति बाढ़ती काज का है सोच ला सास के नहीं अचार नहीं चिरो आसे कि और बोल गए
1: हम ये सोचो से और कहीं दूसरा बोल काम धरो बोले उन बातें करूं दे बोलून बाती एक ठन काम ने नहीं होए आगे थोड़े कई बोल काम करूं दे बोलून बाती सब विचार करो से
0: अच्छा
1: कि आगे कई काम मेरो करो
0: अच्छा तो असन जस कि कई कसन महिला स्व सहायता समूह मन कहीं स्कूल चो बोल काम धरो मध्यान्ह भोजन बोले नहीं तो कहीं संस्था चो कहीं खाना बना तो बीती तो ये सब
1: हम चो बाटे नहीं मिरे
0: गए नहीं मिरे
1: शहर बाटे मिरुआ है
0: अच्छा
1: हम चो बाटे एक एक जन कर सोत
0: अच्छा चलो ठीक है तो आगे तुम्हें कहीं ना कहीं मिल लेने कर तो बिचारा से बोलो अलग तुम चो इतलो स्व सहायता समूह चो जैसे कि तुम खुद पूरी उन बाती बोले महिला मन के जोड़न बाती बोले उन मन मच पाए ने बोले उबा हो तो गोटो
1: अपना पाँव में खड़े
0: हाँ खड़ा हो तो बोलती
1: एक समूह बना
0: हाँ बना ली से सोच अच्छा है तो असने आगे उन्ती बाढ़ती करा और खूब खूब जुआर
1: जी
2: हाँ तो बहिन मन दखा कितलो नंगत बाढ़ती चे गोट के हमें सुन लो कि बहिन दखा आपने जीवना ने कई प्रकार जो काम मन के करून करी आपलो जीवना के खूबे सुंदर और आपलो रोजगार के मिलाला सुत बोलम देखा असनी गोट मन के सुनून करी प्रेरणा धरत राय और आपलो जीवना के और अधिक नगद सुंदर बनातो प्रयास करतो राय। तो पहिन मन देखा ज्ञान ध्यान जो गोट संगे फिर गीत गोविंद हो लेवल खूबे हरिक लागू आए तो बेर नी करू आले ते भी सुकल धर बघेला रोहन मंचो संगवारी मंचो गावलो ये गीत के सुनू।

हाँ तो बहिन मन देख का सुंदर गीत के सुनलू और देख मैं लेख करें से कि मोचो जातो समय बल होली आले तेबे मके विदा दिया। तो घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गाँवकारी बहिन मन के मैं रामबती करें से जुहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर का 1 बजने वाला है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट।
4: दादेर भाई होवे मीरी कमाई मीरी चिला का एतेहरा मीरी चिला राबा बेले एते मेंदा एनोड इम पुत्तर की मीरी चिला राबा राबा लाकाट में नाया मीरी गो बारा मासी बाउर रान मसाला पसलाए इने आन इमिन मीरी पसल कमाए था नुवाटीन पोकेमेन जामनले मुन्नी जानूर नेंदिल लीन इदिन कमाए था नुब दुई मटिया चिलाड मन चंगाट था नेंदिल रेस्चा मिंदा ई कमाइन रेस्चा एनोड उन्नत की समुलाए पूसा ज्वाला पूसा सदाबार अरका लोहित अरका सुपल मिर्च मिर्च 101 पंत सी 1 फुले ज्योति फुले मुक्ता ज्वार मिर्च 283 NP 40A शंकर किसमुलाय ARCH 236 उजाला वित्तील हिसाब इदिन कामयुग एड़े एकड़ हिसाब ती ओकुतले पत्ती 1.5 किलोग्राम वित्तील लागू राव आरु शंकर किसमूल एरोड 500 ग्राम वित्तील कुबे एर राव वी तुरान समया मीरी पासलिन कामे ती पंजिल वादेक तक कामयुग गोंचा नेलिंग ले पत्ती बादम नेलिंग तक आरु जेठा वादेक तुग मांग नेलिंग ले पत्ती पागुन नेलिंग तक उद्यूरान काम चार्ज दनाए मानतेर उदुरान ले डेड नेलिंग मुंदेल वित्तिलिन पाला टिंडुक पाडमो आरु पिट्टेल आ पालेन उदुरानाय डोलिल बनायताना पाला नर्सरी डोली ओग मीटर होसार चेंदु मीटर उ लाटी आरु 15 सेंटीमीटर डेंग बनायतानाय डोली बनायतान मुंदेल नेंदिलिन पर परा चाजी चाड़पी कात 10 ले 15 किलोग्राम आरु नेंदिलिन उपचारुक 100 ग्राम फोरेट मिलायतानाय वित्तिलिन गार्बेंडाजिम 3 ग्रामीन 1 किलोग्राम वित्तिलिन इसाबती उपचार चाजी लैन ती 5 सेंटीमीटर लापित इसाबती उद्यूरानाय पेर एके वित्तिलिन वितुरान पिटेल आडोलिलिन पचेनोट मुई काडरानाय ई तेती पिटकेल ती ओला मेंदा आरु जेट के पांडराव चो पांडोड पचेन गुशास काडरानाय पुड़तील आरु रोगुले पोर्रेलिन बाचाय तानुक इमिडा क्लोफ्रिड ओग मिलीलीटर और 3 लीटर नीर आरु इर्डुल ग्राम मैंकोजेब चिलाड कार्बनडाइजिम ओग लीटर नीरती गोरीकुली अलकुरानाय कात मीरीला नेगेत उबेजुग 25 ले 30 टन आधा चामरान चाड़पी कात आरु 260 किलोग्राम यूरिया और 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस आरु 100 ग्राम पोटास लागुरा चाड़पी कात फास्फोरस आरु पोटास जम्मेनी आरु नेत्रजनिन आदो भागिन उदुरानले मुंदेल वायती मिसायतानाय बाचायतान आदो भाग नेत्रजनिन इर्डु बाटेलती पाइसी 25 ले पत्ती 30 दिनम आरु 45 ले पत्ती 50 दिने पिट्टेल नीलतान फसलती चीरानाय वाया तियार चाजदाना उड्रान वादेक चाड़पी कात्तीन नेंदिलती मिसायतानाय आरु महावा अट्टी वायती सुविधा हिसाब ती डोलिल बनायतानाय नेली बनास उद्यूरानाय वित्तिल वीती चेंदुतले 6 हफ्तेत पत्तेल पोर्रा 10 ले 15 सेंटीमीटर ता हेरमो आतेक पोर्रा उद्यूरान लाइक ता हेरमो चोप उद्यूरान काम आंडेक चाजदानाय इदुग लाइन ले लाइन 15 ले 60 सेंटीमीटर लापी इड्रानाय आरु पोर्रेत ले पोर्रा 30 ले 45 सेंटीमीटर इड्रानाय नीर जापायताना युदुरान पोत्तेल पेर एके नीर जापायतानाय इनातले पिट्टेल पेर मुचिस ले किंडिक लाकाट नीर जापायतानाय इनातले पोत्तेल नेंदिलिन इसाबती नीर जापायतानाय पंजिल वादेक दस ले बारह दिन एत विश्रांति नीर जा पाएता नाय आरु जेठा वादे हफ्ता पीछी नीर जा पाएता नाय काट पे द्रहना मीरी पासलिन नेगेत कामानिग इरोट मुपट काट पे दू पड़रा मेराम पोर्रेलिन रासायनिक उवाड़ती चाई तानुग उद्यूरान ले मुंदेल 1.2 लीटर पेंडा मिथालिन अड़े एकड़ता हिसाबती अलकुरानाय उपेज दादर भाइयोवे ईता हिसाबती कामाय पोड़ इम 90 ले पत्ती 100 कुंटल पाई मीरिल आरु 15 ले पत्ती 20 कुंटल वेतरान मीरिल कामे बेट ओढ़तोर आरु आगेर ले आगेर पाइसेल बेले कामा कोड़तोर
3: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
7: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
8: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
9: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

कार्यक्रम श्रोता सुमन के तमाम श्रोताओं को प्रीति का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे नाम का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अवान अब्बासी। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खटसे और विनोद खटसे। बागबहरा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। गुरबा बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्श, कामनी कर्श और यश कर्श। गुमला झारखंड से आप हैं एसएम जावेद और शगुफ्तान जुम। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। मलोट कैप पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण सरोवर और रमेश मिगलानी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरुआ से आप हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमीश नेहा और बेबी वान्या। मेघापारा लोरमी से आप हैं मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार धनंजय और कुमारी गायत्री साहू। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से आप हैं वीएस महोबिया और कमला महोबिया। रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा। लोरमी गुलबाजार खपरीकला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, दानिश, छोटी दीक्षा, संजय, पूजा, राम और पूर्वी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं जगर राम साहू, बबलू जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल समीक्षा साहू और बेबी आराध्या साहू। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। बेरड़ी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वा सेरे। लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म नागिन का गीत। गीत है वर्मा मलिक का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। सिहावा पर्वतंचल ग्राम बेलरगांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। ग्राम कुंबली लोंडीगुड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं बसंती पांडे, चुनौती पानीग्राही, तेजल, हेमाश, कमल, दुधेश और अवनीश पानीग्राही। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं श्रीमती जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। दतरेंगी भाटापारा से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आज़ादनगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। दतरेंगी भाटापारा से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। कुल्हाड़ीकोट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप और मोहनीश कश्यप। ग्राम पंचायत बठेना से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटोदा सारागांव से आप हैं सुजान वर्मा और सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। ग्राम जुगानी कलार से आप हैं राजेश नेताम, युगल अभय और ललिता नेताम। कुलाड़ीकोट पांडुका से आप हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप और मोहनीश कश्यप। गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी,

ईश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्की पाली, फलना झा, श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और चिलना झा। ग्राम बड़गुआ पथरिया से आप हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। बलोदा अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। मोती गार्डन भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया। लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फासले से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत है शहरयार का, संगीत है शिव हरि का। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से आप हैं मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी और निधिश सुरोशी, मायरा सुरोशी। डोंबिवली मुंबई से आप हैं भावना यादव, अधीश, स्मित गोरी और श्रेयांश गोरी। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से आप हैं कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय, वाणी, मनीष, ब्रोनो खर्ची, गणेश, कार्तिक खर्ची, संजना परी खर्ची, ललिता नारायण खर्ची, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। महादेवघाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। डोंडीलोहरा संबलपुर से आप हैं गौतम उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की उर्वशा, डूमनलाल कोठारी। अर्जुंदा बालोद से आप हैं दिनेश यादव और साधना यादव। तुबे गोंदी मंचुवा से हैं रिंकू रावटे और अयांश रावटे। मर्दापुटी चारामा कांके छत्तीसगढ़ से आप हैं नरसिंह थापा और बीर सिंह थापा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। रायगढ़ स्टील सिटी छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी। सावरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। कतियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील दिवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, कान्हा, आदित्य दिवांगन। बम्हर चाटीडी से आप हैं गंगा देवी दिवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की दिवांगन, बेबी मीनाक्षी और निधि दिवांगन। दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, ऋतिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण सेन, पंचू सेन, भुवनेश्वर सेन। पुटियाकला दुर्ग से आप हैं संजय कुमार साहू और सुजाता साहू। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से आप हैं अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सीजल साहू। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म फना से सोनू निगम, सुनिधि चौहान, काजोल और आमिर खान की आवाजों में। गीत है प्रसून जोशी का, संगीत है जतिन ललित का। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। धनोरा जगदलपुर बस्तर से आप हैं वी पूनम नायडू, मास्टर शिवांशु, मास्टर ऋषु अभिषेक नायडू। अगनपुर धर्मपुरा बस्तर छत्तीसगढ़ से आप हैं डी कृष्णा राव नायडू, डी वनीता नायडू, डी ईश्वराय नायडू, डी सोमशेखर राव नायडू, डी अक्षय प्रांजल नायडू। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निषाद। औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। लौंडीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग, हरीश नाग, बाल सिंह उदय नाग। तोकापाल जगदलपुर से आप हैं विशेश्वर भुआर्य, चंदन भुआर्य। दरभा बस्तर छत्तीसगढ़ से आप हैं रामधर कश्यप, रामधर बघेल, मोतीराम मौर्य, सोनूराम ठाकुर और उदयराम ठाकुर। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रिया रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, चंपा साहू, करण राहुल साहू। धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और राजेंद्र कुमार चंदन। शास्त्री नगर बीड शहर से आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जिशान खान। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। गुल्हापारा लोरमी से आप हैं राजकुमार साहू, तुषार, तनिष, गौरी साहू और नोमालिका। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म तेरे मेरे सपने का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है वीजू शाह ने। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आप है सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। चंदनगर सातारा से आप है सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रवण, श्रीमेण वाघमारे। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से आप है विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से आप है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप है राजेश कुमार धनजी, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजी। खुर्दी रोड मानपुर से आप है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। ग्राम परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, कुमेंद्र मसिया और तुषारिणी मसिया। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप है रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनासौर रेहान। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, मिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवती राय। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से आप है रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म जिस्म का गीत। गीत रचना है नीलेश मिश्रा की, संगीत निर्देशन है MM करीम का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। रुआ बांधा शनिश्चरी बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी, सुब्रत चौधरी, बेबी अनुषा। रायपुर से आप हैं नीलू मैग। हटी चौक बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम देवांगन और

रानू देवांगन। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं लावण्या विश्वकर्मा, गुण जैन, आयुषी वर्मा, जिज्ञासा और पूजा टावरी। कोरदा लवन से आप हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी, हेमलता, बेद किरण वर्मा। नेहरू वार्ड भाटापारा से आप हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू। वरकट बकाल से आप हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। महावीर वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी, श्रीमती लक्ष्मी, कुमारी प्रेरणा, डिम्पी यादव। लक्षनपुर से आप हैं सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक रजक, पल्लवी रजक, रश्मि साहू और गीता साहू। ग्राम मोहत से आप हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारे, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे। भोकरी तालुका रावेर से आप हैं अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से आप हैं मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। शिवाजी चौक राजिम से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। सिमगा छत्तीसगढ़ से आप हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं करुणा वर्मा। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिश्री। दरियापुर बाबली से आप हैं गजानन येले, नवदीप येले। खेल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, कुनिका मल्होत्रा, जानकी चंद मल्होत्रा। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। अमरपुर पेंड्रा से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार। औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बुरगांवकर, सुदामा प्राजक्ता, प्राजली बुरगांवकर और सोहम बुरगांवकर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ

0: से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में तीन दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
4: सात का पहला सुनो।
5: सात एकम सात,
6: सात एकम सात,
5: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है?
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
7: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
7: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
7: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
7: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
7: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
7: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
7: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
7: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
7: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
7: अप्पू, क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
7: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
7: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
7: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
7: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।

0: का।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
2: मास्टर जी, नोटिस है।
3: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
3: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
3: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
3: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
3: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
3: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
3: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया।

0: दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं,

0: बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं।
2: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम अब जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। देवाराम सोड़ी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे कार्यक्रम नानोली में आप सुनेंगे दिनेश और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी संतोष बघेल की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम जीवना चौसोर में आप सुनेंगे मिलेट्स स्वसहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना विश्वकर्मा से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कार्यक्रम भेंटघाट में आज रात 9:30 पर सुनिएगा मनबोध बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आज रात 10 बजे कार्यक्रम कोदोमाली में आप सुनेंगे जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी साहित्य भारती और मोरभुइया कल सुबह 8 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा

0: दीपक हटवार का। श्री रामचरितमानस का गायन कल सुबह 6:25 पर। स्वर होगा भूपेन सिंह का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम हुलुली में सुबह 6:40 पर सुनिएगा गोपतिया पाड़। कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे कथालोक में कथा मनशा। कथाकार होंगे डॉक्टर राजेश थंथराटे। साथ होगी वार्ता फसलों में अनुवांशिक सुधार, वार्ताकार संकल्पा चंद्रा। और साथ ही होगी मधुर गीतों की मधुरिमा, रूपक डंडारी नृत्य कल सुबह 9:00। लेखक होंगे नीलू राम ध्रुव। प्रस्तुति होगी बलवीर सिंह कच्छ की। कल सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम गुड़दुम में कल सुबह 10:30 पर सुनिएगा नंदोराम भारती और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। कल सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार। लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़ कल सुबह 11:30 पर। वादक कलाकार होंगे मधुराम बघेल और साथी। कल दोपहर 12:00 कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में कल शाम 5:10 पर। मेघनाथ पटनायक और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत कल शाम 6:35 पर। कल शाम 7:00 कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी कल शाम 7:21 पर। कल रात 8:00 कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, विषय शिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन का महत्व, वार्ताकार हेमलता त्रिपाठी। बच्चों का कार्यक्रम पिलमन का जय गोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी राम सिंह कश्यप की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम मोचो मंचो गीत कल रात 9:30 पर। कल रात 10:00 लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा विवाह पाड़ और माता पाड़। वादक कलाकार होंगे मंगलू और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
1: जोहार संगवारी मन, आज काली चुक है एक विषय मन संचो कार्यक्रम संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर। संगवारी मन, आज ही आम चो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो बाट दखालो बीती केंद्र चो NDA सरकार चो 12 पुरतो के हुन गोठ उपरे बनली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो मुखिया होलो बीती केंद्र चो NDA सरकार गेलो 26 मई के आपलो 12 पूरा ली। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद चो शपथ धरून रला। NDA सरकार चो 12 पुरतो के प्रधानमंत्री श्री मोदी बल्ला कि केंद्र सरकार चो गेलो 12 विश्वास बाढ़ती और जन कल्याण का जेरली। हुन बल्ला कि NDA सरकार भारत चो 140 करोड़ लोग मंचो आशीर्वाद और सबले पहल राष्ट्र चो भावना ले शिक्षा पौन भाती जुआन मन मेहरार मन और किसान भाई बहन मन के बरसक बना तो काजे नंगत काम कर ली से। श्री मोदी बल्ला कि आजी देश बुनियादी ढांचा ले धरून डिजिटल क्रांति तक ले संसार भर ने नुआ हिसाब ले जाना चीना होली से। प्रधानमंत्री बल्ला कि विकसित भारत जो संकल्प के पूरा कर तो काजे सरकार सेवा सुशासन और बाढ़ती जो बाटने सरलगा बाढ़ते जाए दे। श्री मोदी बल्ला कि सरकार बाटले गेलो 12 ने उठालो ढांका मन ने मंझनिया बतर चो कुटुंब परिवार मन बरसक होते जासोत और मंच बरसक ताकत संगे देश च बाढ़ती काजे पूरे इलासोत। हुन बल्ला कि बरख 2014 ने आस दखाउन जे बेर उदुन रली हुन आजी नुआ ताकत बीती उजर चो ठान होन गेली से। ए 12 बरख ने भारत चो लोगमन पहिल हार दखला कि जिदलदाए सरकार चो मन चो विचार नगत रहुआए तेबे बाढ़ती बले झपके झपके हुआए। ए मंजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चो सबले आगर समयाले सेवा करतो बिता निर्वाचित प्रधानमंत्री बनला से। हुन पंडित जवाहरलाल नेहरू चो रिकॉर्ड के टूटाउन दिला से जे पहिल हार 1952 ने प्रधानमंत्री चो पद काचे शपथ धरून रला और 27 मई 1964 तकले पद ने रला। पंडित नेहरू चो निर्वाचित होलो पाछे प्रधानमंत्री चो पद ने काम करतो समय 4398 दिन चो रली। हुताए 26 मई 2014 ले धरून 10 जून तकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो सर लगा काम करतो समय एदाए 4399 दिन चो होली से। जेचोले एदाए हुन भारत चो इतिहास ने सबले आगर समयाले काम करतो सेवा करतो बिता निर्वाचित प्रधानमंत्री होन गेला सोत। ए मौका ने केंद्रीय मंत्रिमंडल बाटले गोटोक प्रस्ताव के पारित करून भाती 10 जून 2026 के भारत चो लोकतंत्र चो यात्रा ने गोटोक ऐतिहासिक गोठाए बल्ला और नरेंद्र मोदी के देश चो सबले आगर समयाले काम करतो बिता निर्वाचित प्रधानमंत्री होतो काजे बधाई दिला। प्रस्ताव ने ए बले बल्लो रासे कि सरकार चो मुखिया हिसाब ने श्री मोदी सरलगा 25 बरख चो सेवा चो ऐतिहासिक ठान चो मंजी अमर सोत। ए प्रस्ताव ने नरेंद्र मोदी चो बरख 2014 चो हुन घोषणा पत्र के बले सांगलो रासे जेथा हुन बलून रला कि सबका साथ सबका विकास एचो मंतर संगे आपन के प्रधान सेवक बोलून रला। इस दस्तावेज पहिल केवई नी करलो बीती सहायता मंच गोट के सांगुआए जेथा गरीब मन काजे पक्का घर बिजली निंगल पीउ तो पानी और सायकात लाभ अमरा तो संगे फोकाहा चो राशन और फोकाहा चो उपचार शामिल आसे। प्रस्ताव ने मूर जनसांख्यिकीय समूह के बरसक बना तो काजे बले बल्लो रासे एथा जुआन मंचो ताकत उपरे चो कोसित मन के स्वीकृति दिलो रासे जेमन भारत के संसार चो तीसर सबले बड़े नुआचारी वाट और नुआ मूर करलो पारिस्थितिक तंत्र और चंद्रयान मिशन ले वैज्ञानिक ताकत बनातो ने आप लोग खास सहायता दिला से। कुमला नोहलोर रांदा खोली और लखपति दीदी अभियान ले धरून विद्यार्थी निकाय मन ने मेहरार मन काजे ऐतिहासिक 33% आरक्षण जसन बरसक नीति मन ले मेहरार मन के मुखिया बनाउन बाढ़ती करतो बीती गोटोक नुआ अध्याय चो कहनी सांगलो रासे। प्रस्ताव ने किसान मन के विकसित भारत चो मूर्ख खुटा मानुन भाती प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पशु पोसिया और मछरी पोसिया मन के किसान क्रेडिट कार्ड देतु बीती ढाका मंचो सहरानी करलो रासे। प्रस्ताव ने एबले विश्वास दिलो रासे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो बाट दखालो हिसाब ने भारत आपलो दम ने सपाय बाटले बरसक और मान संगे नुआ बाढ़ती छो ठहन ने अमरते रहे दे और बरख 2047 तकले नंगत बाढ़ती करलो बीती विकसित राष्ट्र बन तो बाट ने बरसक होए दे।
0: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हल्बी बोली में।

0: राम राम जुहार जुहार संगवारी मन, आज चो आकाशवाणी चो युवाणी कार्यक्रम ने आप मन चो स्वागत आए। आशा करूं से कि आप मन सब पाए नंगत आशा होती असनी यामी बल्ले नंगत आंसू। मैं आए आप मन चो रेडियो संगवारी किरण मौर्य
1: और मैं आए देवकी से क्या रेडियो सुन तो सब पाए संगवारी मन के आमी दोनों करूं से जुहार।
0: कसन देवकी तु कसन आसी?
1: मैं तो नंगत आसी किरण, तु सांग तु कसन आसी?
0: मैं बोले तो नंगत आसी देवकी। आले कसन जोंद्रा जोंद्री रोपुक मुरियालास कसन तुमी?
1: काय के सांगवाई किरण, जोंद्रा रोपुआ बलते रलु जानू, मांतर खद भात तो मीरे नाई। काय के सांगवाई, खद बले महांग असन महांग नाई। आमचो घर लोग मन विचार करसत रोपुआ की नाई बलते।
0: हाउ देवकी तु सत्य बलसित, आमचो घरो आमचो बाबा बले बलते रहे कसन करवा नोनी, खद भात तो मीरे नाई और खिंडी कादक मीरे से बले तो भारी महांग बोलून बाती चिंता करते रहे।
1: हाउ किरण, एवे चो महांग दखुन भाती लोग मन निराश होन जासोत।
0: हाउ काय दखुन भाती करलानी लागून जाय से मंत्र काय करू असने?
1: हाउ काय आले किरण, आमचो दुख पीड़ा के सांगते रहलो ने केबे नी सरे ने। आले आमचो रेडियो सुनतो संगवारी मन के ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा चो बारे ने खेंगिक सांगू ने।
0: हाउ ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा दोनों चो अलग अलग फायदा और नुकसान आसे ने?
1: हाउ ऑनलाइन शिक्षा उपकरण बल्लो ने कम लागत और डिजिटल उपकरण चो उपयोग ने बेहतर आए।
0: हाँ और पारंपरिक शिक्षा बल्लो ने गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल प्रणाली और नैतिक मूल्य ने आधारित आसे। एथा नैतिक विकास चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत के अगला पीढ़ी तक अमरा तो काम करे से जोन था ने विद्यार्थी गुरु चो लगे जाहुन बाती व्यवहारिक ज्ञान पावसो।
1: हाँ किरण, तू नंगत गोट के सांगलीस ऑनलाइन शिक्षा चो फायदा बले आसे जसन की आप लोग गति ले सीखतोर एचो कोनी भौगोलिक सीमा नहीं आए। जितलो कर तोर मन आसे उतलो करोत, आप लो समय हिसाब ने और खर्चा बले कम होए से।
0: हाँ और ऑनलाइन शिक्षा चो नुकसान बले आसे जसन की व्यवहारिक ज्ञान मिल तोर कमी और ध्यान ए बाटे हुन बाटे भटक तो संभावना बले रहे से और तकनीकी चो ऊपरे निर्भर रतोर होए से हुन तो के भई बले खराब बले हो सके ने।
1: हाँ काय और उसने पारंपरिक शिक्षा चो फायदा बले आसे जसन की सामाजिक कौशल चो विकास बले हो से और व्यवहारिक लैब चो अनुभव बले मिरे से और संरक्षित वातावरण चो फायदा बले मिरे से।
0: हाउ देवकी और पारंपरिक शिक्षा चो खंडिक नुकसान बले आसे जसन की कठोर समय सारणी और ए तो जातो समय चो बर्बादी और खूबे खर्चा बले होए से ने कसन देवकी?
1: हाउ किरण, तू नंगत गोट के सांगलीस तो संगवारी मन, अगर आप मन काम बुता लोग मन आहास जाले आप मन काजे ऑनलाइन शिक्षा नगत रह दे।
0: हाँ और एबे चो पीला मन काजे और लेका लेकी मन काजे पारंपरिक शिक्षा खूबे नंगत रहे दे कसन देव की?
1: हाँ किरण, अले आम चो संगवारी मन के नंगत नंगत गोट बात के तो सांगलू ने। अले तुचो मोंडरा तो खूबे बड़े दखे से किरण, खूबे जमक धरून इलिसित असन लागे से। अले आम चो संगवारी मन काजे तु काय काय आनलिसित मोंडरा ने अल ढिलून दख?
0: हाँ काय आम चो संगवारी मन काजे खूबे जमक आनले से आजी मन।
1: हाँ आले काय काय आनलिसीत सांगून दख?
0: हाँ आमचो संगवारी मन काजे नाही नए तराने चो गीत मन आनले से और सामान्य ज्ञान चो गोट बात और गोटोक सामुदायिक गीत और गोटोक प्रेरणा स्रोत।
1: हाँ इत्रो जमक आनलिसीत ने तेबे तुचो मोनरा खुबे बड़े दखते रहे।
0: हाँ काय आले आमचो संगवारी मन के आजी चो नए तराने चो पहिल गीत सुनाऊ ने?
1: हाँ तो आजी चो पहिल गीत आय फिल्म रांझना ले स्वर दिला से जावेद अली कीर्ति और पूजा। ये चो गीतकारात इरसात कमली, संगीतकारात ए आर रहमान। तो संगवारी मन या सुनो ए गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज।

0: रोमांटिक ड्रामा फिल्म आए। ये था निर्देशक आत आनंद एल रॉय और ये था मुख्य भूमिका निभाऊ रला धनुष और सोनम कपूर।
1: तो संगवारी मन गीत गोविंद तो सुनते चिरुआ आले गंगिक थे बाउन भाती प्रेरणा स्रोत बले सुनुआ एके सांगला से सिद्धि रजक आले सुनो ये प्रेरणा स्रोत के।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि रजक और आज मैं बात करने जा रही हूँ अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिका सहित अन्य कई देशों में दास प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी दुनिया के इतिहास में साहस, ईमानदारी और स्वतंत्रता की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, अब्राहम लिंकन। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी अमेरिका में एक लकड़ी की झोपड़ी में हुआ था। अत्यधिक करीबी के कारण वे औपचारिक रूप से बहुत कम पढ़ सके, लेकिन उन्होंने किताबें उधार लेकर खुद को शिक्षित किया। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में लकड़हारे, नाविक और डाकिया तक का काम किया। जिंदगी ने उन्हें कदम कदम पर ठोकरें दी, कई चुनाव हारे, व्यापार में घाटा हुआ, यहां तक कि मानसिक तनाव से भी गुजरे। पर कहते हैं ना, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने वकालत सीखी और अपने संघर्षों के दम पर वे अमेरिका के 16वें तथा सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। वे अपनी ईमानदारी के वजह से प्रसिद्ध हुए और लोग उन्हें प्यार से ऑनेस्ट एब कहने लगे। तो आइए गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर तय करने वाले अब्राहम लिंकन के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन और मां का नाम नैन्सी लिंकन था। उनका परिवार बहुत गरीब था और खुद के बनाए लकड़ी के झोपड़ी में रहता था। लिंकन के पिता थॉमस एक किसान थे और साथ ही वह बढ़ई का काम भी किया करते थे। अब्राहम के जन्म के 2 सालों के बाद ही जमीन के विवाद के वजह से लिंकन परिवार को वह घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह नोब क्रिक नाम की जगह में आ गए और यहीं खेती करने लगे, लेकिन यहां भी जमीनी विवाद के कारण उन्हें जगह छोड़नी पड़ी, जिसके बाद 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना के ओहियो नदी के किनारे आकर बस गया और आज भी इस जगह को स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। जब अब्राहम लिंकन 6 साल के हुए तो उन्हें एक स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया, पर घर की आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें अपने पिता के साथ खेत में काम करना पड़ता था। 5 अक्टूबर 1818 को अब्राहम की मां नैन्सी की मृत्यु हो गई। जब अब्राहम केवल 9 साल के थे, अब्राहम के पिता नहीं चाहते थे कि वे पढ़ाई पूरी करें, इसीलिए अब्राहम खुद का खर्च चलाने के लिए सीखे हुए बढ़ई का काम करके एक नाव बनाई और नौकावाहक बनकर माल ढोने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दूसरों के खेतों में भी काम किया करते थे। कुछ समय के बाद एक रिटायर्ड जज की मदद से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके थोड़े समय बाद वह एक गांव में पोस्टमास्टर बन गए, जिसके कारण लोग उन्हें जानने लगे और उनका सम्मान करने लगे। अब्राहम लिंकन ने

0: स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राजनीति में जाने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चरम पर था। लिंकन को शुरू से गुलामों पर अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वे दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इसी विचार के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और विधायक का चुनाव लड़े, पर वे इस चुनाव में जीत ना पाए। अब्राहम एक समय में अपने जीवन से इतने हताश हो चुके थे कि वे चाकू छुरे से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे खुद को ना मार लें। उस समय उनके एक मित्र बोलिन ग्रीन ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनकी मदद से अब्राहम लिंकन दोबारा चुनाव लड़े और इस बार वह चुनाव जीत गए और फिर धीरे धीरे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। अब वह विधानसभा में खुलकर बोलते थे और अब उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने वकालत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं उनके कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1861 में जब अमेरिका गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की आग में झुलस रहा था, तब लिंकन ने देश की कमान संभाली। उत्तर और दक्षिण के राज्य आपस में लड़ रहे थे और देश बिखरने की कगार पर था। ऐसे मुश्किल वक्त में लिंकन ने दो ऐतिहासिक काम किए। पहला, अपनी सूझबूझ से अमेरिका के दो टुकड़े होने से बचा लिया और दूसरा, उन्होंने साल 1863 में मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिसने लाखों अश्वेत लोगों को गुलामी की बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। लोकतंत्र की अमर परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। गेटिसबर्ग के मैदान में दिया गया उनका यह छोटा सा भाषण आज भी दुनिया भर के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा मानी जाती है। वे इस बात पर दृढ़ रहते थे कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र सरकार में हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समान होने का अधिकार है। उन्होंने 1862 में होमस्टेड एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने गरीब नागरिकों और प्रवासियों को बहुत कम शुल्क पर जमीन का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार दिया। उनके कार्यकाल में अमेरिका के आधुनिक विकास की नींव रखी गई। 1862 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कृषि विभाग के गठन को मंजूरी दी। 1863 में एक समान राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली स्थापित की। कृषि और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना को समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त वे पेटेंट प्राप्त करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए। एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ वे एक आविष्कारक भी थे। 1849 में उन्हें उथले पानी में फंसे जहाजों को पानी में ऊपर उठाने के लिए एक उपकरण का पेटेंट मिला था। 14 अप्रैल 1865 को जब देश में शांति लौट रही थी, एक नाटक के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिंकन दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, अगर आपके इरादे नेक और हौसले बुलंद हैं, तो आप दुनिया बदल सकते हैं।
1: तो संगवारी मन, एबे तुम्ही सुन तेरा लास प्रेरणा स्रोत आले एक खिंडिक थे बाऊं एंड आई जाऊं अगला गीत बाटे और सुनू फिल्म पीकेले और एथाश्वर दिलासे शान और श्रेया घोषाल। गीतकारात स्वानंद किरकिरे और संगीतकारात शांतनु ओझा। तो संगवारी मन, या सुनू ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हाँ तो किरण,
4: हाँ,
3: गीत गोविंद के खंगी कर खेबाऊ और ज्ञान ध्यान चो गोट बात बले आनलू से हुनके बले सांगू ने।
4: हाँ तो संगवारी मन, आजी चो ज्ञान ध्यान चो गोट आए की हम चो छत्तीसगढ़ चो प्रतीक वाक्य आए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।
3: हाँ और हम चो छत्तीसगढ़ मात्र राज्य आए मध्य प्रदेश।
4: हाँ काय और नहीं देव की।
3: हाँ
4: हम चो छत्तीसगढ़ चो लता मंगेशकर जी बलुआत जानी कसन।
3: हाँ जाने का है।
4: हाँ हुनी किस्मत बाई देवार जी के बलुआत ने।
3: हाँ और तू जानीस किरण, हम चो छत्तीसगढ़ चो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म आए कहीं देवे संदेश 1965 ने बनाउन रला मनु नायक जी।
4: हाँ और नहीं देव की। तू जानीस का संजाले, हम चो छत्तीसगढ़ चो कश्मीर कोरबा जिला चो चैतुरगढ़ के बलुआत।
3: हाँ।
4: और हम चो बस्तर चो कश्मीर बिंता घाटी के बलुआत।
3: हाँ और किरण तू जानीस कसन जाले, छत्तीसगढ़ चो तालाबों की नगरी रतनपुर बलुआत और मंदिरों की नगरी आरंग के बलुआत।
4: हाँ काय आले ये तोरे ली आजी चो ज्ञान ध्यान चो गोट बात, आले फेर मूर करूं गीत बाटे और आमी आप मन का जे गोटोक सामुदायिक गीत बले आनलू से कन्नड़ भाषा ने ये चो रचना करला से दोदा रंगे गौड़ा, आले इया सुनू दकू ये सामुदायिक गीत के।

तो संगवारी मन एबे तुम्ही सुनते रहला सामुदायिक गीत कन्नड़ भाषा ले एदाय तुम्ही सुना से फिर गोटो गीत फिल्म दिलवाले ले एकेश्वर दिला से अरिजीत सिंह और गीतकारात अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकारात प्रीतम तो वाले या सुनो एक गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: हाँ, तो शंगवारी मन ये जहाला चो पहले तुम्हें सुनते रलाश गीत फिल्म दिलवाले ले। ये फिल्म 2015 ने बनाऊ रला गौरी खान। ये गोटक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म आए। ये था मुख्य रोल निभाऊ रला शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कृति सेनन।
5: हाँ, तो संगवारी मन एदाय तुम्हें सुना से दूसरा गीत फिल्म कीकले। एक स्वर दिला से मोहम्मद इरफान, और गीतकार मयूर पुरी, और संगीतकार हिमेश रश्मिया। अली या सुनू फिर एक गीत के।

तो संगवारी मन गीत तो सुनते रहें सुनुक चे सुनुक भाई से ने एदाय फिर गोटो गीत और सुना से तुम्हें फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी ले एके स्वर दिला से नीरज श्रीधर और सुजैन डिमोलो और एचो गीतकारात इरशाद कमली और संगीतकारात प्रीतम अले फिर या सुनो एक गीत के।

0: तो संगवारी मन आले आज आम चो जातो समय बल होली आले आम केंदाए दियास विविदा फिर मीरवा अगला कार्यक्रम ने कसन देव की
1: हाँ किरण
0: आले हेंदा आम के दियास विविदा मैं आए किरण मौर्य
1: और मैं आ देव की सेख्या
0: शुभ संध्या जुहार
1: जुहार।

0: आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे

0: जलन में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू, 17 जुलाई तक चलैया सत्र में 5 बैठका होही। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी।

0: पांच बजकर हो ही। सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज के संगे संग आने सरकारी काम पूरा करे जाही। भारत हा पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष ल खत्म करे बर अमेरिका और ईरान के बीच होए समझौता के स्वागत करे हे। इस संघर्ष ले विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट खड़े हो गए रहिस। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि यह समझौता ले क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है कहिन है कि देश के मध्यम वर्ग है राष्ट्र निर्माण में बड़का योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि पाछू एक दशक में सरकार है आम लोगन मन के जिंदगी ल सुधारे बर बढ़िया बुनियादी ढांचा कम खर्चा में स्वास्थ्य सेवा बने ढंग ले पढ़ाई लिखाई साफ सफाई वाले शहर के संगे संग सार्वजनिक सेवा मन ऊपर ध्यान दे हवे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग है घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। ऐसने बिजली दर में 6.23% की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि पंप मन में बिजली के भाव में प्रति यूनिट 40 पैसा के बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन ल ऊर्जा प्रभार में दे जाए छूट ल 30% ले बढ़ा के 40% कर दे गए है। बिजली के बाढ़े दर अवैया 1 जुलाई ले प्रभावी होगी। गर्मी के छुट्टी के बाद काली ले प्रदेश के जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद खुल जही। इस दौरान होवैया कार्यक्रम में शाला प्रवेश उत्सव पर स्कूल प्रबंधन पूरा तैयारी कर ले है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल अवैया नवा लड़का मल्ला तिलक लगा के स्वागत करे जाही और संगे संग छात्र मल्ला पुस्तक ड्रेस और साइकिल दे जाही। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राज्य गीत के संगे संग आने आने गतिविधि ल जरूरी रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे है। मुख्यमंत्री है प्रदेश के जम्मो जनप्रतिनिधि मल्ला चिट्ठी लिख के 16 ले 27 जून तक होइया शाला प्रवेश उत्सव में अपन भागीदारी देके आह्वान करे है। मुख्यमंत्री है कहिन है कि शिक्षा है कोनो भी समाज और राष्ट्र के विकास के आधार है। उमन मंत्री सांसद विधायक जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष महापौर के संगे संग नगरी निकाय मन के जनप्रतिनिधि मन ले विनती करें कि अपन क्षेत्र के स्कूल में जाके ये अभियान में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गर्मी के छुट्टी खत्म होने के बाद आज ले खंडपीठ और एकल पीठ मन में सुनवाई एक घाव फिर शुरू हो गई। आज ले वकील मन अदालत कक्ष में आके अपन पक्ष रखिन। जानबा के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी 18 मई ले शुरू हो रही। इस दौरान सिर्फ जरूरी मामला मन के सुनवाई पर हरेक हफ्ता विशेष अवकाशकालीन पीठ बनाई गई रही। अवैया मानसून ल देखत आज ले छत्तीसगढ़ के जम्मू टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मल्ल पर्यटक मन पर बंद कर दे गए है। ये जम्मू संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रही। वन विभाग के मुताबिक पर्यटक मन पर अब जंगल के दरवाजा 2 अक्टूबर ले खोले जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला पर दोबारा होवत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एला NTA के वेबसाइट neet.nta.nic.in ले डाउनलोड करे जा सकते। परीक्षा 21 जून के मझनिया 2 बजे ले शुरू होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार खोती। पशुपालन ल बढ़ावा दे बर राज्य सरकार है बस्तर के हर परिवार ल दुदुठिन गाय या भैंस दी। ए घोषणा काली रायपुर में हो एक ठिन पुस्तक के विमोचन समारोह के मौका में मुख्यमंत्री है कहिन। उमन कहिन कि नक्सलवाद के सेती बस्तर के लोगन मन है विकास ले दूरिया रहीस। एखरे सेती अब तेजी ले विकास कम करे जाही। एखर बर रोड मैप तैयार कर ले गए है। मुख्यमंत्री है बताइन कि गांव गांव में राशन दुकान खोले जाते और सुरक्षा शिविर मल्ला सेवा डेरा के रूप में विकसित करे जाते। कार्यक्रम के ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो शामिल होइन। दुर्ग जिला के पुलिस लाइन सभागार में हो एक ठिन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति कोतिले शौर्य चक्र ले सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर

देशमुख के नागरिक अभिनंदन करेगी। ये मौका में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ह कहिन कि ये दोनों अधिकारी मन कठिन स्थिति में साहस धैर्य के परिचय देके छत्तीसगढ़ पुलिस के गौरव बढ़ा है। उमन बतायन कि शौर्य चक्र शांतिकाल में दे जाए देश के तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ए बेरा कांकेर जिला के पखांजूर थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट 40 सफल नक्सल मुठभेड़ मन में शामिल रहीन तो उन्हें भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख 25 नक्सल विरोधी अभियान में अपन भूमिका निभाईन। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के होवैया कार्यक्रम पर औपचारिक कार्यक्रम मन के शुभारंभ करीन। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में संवाददाता मल्ला बतायन कि प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोलकाता के रेड रोड में करे जाही। उमन बतायन कि ये मौका में 45 के योग प्रोटोकॉल रखे जाही। इसो के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। केंद्र के मोदी सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ढारले पिंडरा नगर के मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। उन्हें शक्ति जिला पंचायत कार्यालय में घलो मोदी सरकार के 12 साल पूरा होए ऊपर प्रदर्शनी रखेगी है। रायपुर में हुए 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन बढ़िया प्रदर्शन करीन। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुए 3 के प्रतियोगिता के आखिरी दिन काली छत्तीसगढ़ 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के संग 4 पदक जीतीन। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिलीस। पूरा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश पहली जगह बनाईस तो उन्हें दूसर स्थान में केरल और ओडिशा तीसर स्थान मिलीस। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्य ले करीबन 800 खिलाड़ी मन भाग लीन। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचे में थोड़ी समय लग सकते है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि बिहार ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक 1 द्रोणिका बने हैं। एकर प्रभाव ले कोनो कोनो जगह में गरज चमक के संग वर्षा हो सकती है। अब थोरकुन समाचार सार में दुर्ग जिला के अग्रसेन चौक और ओखर तीर तखार के रद्दा में अवैध रूप से चलाए जात ठेला खोमचा वाले मल्ल प्रशासन डहार ले हटाए के कार्रवाई करेगी। कबीरधाम जिला के दसरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल के संयुक्त टीम बिजली वाले जिनिस के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे है। और कोंडागांव जिला में पटवारी भर्ती में चयन कराए के झांसा देवैया 1 मनखे ले करीबन 6.5 लाख रूपया के ठगी करे के मामला आगू आए है। इस मामला में पुलिस 1 युवक गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू 17 जुलाई तक चलैया सत्र में हो ही 5 बैठक। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल ही 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: कलम नवोन्मेषे अपि तु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पांसिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः, स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेण अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newzoneair.gov.in इत्यत्र अथ newzoneair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुषमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिककार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुषमन्त्री प्रतापराव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अवोचत् यत् मुख्यकार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45-निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्यकार्यक्रमेण सह हुगलीनद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांसदेशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50-50 G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70-100 दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः एमैनुअल मैक्रों G7 देशानां नेतृणां औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिश्र देशः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं देवाराम सोड़ी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

రాజు నకలు సికేమ్రా రాజు నడి కొర కొర రాజు నడి

dale, dale, dale. ¡Iba!

Oh, makeru sembawa, makeru sembawa.

देवाराम सोड़ी और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों, बस्तर और सरगुजा सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की छूट को जारी रखा गया है। देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लिए जाने वाले अधिभार को अब प्रति माह के बजाय प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। वहीं अग्रिम भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली 0.25% की छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकल पीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ताओं ने अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। कल रायपुर में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया, अब बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सलियों ने अपने जिन कैडर की नसबंदी कर दी थी उनकी नसबंदी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में यह संभव नहीं हो पाएगा ऐसे दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने भी संबोधित किया। मॉनसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जिन संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा उनमें अचानकमार, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। वन विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से इन सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के संवेदनशील गांवों में भी यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के 36 विकासखंडों के 697 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले 2476 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 16,20,000 लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मॉनसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की।
2: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उत्तर छत्तीसगढ़ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आगामी 3 दिन तक लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। मॉनसून का प्रो आगामी 4 से लेकर 5 दिन का अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक और उसके आसपास की सड़क में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले खोमचों को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की दशरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत सामग्री के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग 29 लाख रूपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। और कोंडागांव जिले में पटवारी भर्ती में चयन कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 6.5 लाख

0: की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम भगनी, राम राम
1: राम राम कुंदा दादा, राम राम
0: अमरलीस ने
1: मरलिका
0: खूबे दिन ले भेट घाट हो खोली ने तो दक बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सफाई भाई बहन और संग झवरिया संगवारी मन के मैं कोंदा
1: और मैं भगनी
0: हमी दोनों करूं से
1: राम
0: राम राम, राम। पीला मन कसन
1: बोलता नहीं
0: तो रेडियो रेटेटे बस लो सफाई नान नान पीला मन के हमी दोनों चुबाट ले खूबे खूबे
1: मैया
0: तो फगनी
1: दक
0: हमी तो किसान लोग मनाओ ने
1: हाँ।
0: और किसान जो माई मूर कमाई खेती,
1: खेती आए
0: हाँ। और खेती बेड़ा खड़ा कमानी मूर होली से
1: हाँ। ने हाँ, होली से
0: और सपाई किसान मन पानी के दक्ष होत कि पानी ये ती जाले अच्छा होती बुन तो लोग मन बुनुन दिला पलहा पका तो लोग मन पलहा पका ला
1: हाँ।
0: और मान तरे भी बोले डहा निछान ली से ने और असन ने किसान जो ना ऊपर दखुन भाती पानी के भी ऐदे बोलुन भाती टाकला और इंदर देव बोले पानी बरसाऊन देता जाले सफाई का जी अच्छा होती ने और दकसन आए जे पानी चो गोठोली खेती कमानी चो बात आए तो बल्लो ने पानी बिना नहीं होए और पानी सफाई बाटे पूरो बल्लो ने हुन बरसाई पानी पुरुख सके और जे चो लगे ट्यूब बेल आसे नहाले सिंचाई चो और कहीं साधन आसे हुन गोटोक खंडी कसन भाग ने कुछ करुक सकु हम मात्र गुलाय क्षेत्र के हम के जो ना कमानी करतो आए बल्लो ने हुन होई से बरसाचो
1: पानी
0: और देख बरसाचो पानी असन आए खूबे मोल आए बोलू ऊपर के घसर लो ने हाजुक नहीं देतो
1: आए
0: हुन के जो ना हम के थे बाउन संगातो
1: रहे
0: हुन जो काजी हम के पारा पीछे गांव पीछे चुआ बनातो आए तरई मुंडा खोदा तो आए ने और संगे संगे जैसन की रपटा आसन बना तो आए और नदी जाए से जाले हुन था ने फिर डेम बना तो रहे ने
1: डेम बना तो रहे बांध
0: बांध तो रहे पानी के बांधुन दे तो रहे और बड़े डेम तो हम बनाओ नहीं सकूं
1: इसने
0: बांध तो का नान नानी बले हम ही गांव जो भागीदारी ने पंचायत जो भागीदारी ने नहाले पंचायत संगे सफाई लोग संगे मिसुन भाती हमी सरकारी अमला बाटे बले आवेदन देउन भाती पानी रोका रोक तो काम के करूक
1: सकू और फिर ऐसी नहीं होली पर उन पर जो तन कम खोदरा से उनके पर खोद

0: आ गेल करू रे हूं त बल थे बुक सके दे
1: हाँ।
0: और फिर आप लो चुआ चुई बल किनी कर खूबे गड़िया कर रहे हूं ने बल पानी के हम थे भाग सको
1: हाँ हाँ।
0: कसन की थे बन रहे तो हम फिर पाचे के आप लो बाड़ी ने हो कि बेड़ा ने हो खेती ए बाड़ी चो कमानी का जे साग भाजी का जो धान का जो बल निको हो दे
1: हाँ हाँ।
0: और फिर हूं के ए फिर हम जो पानी बल फिर कभी कभी समय पर नी बोली उन दिवाई ने हाँ ये फिर रुक रहा एक बार गोंदे सब बोल फिर हम जो फिर इंद्र देव बोल कि निकाय तो हो बात ले फिर समय बेरा नी मिले पर मुनी अन अटक बेरा होले ये पानी फिर हम के फिर काम दे देखो
1: हाँ, आय आय तो ही काजे बलतर गोटी आए कि हम ही सफाई लोग मन मिलुन मिसुन भाती पानी के बचा तो काम करू ने और ये समय ने जसन की बे अच्छा गोट के सांग लीस कि चुआ बोले गढ़िया रहो तेरी मुंडा बोले गढ़िया रहो ने तेबे हुन ताने पानी थेबे दे और आगर रह दे और आगर समय तक चले दे और उन सोचे जो ना खंडी कसन कोदा उन देवा तो पानी बल खंडी कसन धरे दे झपके सरे दे तो हम के लाम समय तक और खूबे समय तक काम पड़ो ये चुका जी हम सफाई लोग के लेख करतुआ है और गांव ने मिलुन मिसुन भाती काम कर लो ने हमी गांव पीछे गांव ने दुई तीन भाग ने चार भाग ने हमी अच्छा गड़े तरी मुंडा खोड़ा उकलाई सकू
0: सकू मिसुन बात ले कर ले उन बुता खूबे होए से
1: खूबे होए से
0: और आप ले सब चुका आज काम दे से फिर पानी बल फिर असन आए कि हम जो पैसा आसन के फिर गेने बल लागे से और थाने तीवेल दूसरे थाने रले फिर मांगलून बात लागे से तो पैसा देव कर असनी दिली जाल फिर इंद्र देव फोकान दे तो फोका बीती चो आम की खूब काय तो करू
1: पड़े से बल तो रे गोटाई फोका ने मीरे से बोलून हुन के फोका जाओ
0: फोका जाओ कोई देत रहे हो
1: उनके हम के जो ना बचाउन बचान संग और हुनी बचा तो काजी आई जितलो हो सके हम के हुन के कसने करून बले हुन के थेबात
0: थेबात रहे
1: हो हुनी पर थेबालो पानी हम के काम आई दे और बहुन गेलो ने जो बोहे से पानी बेड़ा ले जो नालन जाए से नाला नदी जाए से और नदी ले समुद्र में जाए से और हुन पानी के हम नहीं सकू तो हुनी का जे हम के फोका जाओ नहीं देख तो आए और पानी के कसने करुन बल थे बात रुआट बना तो आए और यही ऐचे ने हम जो खेती बाड़ी चो बोले उन्नति हो दे और हम चो बोले उन्नति हो दे तो आले गोट तो होली संगे संगे हम चो लगे जहाला मना से एक बल अमराव
0: अमराव
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो।

0: मुन्नीटा लेकेन एइंग प्रतिशत टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल औ इलेक्ट्रिक मूंड चक्काना गाड़ी एइंग प्रतिशत जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के औ सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: फगनी दख तू चो मोंडरा दख है से मैं गुट कविता पाठ है संदखा दे इसने आले ये अमरावती बे के ने
5: हाँ
4: कौन बहिन सांग सोत
5: नीला पांडे श्रीमती।
4: अच्छा आलते बे एक कविता सुनो
5: सुनो।
6: मुझो बस्तर चो दादा दीदी मन सियान सज्जन मन तुम सबके मैं नीता पांडे करे से जुहार और नानी चुन लेका लेके मन के खूब बेखूबे मया आज मैं हल्बी कविता धरो नीले से मुझे कविता आए गोटुल। बस्तर मोचो चोला आए बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए एदे सुना गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए मैं बस्तरिया चो धर्म आए गोटुल गियान चो गुड़ी आए गोटुल गियान चो गुड़ी आए ए गुड़ी ने लेखा लेखी के ज्ञान मिरु आए ये गुड़ी नानी बड़े के मानोन गुनो रतो गोट के सिखाऊ आए पिकोर पेन देव लोक के बरसक करु आए बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए एदे सुना गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए मैं बस्तरिया चो धर्म आए। जोन थाने बसुत देवधामी जोन थाने बसुत देवधामी सबु करू से नगद काम हामी बस लासोद गोटुल ने लिगो देव सामी लिंगो देव गीत जो देव आए खुबे नामी एदे गीत जो देव आए खुबे नामी बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए 18 पाड़ बाजा गोटोक संगे बजातोर आसे सकत लिंगो देव की गीत संगीत बाजा गाजा सिखा तोर सकत आशे गोटुल गुड़ी के नव जमाना चो लोग खराब समसुत नाद गीत के यहा खुबे सुरक्षा करवा गोटुल चो रीत के बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचा तोर मैं बस्तर याचो धर्म आए गो और टुल ने मिसुन बनली गोटुल गो बल्लो ने गियान और केंद्र आई टुल लेकी मन मोटियारी और लेका मन चेलिक लेका मन दीवान और लेकी ब्रासी बेलोसा ये जगह आए गियान चो मालिक समिया समिया ने समिया समिया ने बैठक होए से गांव चो गायता माजी पटेल संगे परसानी चो चर्चा होए से इथा चर्चा होए से काय चर्चा होए से बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए लेकर आसे दीवान आप लो गोट संगाए से इथा निपटारा होए से इदे निपटारा होए से इथा गोटुल आए गांव चो सूरज गोटुल आए गांव चो सूरज और चेलिक मोटियारी गांव कारी चो निभासोत रक्षा चो फरज गोटुल चो गीत गोटुल पाटा आए गांव चो धीरज गोटुल चो गीत गोटुल पाटा आए गांव चो धीरज असन सुंदर आए गोटुल चो कारज असन सुंदर आए गोटुल चो कारज बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए इदे सुना गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धरम आए मैं बस्तरिया चो धरम आए गोटुल आए बस्तर चो पागा गोटुल आए बस्तर चो पागा रख्या करुन देश दुनिया के सांगा गोटुल आए बस्तर चो पागा रख्या करुन देश दुनिया के सांगा मांगा मांगा बस्तर भूई चो मया के मांगा बस्तर संस्कृति सुरक्षा के मांगा इदे बस्तर संस्कृति चो सुरक्षा के मांगा बस्तर मोचो चोला आए बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए सुना मोचो देशवासी सुना मोचो देशवासी मोचो बस्तर आए काशी इदे मोचो बस्तर आए काशी चेता चेता चेता चेता मोचो नवा जुगिया लेका लेकी चो राशी खुबे पवित्र मोचो बस्तर आदिवासी मोचो बस्तर आदिवासी मोचो बस्तर आदिवासी मोचो दूसर कविता आए मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा गच कुटके नी काट तोराय बलुन गांव गांव ने सांगवा मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा गच कुटके नी काट तोराय बलुन गांव गांव ने सांगवा रंग रंग चो झाड़ छड़ुका रंग रंग चो झाड़ घरो झड़ुका रोपुन पर्यावरण चो सुरक्षा करवा हाँ पर्यावरण चो सुरक्षा करवा या दादा दीदी मन या दादा दीदी बंचो रक्षा करवा वंचो रक्षा करवा पीला छीला सियान सज्जन पीला छीला सियान सज्जन सबू चलासोत मोटर गाड़ी पीला छीला सियान सज्जन सबू चलासोत मोटर गाड़ी फैले से धुआ होए से प्रदूषण नी लगाओत कोनी जंगल झाड़ी पहले से धुआं होए से प्रदूषण नी लगाओत कोनी जंगल झाड़ी बरसा नाई होए से घाटा धान पान के भारी भूई ने गरम बड़ली जानू छत विछत हो सोत नर नारी मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा गच खुट के नी काट तो राय बलुन गांव गांव ने सांगवा इहा मोचो दादा दीदी मन इहा मोचो दादा दीदी मन और संगवारी मन कसम खाऊन गच खुट रोपुन बंचो रक्षा करवा घरे घरे जाऊं नारा लिखुन जन जन के जागरूक बनावा घर बाड़ी ने गचखुट जगाऊन घर बाड़ी ने गचखुट जगाऊन मधुवन नसन सजावा मधुवन नसन सजावा मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा गचखुट के नी काटतो राय बलून गांव गांव ने सांगवा या गांव गांव ने सांगवा रंग रंग चो झाड़ छकड़ू का लगाऊन पर्यावरण चो सुरक्षा करवा या मोचो दादा दीदी मन वंचो रक्षा करवा इदे वंचो रक्षा
4: करवा। हाँ तो फगनी काय रसिया ये कविता पाठ के अमरालू ने और द की कविता संगे संगे मोंडरान गोट गीत बोले आसे ये गीत के बोले झटक ना अमराउन दे।

0: फग्नी
1: वही ज्यादा
0: हाँ दक ये गीत के तमरालू ये गीत के गाउन राहत मेघनाथ पट्टा करुण मंचो संगवारी मन और दक संगे संगे आधा हम जो बेरा होली बलून मुंडरा और गडरा के जोड़ तोड़ ने कसन बलून समय आने ये तो राय तो समय अन जा तोड़ बोले आए और समय आ जो मान सबके कर तो आए ने और यही समय आए जो न मनु के आप लोग सफाई काम के करुक सिखाए से और हूं जो बात जो ना समय आके अच्छा बावर लो ने पीला मन बोले आप लोग पढ़ाई लिखाई ने अच्छा नंबर आन उन पास हो सो
1: और किसान दादा दादी किसान दादा दीदी फसल
0: पाए सो तो हुनी साहब ने आले मैं मोटा का डाक सकने तू भी दादा
1: जातो पूरे बस्तर से सुर सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन की मैं पगनी
0: और मैं कोंदा
1: आमी दोनों करूं से राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार फग्ने जुहार
1: जुहार कुन्दा भाई जुहार
0: और चेसंगे आमचो गाउँ कार्यक्रम सुन्तो सबाई सियान से जिन भाई भाई और संग जवने संगवारी मन के मैं कुन्दा
1: और मैं फग्नी
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार
0: और फिर रेडियो रेटे रेटे बसलो और सपाई नान नान पिला मन के आमी दोनों जुबाट ले खुबे खुबे
1: माया
0: दक फग्नी
1: ये समय उम्र से ने बरसत चौमास ये जेठ जाए से चौमास
0: उम्र से हाँ और ये समय के जो ना किसान भाई खूब समय मतलब टाकुन
1: रहे से तो कि ये चौमास उम्र ली बोलूं ना आप लो बाड़ी हो कि बेड़ा हो कसन हर बर हो तैयार करे सो बोले यार कौन कौन

0: नहीं मारे तो ये जो कारण बोले हमने बना कसन ने बोलो ने आगे हम जो बस्त ने रान बन अभायक रहे मानतर समय जो अनुसार हम जो रान बन के हमने मन गोनते गे कोनी घर बना तो काजे गोंदू नीला ने
1: कोनी सड़क बना
0: सड़क बना तो काजे तो कोनी पारा बसा तो काजे असन करून करून रान बन के गोनते गेला कोनी बेड़ा बना तो काजे ने तो हुसन कर लो ने काय होय से की हुन बरसा बरसा सही हिसाब ने और सपाई बाटे बराबर एक जसन नी होय से होनी काजे हम सपाई लोग के समझू पड़े दे तो जसन रानबन उजड़ते गेलो ने पासे हुन पानी बरसा बल नी होय दे और पानी बरसा नी होलो ने हम फिर खेती कमानी कसन करवा और हम जो माई मूर कमानी खेती कमानी आए और ये भी जो ना ये जो बरसा उतरे से तो हम ही सपाई लोग जो पड़तो पीला मन ले धरुन भाती खेती कमानी लोग ले धरुन नौकरी चाकरी और सपाई जितलो लोग बोले हम बस्तर ने आसू और ये संसार ने आसू सपाई लोग जो ये जिम्मेदारी आए कि हम ही बूटा मंडाऊ ने बूटा मंडाऊ और ये बूटा मन जो ना है तो हुन बूटा मन जो सकला भले कर गोरला आसन बनाऊ दे उनके गाय बैला नहीं खाओ आसन व्यवस्था बनाऊ तेबे यही बूटा मन पासे जो ना नहीं बाढ़ दे और बाढ़ भाती रूख बन दे ने
1: बन दे
0: तेबे जो ना पानी
1: बरसा
0: अच्छा
1: अरे अभी समय बोले हो चौमा समय आये यही समय फिर बूटा बल मंडात काज बोल पानी ऊपर ले ऐसे बल नहीं पड़े
0: नहीं पड़े
1: कि फिर गोरला आसन कर दिले फिर अच्छा निक हो से उन बूटा बोला अच्छा बाड़े से बरसा ने
0: तो हंस ने पानी ये भी उतर लो ने हुन बूटा मन काज तो नीको रहे दे संगे संगे तरी मुंडा काजे बोले अच्छा रहे देने
1: अच्छा रहे से आप हम सांग लुत की जोन थन कम
0: गड़िया
1: हास हम तब आग ये भी जेड बड़ा हम के गड़िया खूबे मिलुन मिसुन करू रले नाल फिर शासन गाइले कई योजना ले करुन रले हु तक गड़िया कर रले हम की पानी खूबे जमा होय दे और हुन पानी फिर आप लोग बाड़ी नहीं हो कि बेड़ा नहीं हो बोले नहीं ये तो बेरा दका बल सकू कसन की उन्हें और फिर ये आम तरी मुंडा चो पानी आम चो आगत ले खूबे दिन ने रली जाले आम चो मनु काज हो कि जीव जंतु कहीं पशु मन काज बल हो खातो काज बल हो से नाल पर गांव ने कहीं काम धाम हो से तो उन्हीं तरी मुंडा ने आम चो लोग बाग जाओ हो से
0: और संगे संगे तक फगनी तरी जीतलो आगर ले आगर बना लो ने हुन जो गोटोक फायदा बोले आए किसान चो सहायक रोजगार चो रूप ने हम मछली
1: बल पस
0: और मछली पोसवा तो हुन नहीं तरी पानी काजे बले होय दे और हुन आय बले होय दे लाभ बल मिले दे तो हुन हिसाब ने हम जितलो तरी बनावा हुतलो हम के फायदा और ये फायदा के सपय उठा तो राय और सपय गांव मन ने और हम ही एकलाई नहीं कर सकू तो आजकल गांव मन ने समूह मन बल बनते गेली से और नी बल बन ली जल हम पारा पीछे समूह बनाउन भाती असन तरी खोड़ाउन भाती हुन थान अच्छा गढ़िया करूं और मछली बल पोसू हम के दुई लाभ मिले दे मछली पोसून भाती हुन चोले बले कमाई करवा और संगे संगे हम के पानी बले हूं थान रोकथाम हम रहे दिने
1: तो ये गोट मन की सुन ज्ञान दी हंच गोट होली एदा आम चले गोटक जहा लास एक बल सुनो
0: आले मन के बले हमरा हूं तेवे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के

0: दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेंड मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: ये गोटमन के हम रालू और दख हमी बस्तर ने रहूं से ने बस्तर ने हम जो बोले कई रुसुम मना से रुसुम आसे परंपरा से रीति रिवाज आसे और हमी हुनी अनुसार बस्तर के चलाऊं से और बस्तर ने जो न मैमूर जनजाति लोग मनासू ने और हम जो बस्तर के जनजाति नाव ने जान तेबे सोचे हम छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बोलू भारत स्तर ने बोले एक जनजाति जिला चुनाव में जान सो ने तो असन ने कहा है कि कई प्रकार जो संस्कार हम जो बस्तर नया से प्रचलित तो असने गोटोक संस्कार उपरे परिचर्चा के आज हम धरु नीलू से और द के परिचर्चा ने भाग धरला सोत भाई श्री सोमारू राम कौशिक और श्री मंदर राम नाग और संचालन कर सोत बलवीर सिंह कच्छ आले तेवे हम ये परिचर्चा के सुन।
5: रेडियो सुन तो भाई बहन मन आमचो जनजाति विवाह संस्कार जो परंपरा आगे कसन दली आरु एबे कसना से आरु आगे आरु एपचो ने काय फरक दखा दे से बले ने खर्चा पानी ने बले ये सब गोड बात कर तो काजे आजे आमता ने इला से श्री मंधर राम नाग मुरिया समाज ले आते मन और ताचो पदाधिकारी बले आत और एची संगे सोमारू राम कौशिक सोमारू राम कौशिक एमनात कोया समाचो संभागी संरक्षक बलियात तो सबले पहले मैं मंधर राम नाग के पूछे से कि आगे जसन की जनजाति विवाह संस्कार ने बल्ले आमचो जनजाति ने गांव ने जोन बोले लोग निवास कर सो मूल निवासी लोग आत हनमनचो जोन विवाह बल्ले ने शादी ब्याह करते रहो बल्ले खूबे कम खर्चा ने होते रहे मंत्र एवे किनिक फर्क दिखा रहे से
6: ये बे बोलू बे बलवीर कच्छ जी तो आजकल शादी विवाह चो दौर खूब चले से मैं दखे से कि खूब परिवर्तन होली तो ये परिवर्तन में के दखुन वाती मैं कसन लागे से कि आम चो पैसा कोड़ी बिल खूब नुकसान हो जाए और बे मतलब चो खर्चा था यही से आमी बेटी देव से या बेटी आनू से मैं दोनों वाट दखे सी तो लोग खर्चीला है आगे असन आमचो जसन जन्म अरे जानतो बेरा ले इतलो ताम झाम नहीं रहे ये भी जाऊं से बाजा मोरी तो आगतली रेली परंपरा है आमचो आदिवासी समाज में जो बोले आमचो गाजा बाजा रहे अब गाजा बाजा बोल दका असन गाजा बाजा होली से कि आमचो कांचो कीड़ा बल गिर मने घसर तो सर इतलो आवाज डोकरा डोकरी तो उनमन चु कान फाट तो सन आवाज भी थी गोटोकुन बाजा नी सकली से तो ये बाजा खर्चा वाले बहुत खूब आए हम चो

0: बाजा मोहरी आगे ली तो उन बीति आमच पारंपरिक बाजा मोहरी रहे, उनके दग थ्रू आमच खर्च जबलबंत रहे, मैंने सीमित रहे। उसी प्रकार आमी छापर बनात रहूं, पहले छापर के रूप में छापर ने आमी काय करो आमचो रीति रिवाज परंपरा ने मांडो गटोक रहे, मांडो गाड़ भीती उता गटोक मोच ना नी असन खंदी के आनन उता गाड़ू उंच संग ने एक जो सर्गी रूप चो खंदा कुता गाड़ू। आरु ये मैं कहाँ कहाँ तक से एक टेंट वल होली और छापर वलाम लगे उतलो डारा बुटा वाले नहीं आए आमच पिलका तो रुक के गोंदुन दे और छापर वाले जहाँ उता बिया मंडप आए नहीं उता बना जगह नहीं दूसर जगह बोले आठ गोंदुन माते उनका पाठन दे ये बोले आम चुखिनी का आम चु पर्यावरण का चुखिनी का नुकसान होए दे होए से। तो उन्हीं प्रकार आम चो जसन की गरीब लोग बलासु सौकार बलासु आम चो उंच बराबर आमी बनाल थोड़ी है गरीब लोग बोले हैं जमीन की बिकुन जमीन के गान हमारून और बैंक कर्जा धरून माती हमी शादी विवाह करूँ से मचवी साहब ने तो ये खूब फरक आशा गए शादी ने आरियप चो शादी में
1: दे तो अच्छा गोट के सांगलास मंदर राम नाग भाई मैं दे सोमारू राम कौशक के पूछे से कि जसन की आगे बल्ले ने आरु ये भी बल्ले जसन की काई बल्ले काम होले ने बल्ले बिया ची शादी नहीं और बल्ले दोसन सामाजिक काम है क्रियाक्रम होगरा है बल्ले ने सपाय मिलुन में सुन बल्लेन करो जसन की घर घर ले बल्ले चाउर बलिया लोन बलिया जोन बलिया सगा लोग ये उन बातें धरुने हो तो उतलिन बोले निपटते रहे मांतर ये भी दखा दखिन का है कि खान पान ने बोले खिन एक फरक ज्यादा खर्चा हिसाब ने होए से तो एक ही बोले का है कि आम चो जो समाज चो लोग मन क्या है ज्यादा आर्थिक जो बोझ नहीं हो ये चो का तुम्हें का है बोलो चाहे
2: बहुत अच्छा गोट है बलवीर खज दादा नाग दादा हम की आज जिछ युग ने और परे पहले छो जो नीति नियम है उनमें फर्क खूब आसे वैसे क्योंकि ये भी छो माहौल और आगे छो माहौल में हमन मन घर घर ले सोलोक छाउर मेरे नीति हिसाब ने किंडिकेशन मऊ नेत्रोत मऊ मंद नेत्रोत और लोन बोले मेरी बोले आए जितरो शक्ति है उतलो गरीब हो चाहे अमीर हो नवन बाती उता एक भंडार सार उतरे उथाली दखते रहो और सामने बिता के चाहे लेखी बिया हो चाहे लेखा बिया हो उनके बड़ा अच्छा सहयोग मिलते रहे और कम खर्चा ने ना नियसन मांडो बनाते रहो नल कहीं कि हम जो समाज तो कई समाज आसे कोनी समाज तो असनी बोले पानी अर्धी गसन बाती नीति के निपटा रहो निपटाते रहो और कहीं कहीं तो जैसे रुक रही गोटा है जैसे मंदर दादा सांग लो एक मऊ केंदा है एक सरगी केंदा है और जैसे आमचो समाज ने बोले कोया समाज ने बोले वो मऊरू के जाऊन बाती मुरंग तो फांदा रूढ़ी प्रता साहब ने गुनिया पेरमा पुजारी ये उन बाती और ये भी तो जमा परंपरा ओली से अनुकरण करुण बाती खर्च होत नीति नीति के दुर्गा समाज में एक है सेमोर रूप हुआ उनके बोलान उन बाती गाड़ उन बाती पानी रखा तो रुक करते रहो तम चो समाज निमल करते रहो लेकिन ए बे नियम कुछ अलग जो गरीब का जो बहुत तकलीफ आसे उन तकलीफ के हम की खुद के सोचू पड़े दे समझू पड़े दे क्योंकि अमीर आदमी तो करे दे गरीब आदमी के तकलीफ आसे गरीब आदमी बोले उठा जाऊं दखलो जाले उनसे बेटा बोलू है बेटी बोलू है हम उसने शादी करू को हम के बोला उसने करा तो बाप माए बाप परेशान माए बाप परेशान उन बात ही लागा मांग सो सौकारता नहीं हो चाहे बैंकता नहीं हो मांग उन बात ही काम के कसनी हो बेटी जो जिंदगी बनो बेटा जो जिंदगी बनो सोच तो जरूर आए लेकिन तकलीफ तो माए बाप के आसे ऋणी नहीं रहे सोत ये कि लेखा लेखी की बोले समझुक पड़े दे आम के गंवरिया के बोल समझुक पड़े दे बड़े बड़े टेंट ठान उन बात ही बड़े बड़े स्टेज लगान बात ही और उनको बाजा नाचते भी थी लगा हुआ कान पाट तो असन
1: डीजे
2: डीजे ये सब लगा सोत तो लोग के ये

0: कार्यक्रम के लगभग आज के एवज में लगभग तो 1 लाख रुपया खर्चा आसे।
1: हाँ
0: तो उन तो उतली का जी आए, लेकिन और बोले है सामान हमचू गंवरिया हिसाब में कुकड़ी है, बकरा है, जो बोले कान पान जो छिलु है उन बल ज्यादा खर्चा लागे से ऐसा के ओली कहाँ ले ओली ये हम के बोले समझो समझ तो खाजे परे आंसू हम के समाज के सपाए सभी समाज के लोग के ये चीज के ध्यान देन बात ही कहीं ना कहीं एक नियम बनान बात ही समझा तो कोशिश कर ले अच्छा होती का ऐसा हम विचार आसे।
1: तो असन कौशिक दादा है तो अच्छा घट बोलिस मानतर ये भी जो जोन जोन लेका लेकी मन पीढ़ी है से तो जब तक ये मन नहीं समझो और आगे जो जोन रीति नीति रुसुम रहे उनके का है कि गांव ने भी जोन बोले पुराना लोग आसोत बाचला से तो उनमन के बोल का है कि उनमन के समझाओ के लाए पाड़े दे सांगुक लाए पड़े दे कि आगे आम चो जोन रुसुम है असन डोली सपाए मिलुन मिसुन कहीं बोल काम के करते रहू चाहे आर्थिक रूप ने हो नहीं तो कहीं दूसर सामाजिक रूप ने बोले हो तो उतलो बल्ले ने कहीं आर्थिक बोझ भार नहीं पड़ते रहे जसन किए बे दखा दखी ने जसन को नहीं जैसे लोग दम आसे पैसा आसे तो उनसे उनके दुकन बाती दूसर गरीब जिन पीला लेका लेके उन्नाथ उन्होंने बोले जसन तुम बल्लास की उसने आम चुबल बिया हो तो उसने बिया हो लेन कहा है कि कहाँ ले पैसा कोड़िए अनुवाद को नहीं गरीब माने बस दुई मतलब खीनिक भूई जमीन आसे जाल उनकी भी कुकला सके और कहाँ ले अनुआ है
2: कहाँ ले उन कर्ज आवले बैंक कर्ज आवले
1: हाँ
2: छूट
1: तो आए थी तो देखा ऐसा ना कि आमचो कहावत बोले आसे कि घरे रांदा नहीं दुआरे भैंसा बांधा है दक ये चीज मन का है कि
2: माने बारी तौर पे ढोंग
1: ढोंग
2: माने एक ढोंग एक दिखावा
1: दिखावा है
2: माने आम वाले उन बराबरी करू बोलो सो कार्य बराबरी हम हर आदमी करू खूब है
1: नहीं भाई
2: रेच बराबर भाई तक तराय आप लोग घर चो स्थिति कथन है आम चो आगे च पीढ़ी कथन रही आम चो दादी पीढ़ी कथन रही उन हिसाब ने दकुन बाती हमी ये नहीं कि थोड़े परिवर्तन यही दे बिया दान में
1: हाँ, तो है।
2: घर चो स्थिति दक पड़ू है आम चो परंपरा आम चो कवे रही कौन पीढ़ी ने आम चो जो चले थे उनके अपना धीरे धीरे परिवर्तन करा परिवर्तन हुआ पहनावा है खान पान में आए पढ़ाई लिखाई नहीं आए लेकिन एकदम अति वाले नहीं करता रहा है कि आम चो आर्थिक हानि हो घर घर बर्बाद हो क्योंकि आम चो एक तो विकास की ओर हम आगे बढ़ो से तेसो नाम बड़ूक ची नहीं सकू के भी छुटुआ से कर जाके और बोल पीला जिला आसत घर एक ले तो खर्च कर ले वाले होती है उंच पाट कुतिया से उंच और पाट कुता से उन मन तो अधिक ये बनाओ उन बनाओ बोला आगे बढ़ दी लेकिन हम जो घर जो परिस्थिति की दकुन बाती ये शादी ब्याह होली अब मैं शादी ब्याह में दखे से गोटो गोटो फोटा का इदान पेटिया सनान होता उन 10,000 आए 5,000 आए उनके आई ने जला दे आए ढा पुटे उन्हीं खर्चा का हम सगा गंगा खोआवा अच्छा खोला हम नाम दर दे उन फोटा का फुट लिख गए तो मचो यही कहना है कि आमी जो भी खर्चे आम जो नेक रीति है मरनी हो चाहे बिया दान हो कोनी बल कार्यक्रम हो हम एकदम हवा ने उड़ तो कोशिश नहीं करूँ। अब बलबीर भाई बोलला कि
1: घरे रांदा नहीं हाँ, दुआरे
2: घरे घरे नहीं रांदा
1: दुआरे
2: भैंसा बांधा माने आम चेक प्रकार ढोंग भाई से
1: देखो कौशिक दादा आजकल मैं ये जो शादी बिया नहीं आए बोलूंगी इतना बोले बोले ने जो नशेली पदार्थ भी थी देख आजकल चले से देसी और विदेशी ये बोल सुना दे से और ये चो बोल का है कि बोले ने झुगे देह पाँच नुकसान तो है से ची संगे संग का है कि आर्थिक बोझ बोलो ऐसे तो ये चो का तुम जो बाटले का बोलू चाहे सा प्रतिबान
0: नहीं एचो खाजे सभी समाज प्रमुख मंच के मैं निवेदन करें से कि जो नीति है जो नियम है
1: नियम
0: उन खर तो खाजे जरूरी है तो उनके उतले करा जितरो एक बोतल ने जो निपट रहा है उतलो ने निपटावा
1: निपटा
0: और उनसे बाद उनके बोले जो बोल सियान सजन है नीति साहब ने एक एक चाक धरो पियो तर उनकी उतारे खत्म करो। तो उनने खाए हुए थे कि ये जो शहर छो बीती बाछे दे और गांव छो बीती बाछे दे, हम छो शरीर बोले नुकसान नहीं होए और झगड़ा खोलार बोले नहीं होत। तो इस तरीके से एक ही नियम के समझ ले तो बहुत अच्छा आशे। पहले असनी करते रहो, अरे बोल देखो कोई से जैसे ने दक्षिण दिशा में कांकेर क्षेत्र में अंदरूनी क्षेत्र में बोले हो उन बाटे जो नीति है उतले ही कर सुत।
1: अच्छा,
0: अरे भोपालपट्टनम वगैरह बोले आजकल जाऊन रहे मैं उतना बोले उन जो नीति है उतनी ही है। उनकी जबरदस्ती नी मांगो थारू फालो नहीं कर सुत। बस्तर में कुछ जगह तो चले से लेकिन हम से बस्तर जिला हम से आसपास में ये चीज ज्यादा चले से। ये कि बंद ओथरी जरूरी है, बंद कर ले ही ठीक आसे, क्योंकि एक तो मामला रात जो है हम की दिन ले सब चीज निपटा ले का नुकसान आसे।
1: हाँ, तो नुकसान नहीं है। हाँ।
0: रात ही जो मामला बोल ले तो आपराधिक मामला है।
1: हाँ।
0: कुछ न कुछ तो मतवार बोले उन बात ही छेड़छाड़ लेके लेकर बोल करू छी।
1: हाँ।
0: तो ये बोले बने से ये कि बोले दिन में ये सब चीज होती जाले।
1: हाँ।
0: सब अच्छा होती असन आमचू सोच लागे से मचमुल सोच लागे से।
1: हाँ।
0: सब काज अच्छा होती, समय ने बिया नहीं हो।
1: हाँ।
0: और साझ मामला खत्म कर तो जाओ
1: जाओ। हाँ।
0: लाफी दूरिया काज बोल अच्छा हो दे।
1: हाँ।
0: और गाँव उरिया काज बोल अच्छा हो दे। दिन ने निपट लो बीती लाइट खर्चा बोल बाचे दे।
1: हाँ।
0: तो हर चीज में बचत आसे।
1: हाँ।
0: लेकिन हमसे लोग तो रात के ही काय पता नहीं, हर एक चीज बिया हो जतरा हो कई बोले बोल रात ही चीज बड़ा करूँगा ज्यादा। तो ये चीज बोले नहीं होता है आसन। हम जमा एक छो विचारो लेने वही दे से। और बोले ने जैसे बिया से गोट है अमे ठीकू से नक्की बनवा सबने उसे उन तो ने उन गोटो खोना रहे साल बोलने से पूरा सड़े
1: सारे से।
0: एक रुपया दे हो दो रुपया दे हो जितने यथा शक्ति है उनके पैसा दे उन दे हो। तो उनके घर भी तक आ जाए एक सुविधा बोलो दे।
1: देखा ये तो अच्छा गोट के सांगला सोमार कौशिक दादा जैसन की तुम्हें बल्ले दीन ने शादी भी आवी थी बल्ले ने अगर सोच लेने तो खूब खर्चा बाचे से है कि नहीं।
0: हाँ।
1: बोले लाइट वगैरह जोन बोले आए ये चुपल बाचे से जो नशा पानी जो ना ये बोले बाचे से। और आगे जो भी देखा आम चो बोले ने समाज ने बोलू भी बिया ने लगिन होते 8-9 बजे लगिन होते कि नहीं। और ये भी तो सब सांझ बेरा हुए से आरु बिया लगिन होते आरु शाम के 3-4 बजे ले उनको होनो टेक तो भी थी होते ज्यादा रात बोल नहीं होते 7-8 बजे ले पूरा खत्म होते रहे। तो ये बल गोट परंपरा आम छो कितलो नगद परंपरा है। और असन परंपरा मन के भूते जातो के बले ने ये तो समाज का जे ही नुकसान है।
0: आम छो समाज में गोट की एक शादी होते सबसे कम खर्चा उन्हें भी पूरा लुप्त हो ली कहा ले उदलिया पर आने थे दरुण आंतरे कोई बोल लेगा उनकी मात्र कुछ नहीं कर एक कमरा ने डापून देते रहो पड़की डाप तो भी और उतरने उन बाटे डाप रहे लोग एक बोतल में एक टन कुकड़ा ने निपटते
1: निपटते रहते।
0: तो इस सबले खर्चा कम
1: कम
0: मतलब तो बिया होली मने होली पड़की डापला मने डापला। तो ये बोले एक नियम रोली उनके तो ये भी बुलकला
2: अरे बे बिया मंडप ने बोली गोटो के दाई उंच बोल गोटो खर्चा बोल आगे का है कि गांव पुजारी ये उन माती होम जोम करे कसा पानी चीचुन देते रहे उनके बेटा भी था चाहे बेटी भी था गोटो नोआ कपड़ा उन खांदे ये भी नोआ है हमी उन विधि विधान ने करूं उसे बहुत बड़ा विधि विधान में है हम चु पुजारी की जगह दूसर खाक दे उसे मैं नाव नहीं धरे उन फल ना है नहीं एक दूसर लोग क्या उन आम च लोग नो आए ना आम च बाग नो आए ना सगा ना संबंधित है उन चु बिया उन चु खर्चा तो जानुक नहीं हो बहुत बड़ा खर्चा है उन चो कई बरन चो है आप लोग के ये लागू आए उन लागू आए उन लागू आए उन लागू आए ये लागू आए हम उन खर्चा जो है ना 10 से 20 हजार तक जो है हम उन चो
1: अलग ले
2: उपरा खर्चा है उन ये वाट सगा कोई मतलब नहीं आया सगा खुआत भी एक लिमोड़ा बांधे जा तो काम है। तो ये भी आवल गोटकू तो जुड़ ली सा परंपरा ने जो बोले आम चो भाई बंधु आसुद गांव चो जो भी समाज हो गरीब आम आप लो जित लो बने थे उन हिसाब ने शादी कर।

0: लेने शायद आम को अच्छा लगती और आम
1: हाँ
0: की अच्छा बल होती
1: अच्छा होते।
0: और आम ही आगे बल बढ़ सकते।
1: तो देखा आज इतलो अच्छा गोड बात तो होली आमचे बाटले बल्लेने आम्ही कसनले बोलू खर्चा पाणी ले बाचुकलाय सकू आमचो समाज के कसनले जोडून बाती रखाक सकू आ संगे संगे काय की आमचो जन परंपरा आहे आमचो रीति नीति आहे बल्लेने कसन बाचुकलाय सके दे ये सब विचार तो कर लू। तो अले हाजी इतलो मतलब आम्ही गोड बात कर लू विचार कर लू जनता के सुनन बाती उन्होंने कहीं ना कहीं असन सोच है दे विचार है दे समाज ने कहीं फर्क पड़े दे। तो मंधर राम नाग दादा और सोमर राम कौशिक दादा इतलो अच्छा तुमचो विचार सुनुक मिरली जानुक मिरली समाज के लोग बोले सुनला होती तो आल तुमके खूब खूब जुआर
0: हाँ जी
1: जुआर
0: भाई
2: भगनी
3: ओय दादा
2: देख काय रसिया विवाह संस्कार जो गोट बात की सांगला नहीं
3: हाँ।
2: और सही बोले आए कि हम के आप लोग समाज के जुगे खर्चीला बाटे निप पाड़तो रहा
3: हाँ।
2: और जित लो हो सके कम से कम खर्चा ने बिहा भर पर निपटो हुन चीज के लेख कर
3: तो आए
2: गाँव ने सफाई प्रकार जो लोग रहू से कचे लगे धन संपत्ति आसे ने
3: हाँ।
2: और कचे लगे निहाय बोले तो
3: हाँ।
2: गोटोक समाज का जी गोट की नियम बनतो रहा सौकार काज बोले हुन नियम रहो और गरीब काज बोले हुन ही नियम रहो गोटोक गाँव ने आसू गोटोक सगा ने आसू तो गोट की नियम बना तो रहा और तेबे जो ना हम जो बस्तर चो रुसूम बस्तर चो संस्कृति बाचून रहे दे और एक हम के जो ना ये तो जो पीढ़ी मनाते ये तो पीढ़ी के बोले के सिखाऊ जातो रहा नुआ नुआ खर्चीला चीज मन के हम के विवाह ने शामिल नहीं करतु आए दखावटी चीज करुन भाती खूब परेशानी पड़ुक हुआ लागा बोड़ी ने गड़ु
3: सत्य
2: तो ये नगद गोट के हम कायर से सुन लू आले संगे संगे गीत बोले आसे
3: गीत ही बोल सुन
2: ने गीत के बोले सुनू गीत खुरी आसना हो के हम पास
3: पाचे सांग हाँ।

0: फग्ने
1: ओई
0: राग के चिता लिस काय
1: हाउ चिता ले ए ए गीत के गाउरोत खेम बेचनुवर हुन्छ संगवारी मन
0: ने
1: हाउ
0: काय रहेसे गीत रहे
1: गीत रली हाउ
0: तो द के गीत के सुनुन मके फेर भावली गोट गीत के सुनुक लाए और समय वाला से हम जो लगे और मोंडरा ने गोट गीत बोले आसे ने
1: हाउ
0: आले ये गीत के बोले अमराउता
1: अमराउ
0: हाउ

0: नार चोराने चितर समर बाराबानी जगा जगा एता हुता दखले मंजूर तक।
1: हाँ फगनी
2: ओइतेला
1: द कायरा से गीत रहे ने
2: रली हो
1: और ये गीत की गाउन रहत लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन ने हाँ। द गीत गोविंद और ज्ञान ध्यान जो गोट सफाई के तमरालू ने और रोजी हामी हम जो किसान भाई बहन मन के गांव करी भाई बहन मन के ये थान ले जित लोग सके ज्ञान दे उनसे ने मंत्री ज्ञान के सुनुन भाती सफाई लोग मन के ज्ञान के आप लोग जीवना ने उतरा तो रहा तेबे जो ना हुन जीवना सफल हुआ।

0: और हमी नगद कमाउन करू लाई खाऊ सकू ने तो दकदाय हम जो बेरा होली घरे जातोर और गांव का जी मन जो बेरा होली भात खातोर
1: ने
0: तो मोटा गंडा के मैं सकले से और तु विदा मांगते बे
1: जातो पुरी आमचो गांव सुनतो सब पाय दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन के मैं पगनी
0: और मैं कोंदा
1: हमी दोनों करूं से जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम नानोली में आइए सुनते हैं दिनेश और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम नानोली में आप सुन रहे थे दिनेश और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ में अभी हम सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। प्रस्तुति है संतोष कुमार बघेल की।

पीला मन का दी गोट ये कार्यक्रम सुन तो सब पाए पीला मन के मोचो बाटली खूबे खूबे मया और लाड। तो पीला मन हम जो ये कार्यक्रम ने महान महान पुरुष लेखक महापुरुष मंचो कहनी के धरुन हमी एवरोम से असनी आजीबले हमी गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन कहन के तुम चो काजे अनलो से। तो पीला मन गोस्वामी तुलसीदास जो जन्म श्रावण मास ने शुक्ल पक्ष ने 1511 उत्तर प्रदेश जो सोरन गांव ने होली। तुलसीदास जो माता जो नाव हुलसी और पिता आत्माराम दुबे रो ये भारद्वाज गोत्र वंश के सानड्य ब्राह्मण जाति ने जन्म धरलो। तुलसीदास जो जन्म 12 माह गर्भ ने रलो पाचे जन्म होला। जन्म होलो बेरा हुनमन जो टोंडले टोंडने पूरा 32 दांत रली और जन्म ते खन हुन जो टोंडले राम शब्द निकरली। सपाय पिलामन जन्म होलो पाचे गगुआत और कोनी कोनी उगाय बल रुवात। मांतर की ये तुलसीदास जो टोंडले जन्म ते खन राम शब्द निकरली यही काजे तुलसीदास के राम बोला भले बलते रहो। जन्म लो बेरा हुंचो शरीर और रूप 5 साल चो पीला असन रो। ये मन चो जन्म अभूतकाल नक्षत्र ने होली। हिंदू ज्योतिष चो हिसाब ने बाप चो जीवन का जे खतरा संकट रली हुनी का जे 4 रात पाचे माँ बाप मन तुलसी दास चो आपलो ले हमेशा का जे त्याग कर ला। चुनिया नाव चो आपलो संगे हरी पुर आनली और 5.5 साल तक हुंचो देखभाल कर ली। पाचे चुनिया मरुन गेली हुंचो पाचे तुलसीदास खुबे डुक डंड पावला। भीख मंगुन मंगुन आपलो जीवना के आपन चलाते रो। हुंचो पाचे पीला मन 7.5 साल जो तुलसीदास जो उम्र होली। महीना जनवरी फरवरी जो शुक्ल पक्ष जो 5वां दिने अयोध्या ने गुरु नरहरिदास जो पवित्र धागा समारोह चलते रहे जो कि भगवान श्री राम जो तीर्थ स्थल रली। तुलसीदास ने अयोध्या ने आपलो शिक्षा दीक्षा शुरू कर ला। खिनिक समय पाचे नरहरिदास तुलसीदास के विशेष वरहा क्षेत्र सोरो मंदिर पवित्र स्थान नीला और पहली बार रामायण के सुनला। सांग तो हिसाब ने गुरु ने तुलसीदास के खुबे हार रामायण के सांगला। तेवे तुलसी दास के समझ एते गेली कि रामायण काया है और एता तुलसीदास पाचे पवित्र शहर वाराणसी इला और गुरु सनातन ले 15-16 साल जो समय ने संस्कृत व्याकरण 4 वेद 6 वेदांग ज्योतिषी और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालय जो अध्ययन करला। तुलसीदास जो विवाह 1561 ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो 11 तारीख के गोंडा जिला जो नारायणपुर गांव जो उनकी परासर गोत्र जो ब्राह्मण दीन बंधु जो पुत्री रत्नावली ले होली। एक हार तुलसीदास हनुमान मंदिर जाओ रोत और रत्नावली आपलो भाई संगे आपलो बाप चो घरे इली। जब तुलसीदास ये जानला तो हुन रोक नहीं सकला और आपलो रत्नावली चो घरे जातो काजे विचार करला। मांतर हुन दिन इतलो लहरा धुका बरसा बीज खसरते रहे असन समय आने बले मांतर पीछे नहीं हटला और राती बेरा जी जंगल नदी के पार करून सरजू नदी के पोरून पार करला और अपनी आपलो पत्नी रत्नावली चो घरे अमरला। मांतर रत्नावली तुलसीदास की खुबे खींचली कि असन समय ने तुम्ही इलास मोचो घरे इतलो लहरा धुका जंगल जानवर के तुम्ही निडरून भाती नदी पारून पार करून इलास। ये गोट के सुनून खूब खिजली ये गोट के सुनून तुलसीदास बले मन के खुबे सोचला मने मन खूब सोचला कि आपलो जीव के संकट ने डालून असन बेरा मैं एता काय काजे इले बलते और हुनी दिन ले आपलो पत्नी चो त्याग करला और प्रयागराज चो बाट के धरला। आपलो गृहस्थ जीवना के त्याग करून साधु चो भेस धरला। कुछ समय पाचे राजापुर रौन भाती फिर ले काशी चो बाट धरला। लोग मन के राम कथा सुनाते सुनाते कथा सांगुन सांगुन एक दिना मनुक रूप ने प्रेत के भेटला और उन प्रेत तुलसीदास के हनुमान जी चो पता के सांगलो।
हनुमान संगे भेंट होन तुलसीदास श्री राम जो दर्शन करा तो काजी प्रार्थना करला। हनुमान सांगला कि तुम के श्री राम जो दर्शन होए दे चित्रकूट ने, ये सुनून भाती तुलसीदास चित्रकूट जो बाट के धरुन रेंगला। चित्रकूट अमरुन राम घाट ने आपलो आसन जमाला। एक दिन तुलसीदास प्रदक्षिणा काजे निकुर रो की बाटे उदुपनाय श्री राम चो दर्शन होली। मांतर की दुई नानी नानी राजकुमार घोड़ा ने बसुन धनु कांड के धरुन जाय सोत। तुलसीदास हनुमान चो उपरे मोहला, मांतर की पहचानुक नि सकला। इतलो रूप इतलो उनके दकुन भाती हनुमान चो बुद्धि काम नि करली और हनुमान चो पूरे ले दुई नानी नानी राजकुमार मन घोड़ा ने बसुन गेला। हुंचो पाट पाट हनुमान अमर लो और सांगलो सपाई गोट के। तुलसीदास खुबे पछताला कि मैं श्री राम के चितौक नि सकले। तेबे फिर हनुमान सांगला काली के बड़े बिहान तुमके फिर श्री राम चो दर्शन होए दे। बड़े बिहाने भगवान श्री राम फिर ले इला पीला बालक होन तुलसीदास के बल्ला। बाबा हमके चंदन हो तो राय तुम्ही हमके चंदन देव लाए सकासे बलते बल्ला श्री राम। हुन समय तुलसीदास भाम च पालो मा आसन होली। श्री राम जो सूरत मुरुत शरीर के दकुन ज्ञान गेलो आसन होला। तुलसीदास जो माँ और श्री राम आपलो हाथे चंदन के अंडकी ने लगाऊन तुलसीदास जो माथा ने टीकला और ताले अंतर ध्यान होला। हुनी समय हनुमान चो आज्ञा धरुन हनुमान चो बाटे धरुन गेला गेला। हुन दिन मन मांग मंडी होते रहे हुनी का जे खिनिक दिन ठेबला। मंडी चो छह दिन पाचे बड़ रुख खाले भारत द्वाज और याज्ञ क्लव्य मुनि चो दर्शन होली। हुता कथा होते रहे जोन कथा के सुकुर क्षेत्र ने आप लोग गुरु ले सुनूरला। मांग मंडी सरते चेकी प्रयाग ले काशी का निकरला और हुता प्रहाद घाट ने गोटुक ब्राह्मण चो घरे ठेबला। हुता रो रो तुलसीदास के मने मने कवित्व शक्ति चो बाटे मन लागली और हुन कविता मन लिखुक मुर्याला। मांतर हुन कविता के हुन मन दिन ने लिखते रोत तो राति हुन नींद का देते रहे। आठवा दिने तुलसीदास के सपना ने भगवान शंकर आदेश दिलो कि तुम्ही आपलो भाषा ने रचना के लिखा। तुलसीदास सपना दुखुन उठुन बसला। हुनी समय भगवान शंकर और पार्वती पूरे इला। तुलसीदास ने हनुमंचो हाथ पाए जोड़ून पाए पढ़ला। भगवान शंकर सांगला कि तू अयोध्या ने जाऊन रा और हिंदी ने रचना लिखा। मैं तुके आशीर्वाद दे से कि तू सफल हो से बलून होताले जाते गेला। देवे तुलसीदास हुन आज्ञा के मानून उपड़े धापड़े निकरला।

अयोध्याचं भाट ने रामचरित मानस 1631 में देव युग हुन वर्ष रामनवमी इली त्रेतायुग ने राम जन्म चो दिन इली हुनि दिने तुलसीदास श्री रामचरित मानस चो रचना के शुरू करला। ये रचना 2 बरख 7 माह और 26 दिन जो समय ने पूरा होली उनचो पाचे भगवान चो आज्ञा ले तुलसीदास काशी ला और भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के श्री रामचरित मानस के सुनाला और राति के पुस्तक के विश्वनाथ मंदिर ने संगान दिला। बड़े ब्याह ने मंदिर चो दरवाजा खोलला और दखला की पुस्तक चोपरे सत्यम शिवम सुंदरम लिखु रे शंकर भगवान चो चीना बले मिरली होनी संगे समया सपाय लोग मन चो काने सत्यम शिवम सुंदरम चो आवाज के लिए ये गोट के सुनून काशी चो पंडित मन तुलसीदास के ईर्खा होला। हुन मन तुलसीदास चो बकना चकना करुक मुर्याला बदनाम कर तो खूब कोशिश करला और हुनिया समय पुस्तक के चोर तो काजे उपाय बनाला। दुई चोर के तुलिस तुलसीदास चो कुटिया ने पटाला मांतर चोर मन धकला की बाहरी दुई सुंदर युवक धनुकांड के धरुन पहरा देशोत। हुन मन के दर्दकतो के हुन मन चो बुद्धि भ्रष्ट होली और सदबुद्धि इली और हुनी दिन ले हुन चोर काम के छानुन दिला। तुलसीदास सोचला कि भगवान के कष्ट होली और यही सोचुन आप लो पूरा सामान चमक के देन दिला और पुस्तक के आप लो जोड़ी डोंडरमल अकबर चो नवरत्न ने एकलो चो थाने संगान दिला। उन चो पाचे आप लो स्मरण शक्ति ले दूसरा रचना करला। ये पुस्तक के लोग मन ने मांग बाढ़ते गेली ईर्खा पंडित मन के बल निपुरली मने मने और बल ईर्खा होते गेला। तुलसी दास के तो आखरी ने विश्वनाथ मंदिर ने रलो सबले उपरे रामचरित मानस चो पुस्तक के सबले खाले संगाउन उनचो उपरे कुछ शास्त्र मन के संगाउन दिला। बड़े बिहाने मंदिर खोला दखला की श्री रामचरित मानस चो पुस्तक आपले आप सबले ऊपर रे तेबे ईर्खा पंडित मन लाज पड़ुन तुलसी दास के माफी मांगला। असन तो खुबे रचना आसे तुलसीदास चो मांतर की मुख्य रचना मनाए रामचरित मानस कवितावली संकट मोचन राम ललान नछु वैराग्य संदीपनी गीतांबली करखा रामायण बरबे रामायण श्री कृष्ण गीतावली रीता रामायण पार्वती मंगल विनय पत्रिका झुलना जानकी मंगल सत्सई छंदावली रामायण रामाज्ञा प्रस कुंडलिया रामायण काली धर्माधर्म निरूपण दोहावली राम सलाका हनुमान चालीसा और बहुत सी रचना तुलसीदास ने करला। आप लोग समय ने गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय और पश्चिमी विद्वान मन कर लो रचना काजे कविता लिख तो काजे हिंदू समाज लेवल प्रभाव डाल तो काजे खूब सम्मानित करला। गोस्वामी तुलसीदास बलुवात ये संसार में कई प्रकार चो लोग आसोत रतो ढंग लगाए रब चो रहन सहन आए भिने भिने आत हम के सपाए लोग के गोठिया तो राय मिलुन मिसुन रतो राय जसन नाव नदी ले दोस्ती करुन आप लोग बाट बनावाए और पार करवाए असनी हामी बले नंगत कोट बात ले आप लोग व्यवहार चलन के नंगत चलाऊन ये संसार जो भंवर सागर के पार करवा। तुलसीदास असनी रचना करते करते 30 अगस्त 1623 ने वाराणसी ने आप लोग दे के छाणुन गेला। तो पिला मन ए रहे गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन जो कहनी तो ये कार्यक्रम सुन तो सब पै पीला मन के मैं जातो पूरे मुझो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़।

0: बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ में आप सुन रहे थे स्वामी तुलसीदास के विषय में। प्रस्तुति थी संतोष कुमार बघेल की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियां शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
8: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
7: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
8: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
7: प्राइम मिनिस्टर मोदी said the two sides also signed a memorandum of understanding and cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
8: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
7: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
9: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
7: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
3: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti Ampalruthi, Rupesh Rathore, Akashvani News.
7: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. We now go over live to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Avignon tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating the recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing and supply chain security, and what outcomes are expected from this summit?
10: Yes, Nishit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovate in Nice, and India's role as the official AI partner country at the upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, if you see, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including balanced growth, international partnerships, and artificial intelligence, closely align with India's strength and interests. Therefore, beyond the broader geopolitical discussions, the key outcomes to watch will be deeper cooperation in trade, technology, critical minerals, innovation, and investments, as well as how India's perspective and the concerns of Global South are reflected in the summit's deliberation and outcomes. This is it.
7: Yeah, thank you, Ankit, for the update. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Defence Research and Development Organisation, DRDO, today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Minister said that the missile achieved all mission objectives, demonstrating India's growing long-range precision strike capability. Raksha Mantri Rajnath Singh congratulated the DRDO team and the industry partners on the successful flight test of the cruise missile. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.
2: Over the past 12 years, India has embarked on an unprecedented journey of transformation, making infrastructure-led development the cornerstone of its growth story. This commitment is reflected in a six-fold increase in government expenditure on infrastructure, rising from 2 lakh crore rupees in 2014-15 to 12.2 lakh crore rupees in the current financial year. India's metro rail network has expanded nearly five-fold to 1100 kilometers. Talking to Akashwani News, a Delhi resident, Alisha, who commutes with Delhi Metro daily, has shared her experience.
3: Metro to hamari lifeline ban chuki hai.
11: Metro has really become our lifeline. I have to go to Gurugram every day for my office, for which I use the metro. Traveling in the metro is convenient and comfortable, but along with that, the good thing is that it is completely safe. Because of its being safe, my family and I remain worry-free.
3: Chinta mukt rehte hain.
2: The national highway network has expanded from over 91,000 kilometers in 2014 to over 1,46,000 kilometers in 2026. Budgetary support for Indian Railways has increased nearly 9 times. This investment has powered modernization and improved passenger experience across the network. A symbol of this new era is the Vande Bharat train, with 162 services now operational, it reducing travel time up to 45%. Talking to Akashwani News, a frequent traveler of Vande Bharat from Lucknow, Pooja said that the train is comfortable and it saves a lot of time.
12: Traveling in the Vande Bharat train brings immense joy. Ever since the Vande Bharat train services started, we mostly travel by it. It is an absolutely excellent train, and the best part about it is that it saves a lot of time during the journey and the seats are very comfortable.
2: Together, these achievements are creating a faster, more connected and more prosperous India, laying the foundation for a Viksit Bharat by 2047. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to land in Jewar from Lucknow this morning. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes the implementation of the understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Meanwhile, hours after the United States and Iran announced the peace deal, Israeli Defense Minister Minister Israel Katz has declared that the Israeli military will not pull back from its position across the border. While detailing Israel's security policy, the defense minister stated that the Israel Defense Forces will remain indefinitely in security zones in Lebanon, Syria, and Gaza to protect Israeli citizens. Israeli media reported that Jerusalem has directly communicated its refusal to comply with international withdrawal timelines to U.S. President Donald Trump. The benchmark domestic equity indices today ended trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of a peace agreement between the United States and Iran. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while the Nifty jumped 231 points to settle at 23,854. The government has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories and maintaining sufficient stocks of petrol and diesel. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, was addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia. Joint Secretary in the Department of Fertilizers, Bandana Prayashi, said that the overall stock position of fertilizers in the country is normal. Director in the Ministry of Port Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. In the FIFA World Cup football, Spain will play against Cabo Verde in the Group H clash at Atlanta, United States tonight. The match will begin from 9:30 p.m. Indian time. Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico earlier in the day. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The Met Department has issued an orange color warning for thunder squall conditions in West Rajasthan for tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, the Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim during the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labour migration, digital technology and defence. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. The French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight, Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
13: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। कार्यक्रम जीवना चौसोर में आइए सुनते हैं मिलेट्स सोसायटी समूह दंतेवाड़ा की रंजना विश्वकर्मा से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।

0: खुबे खुबे सेवा जोहार जीवना चुसूर भलेने जीव तो काजे बाट ये कार्यक्रम ने आमी कई कसन समूह मन आपलो आर्थिक उन्नति बाढ़ती करुण बाती भलेने दुई पैसा कमातो हनुमन के बाट मेरे से आरु हनुमन चो जीवना ने उन्नति बाढ़ती हुए से आमी असनी सुनाते जाऊं से कई महिला स्व सहायता समूह मन संगे गोट बात करुण बाती और जानू से कि हनुमन कसन भलेने समूह चो गठन करुण बाती बलने अलग अलग किसम मंचो जोन धंधा करसोत असनी आजी में असन महिला स्व सहायता समूह गोड बात करें से ए मंचो महिला स्व सहायता समूह चो नाम है मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह। देखा अपन मन के जानन बात अचरज लागे दे होती कि मिलेट्स बलने गोटो कामचो लघु धान्य फसल जोन कम समय नहीं होतो बीती फसल मंचो गोटोक बलने का है कि समूह होए से जे कि मैं सांगून दे से जसन की कोदा है कोसरा है घटका है मंडिया है चिकमा है जोंदरा है जोंदरिया है ये सब के मिलान बाती गोटक मिलेट्स बोलतर होए से आरु यही जोन फसल मंचो जोन जीनिस बना तो ये जोन महिला स्व सहायता समूह है कि बलने ये सपाय फसल चो बलेने एमन बोबो बल बनाए सोत लड्डू बल बनाए सोत इटली बल बनाए सोत धोसा बल बनाए सोत भात बले रांधे सोत और कई किस्म चो मिठाई बले बनाए सोत बलेने खातो बीती खाजा चरबन जे कि आमी नाश्ता बले करतो काजे कई चीज आमी होटल ने जेलेने मेरे से तो असनी एमन यही जिनिस मंचो बनान बाती बलेने बिक्री बांजरी करून बलेने आर्थिक उन्नति करसोत आरु ये चो काजे एमन के बलेने समूह चो गठन कर लाई पड़ली आरु कृषि विज्ञान केंद्र बलेने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा गीदम ने जौन बाती होता वैज्ञानिक मन संगे भेंट घाट करुन बाती बले ने उन मन के पूछला फिर उन मन के उन कृषि विज्ञान केंद्र बाटले ट्रेनिंग मिलली कि ये जोन मिलेट बीती जोन अनाज है बोलू भी ये जोन घटका कोदा कोसरा मंडिया चिकमा जोंदरा जोंदरी चो बले ने काय काय आम के जीनिस बनाक लाए होए दे और कसन बनात रहा है एचो ट्रेनिंग फिर उन कृषि विज्ञान केंद्र बाटले रायपुर ने उन बातें उन मन के सिखाला आरु एबे बले ने कितलो अच्छा कितलो नंगत सुंदर ये दंतेवाड़ा ठान ने ये मंचो होटल आसे आरु ये होटल बले दिन भर खुला रहे से एता बले ने नाश्ता बीती चो आप नाश्ता मेरे दे आरु कहीं भात आए बले ने उनके कोसरा कोदा मंडिया ये सब चो भात बले मेरे से तो देखा असन है कि आमचे ही आमचो जोन बले ने आगे ले पुरका पार्टी जोन बेरा ले कमाते हैं उसे होनी फसल चो ये भी देखा तकनीकी युग है होनी हिसाब ने कहा है कि कई जिनिस मन स्वादिष्ट जिनिस मन बनान बाती बिकसोत और देखा होनी ने एमन चो रोजगार जोन है होए से तो यही सब गोट बात मैं कर ले से होता चो जोन संचालिका है बोले उन समूह चो जोन अध्यक्ष है एचो संगे तो आली सुनो आरु जानू
1: रेडियो सुन तो भाई बहन मैं अम्बल से दंतेवाड़ा आरु एताने बले ने गोटुक होटल लसन आसे आरु पूरे लिखलो रासे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र गीदम दंतेवाड़ा मैं एताचो जोन संचालिका है उन संग गोट बात करें से सबसे पहले आपका नाम बताए
2: रंजना सिंह।
1: रंजना सिंह देखिए मैं यहाँ पे अंदर आपके यहाँ आया हूँ और मतलब खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और कई प्रकार के खाने की जो वस्तुएं दिख रही हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मतलब आप लोगों ने खोला है इसकी शुरुआत कैसे हुई इसमें आप लोग कितने लोग हैं क्या करना पड़ा इसके लिए।
2: सर सबसे पहले तो कि ये हम लोग एक समूह बनाए 10 लोगों का उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। उसके बाद ये मिलेट कैफे कृषि विद्यालय केंद्र कीदम जो उनसे संपर्क किए तो ये मिलेट कैफे खोलने का मतलब पूरा जो मिलेट 9 प्रकार के मिलेट हैं वो सब चीजें मतलब खिलाना है लोगों को। अच्छा। बना के ये सब चीजें।
1: अच्छा जी। जैसे आपने बताया 9 प्रकार के मिलेट्स उसमें क्या क्या चीजें?
2: कोदो कुटकी रागी चीनी सावा कमलू, कंगनी और जटका।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो ये सबसे पहले तो बताइए कि ये जो आप लोगों का समूह का गठन आप लोगों ने कैसा किया, मतलब इसको प्रेरणा कैसे मिली?
2: तो सबसे पहले तो हम नगर पालिका गए, तो वहाँ पे मतलब इसके बारे में जानकारी लिए कि समूह कैसे बनाते हैं। फिर हम 10 महिलाएं जुड़े, मतलब ढूंढना पड़ा अलग अलग जगह से कि कौन काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। तो सबको ढूंढ के इकट्ठा करके बात करके इसकी शुरुआत किए।
1: तो मतलब समूह का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना पड़ता है?
2: जी जी बिल्कुल कराना पड़ता है सर। समूह का पूरा आपका आधार से पैन कार्ड या फिर आपका पासबुक वगैरह सब जमा करना पड़ता है सभी लेडीजों को। फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अब उसका एक अपने को मिलता है प्रमाण पत्र।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो उसमें कोई समूह का नाम भी रखना होता होगा?
2: जी,
1: आपका समूह का क्या?
2: जी, मिलेट महिला स्व सहायता समूह।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो इसमें इस समूह में कितने महिलाएं भी हैं कि पुरुष भी हैं?
2: नहीं नहीं, सिर्फ महिलाएं हैं।
1: अच्छा, कितने?
2: 10 लोग हैं।
1: तो देखिए, जैसे आपने बहुत विस्तार मतलब यहाँ पे रूप में है, मतलब इसकी जो पूंजी वगैरह की व्यवस्था आप लोगों ने कैसा?
2: ये तो सब हम लोग ने थोड़ा थोड़ा मतलब जमा किया था, थोड़ा थोड़ा मतलब एक नहीं बोलते बोलते 10 रुपए 100 रुपए इस हिसाब से जमा करके जमा किए, लेकिन उतना हो नहीं पाया। बाकी पूरा कृषि विद्यालय केंद्र के ओर से पूरा सुविधा मिला हमें।
1: अच्छा
2: जी,
1: मतलब पूरा आर्थिक जो सहायता है कृषि विज्ञान की?
2: पूरा पूरा।
1: देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे खाने की जो वस्तुएं चीजें हैं, इसके लिए तो आप लोगों को प्रशिक्षण वगैरह की आवश्यकता पड़ी होगी?
2: जी जी बिल्कुल,
1: बताइए उसके बारे में।
2: तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी तो थी, फिर हम लोग को कुछ आता नहीं था। जब स्टार्टिंग हम लोग किए थे तो ये जितने भी मिलेट का जो था, कोदो कुटकी, इसका हम लोग खीर, रोटी और उपमा, ये सब चीज बना के अपने से दे रहे थे। फिर उन आगे से मतलब प्रशिक्षण के लिए आया, फिर हम लोग रायपुर गए थे। जी,
1: वहाँ कितने दिन का प्रशिक्षण?
2: 1 हफ्ते का, 7 दिन।
1: तो वहाँ पर मतलब क्या चीज आपको सिखाया गया?
2: सभी मतलब जितने भी मिलेट्स हैं सबके बनाने के, जैसे पिज्जा हो गया, आपका चाउमीन, पास्ता, रोटी, पराठा, डोसा, सभी चीजें, सूप हो गया, बहुत सारी प्रकारें सिखाई गई।
1: अच्छा।
2: मतलब हम अब मिलेट्स के सभी चीजें मिलके हम लोग को पूरा सब चीज, जो हम लोग रेगुलरली जो चीज खाते हैं वही चीज जो खाते हैं, जैसे हो गया रोटी सब्जी जो भी है, उसमें सब मिलेट ऐड करके मतलब सिखाया गया। जी,
1: तो मतलब इसका तो जैसे आप लोग 10 समूह हैं उसमें, मतलब इसमें बहुत सारी चीज हैं उसके प्रबंधन के लिए, क्या आप लोगों का 10 लोगों में किस तरह से कार्य विभाजन है?
2: कार्य मतलब 10 लोगों में ये है कि 5 लोग कार्य तो मतलब देखते हैं पूरे के, मतलब बैठने का, बाकी पूरा तो मैं ही देखती हूँ, बाकी सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। बाकी सप्ते में एक बार मीटिंग होता है, तो उसमें क्या है इनकम, बाकी कौन वर्कर आ रहा है नहीं है, इसका मतलब बातचीत करते हैं पूरे 10 लोग, फिर उसके बाद वो जो निर्णय लेते हैं सब मिलके एक साथ ही लेते हैं।
1: अच्छा।
2: जी, मतलब अकेला इंसान इसमें ले ही नहीं सकता निर्णय, 10 लोग मिलके ही निर्णय लेते हैं। जी,
1: जैसे कि बहुत

0: खुलता है, कितने बजे बंद होता है, क्या क्या बनता है, कौन सी चीज़ों की मांग जो खाने वाले ज़्यादा करते हैं?
1: सबसे ज़्यादा पराठा खाते हैं सर, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, रागी का पराठा हो जाता है, कुटकी का खीर है, और मिलेट थाली भी निकलता ही है जिसमें कोदो का राइस रहता है, रागी का रोटी और रागी का हलवा। मतलब इसमें आपका मिलेट का कोल्ड कॉफ़ी आ जाता है, शेक आ जाता है, मतलब सभी चीज़ें डिमांड पे है
0: अच्छा
1: जी। और सबसे ज़्यादा पराठा और थाली जी।
0: अच्छा, नाम क्या बोले आपने?
1: रंजना सिंह।
0: अच्छा रंजना सिंह, ये बताइए कि इन जो वस्तुओं का जो है तो रेट के बारे में भी बताइए, कैसा है रेट, क्या क्या रेट है, कौन सी चीज़ का?
1: पराठा में हम लोग 2 पीस देते हैं, रागी पराठा आलू का 90 और पनीर का 100 रुपये 2 पीस। हाँ, अगर उसमें किसी को खाना है सिंगल पीस तो इनफ है, मतलब एक आदमी के लिए सिंगल पराठा खा सकता है, बट हम लोग 2 पराठा देते हैं। अब जिसकी डिमांड के हिसाब से कोई एक खाना चाहता है, 2 खाना चाहता है तो वो देते हैं। आपका मिलेट थाली है 150 रुपया, जिसमें 2 सब्जियां रहेगी, खीर रहेगा, सलाद रहेगा, अचार रहता है, दाल रहता है जी, और चावल और 2 रोटी जी।
0: और नाश्ते में?
1: नाश्ते में पोहा है, डोसा है, उपमा, पकोड़ा, सभी।
0: अच्छा, रेट के बारे में बताइए, कितना कितना रेट मिलता है?
1: दो पोहा 40 का है और पराठा तो मैंने 90 और 80 का है अलग अलग, और डोसा 70 का है, मसाला डोसा। हाँ, उपमा 40 जी।
0: मतलब ये सभी नाश्ते की चीजें बनती
1: जी
0: है।
1: जी
0: अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसे प्रतिदिन, एक तो अंदाजा मतलब होगा कि कितना आप लोग मतलब बेचते हैं, पैसा कितना होता होगा?
1: जी, 9-10 तक हो जाता है
0: अच्छा, 9-10 तक।
1: जी
0: अच्छा,
1: जी
0: तो इसका हिसाब किताब आप लोग सप्ताह में करते हैं?
1: डेली का तो हिसाब किताब हम लोग करते हैं कि कितना डेली का इनकम है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, वो कभी मौसम या कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, तो डेली का वो होता है। बाकी जो ये जितना टोटल एक हफ्ते का पेमेंट है, वो समूह की महिलाएं मिलके सब उसका वो करते हैं, मतलब हिसाब किताब देखते हैं सभी महिलाएं एक दिन
0: अच्छा
1: पूरा इकट्ठा होके सब देखते हैं। जैसे
0: अच्छा
1: कि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो डेली का मैं हिसाब लिखती हूँ और
0: अच्छा
1: उनको मैं जिस दिन मीटिंग होता है वो उस दिन उनके सामने रखती हूँ जी।
0: अच्छा, जैसे खर्चा वगैरह निकाल करके मतलब आप लोग 10 जैसे 10 महिलाएं हैं तो पैसा का मतलब कुछ तो वितरण करते होंगे सब,
1: जी,
0: कैसे करते हैं?
1: वो खर्चा जैसे बिजली बिल हो गया, यहाँ का स्टैप पेमेंट, और जो सामान खरीदते हैं वो सब चीज़ें वो करके, मतलब सबको डिवाइड करके जो चीज़ जो पैसा बचता है वो सभी 10 समूह की महिलाएं डिवाइड करती हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो अंदाजा मान लो महीने में कितना प्रत्येक महिलाओं को कितना मिलता होगा?
1: जी 7-8
0: 7-8
1: जी।
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा रंजना सिंह, ये बताओ आप मतलब कितने पढ़े लिखे, कितने
1: मैं ग्रेजुएशन
0: ग्रेजुएशन
1: जी
0: अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेकर?
1: साइंस ली थी
0: साइंस
1: जी।
0: अच्छा, तो जैसे आपको मतलब हाँ रुचि मतलब कैसे हुई कि हम लोग को स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए, ये करना चाहिए काम?
1: जी, पहले मैं खुद काम करती थी, मतलब खुद का कैफे था, उसमें काम कर रही थी, वो मेरा छोटा सा काम था। फिर कि कुछ बड़ा काम करे करके फिर महिलाओं के साथ मिल के तो मिलेट के मतलब समूह का बना के फिर ये काम स्टार्ट किया
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो ये जैसे 10 सदस्य महिलाएं हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं?
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: हाँ,
1: मतलब 5वीं 8वीं
0: हाँ
1: हाँ तो यहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं तक
0: हाँ,
1: जी,
0: मतलब थोड़ा बहुत सभी पढ़े लिखे
1: जी, सब पढ़े लिखे।
0: अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों में जैसे अगर आर्थिक रूप में या फिर महिलाओं के व्यवहार में या फिर उनके बोलचाल में पहले की अपेक्षा जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग महसूस हो रहा है, दिख रहा है?
1: जी, सब अपना अपना मतलब राय रखते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए, या फिर ये काम ऐसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें के बारे में होता है ज़्यादातर। मतलब हम लोग सब ये सब चीज़ सोच के ही डिसाइड करते हैं कि
0: अच्छा
1: क्या करना है आगे जी। बाकी जैसे कम पढ़े हैं तो वैसा कुछ नहीं है, वो मतलब समझते हैं कि अभी के समय को सब चीज़ को देख के समझते हैं कि हाँ, अगर 5 लोग मिलकर अगर कुछ चीज़ वो डिसाइड।
2: कार्यक्रम जीवना चुसोर में आप सुन रहे थे मिलेट स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना विश्वकर्मा से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।

0: कार्यक्रम कोदोमाली में आप सुन रहे थे जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर

0: किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरी आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APG Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Cabot underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
3: Medium wave 396.82 meter, अर्थात 756 kHz, FM band 100.1 MHz, और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय।